FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई 2026 इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारे आज के प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025

0: से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित

0: का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जब हृदय में हरि का नाम बस जाता है तब जीवन की कठिन राहें भी सहज लगने लगती हैं। हरि का नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अमृत है।

राम का नाम मन को शांति, हृदय को साहस और जीवन को नई दिशा देने वाला अमूल्य संबल है। सच ही कहा गया है, राम नाम सुखदाई।

जब मन में भोले बाबा का वास हो तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। महादेव की कृपा जीवन को धैर्य, शक्ति और संतोष से भर देती है। हर हर महादेव।

0: आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आपने जिन गायक स्वरों में ये रचनाएं सुनी, वे गायक स्वर बेला सुलाखे, जगजीत सिंह, हरिओम शरण, नंदिनी शरण और सुरेश वाडेकर के थे। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय है जीवन का अंतिम सत्य। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का है और वाचन है पुष्पा शर्मा का।
1: संसार में सभी कुछ परिवर्तनशील है। इस समय जो कुछ है उसमें अगले क्षण ही कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। एक निर्धन व्यक्ति धनवान हो सकता है और अत्यंत धनवान व्यक्ति निर्धन हो सकता है। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो सकती है और मरणासन्न व्यक्ति भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है, किंतु अंततोगत्वा उसकी भी मृत्यु होती है। देश, काल, बुद्धि, चातुर्य आदि से किन्हीं भी स्थितियों को बदला जा सकता है, किंतु जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। मृत्यु को कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, परंतु वह अवश्यंभावी है। संसार के सबसे अधिक समृद्ध या सर्वोच्च सत्ता संपन्न व्यक्ति भी मृत्यु से मुक्ति पाने में समर्थ नहीं है। ईश्वरीय विधान में जन्म के साथ मृत्यु का अनिवार्य योग निश्चित है। विद्वान संतों का कहना है कि मृत्यु की भी उपयोगिता है और ईश्वर ने मृत्यु का विधान रचकर प्राणी मात्र पर बड़ा उपकार किया है। यदि मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहा होता तो वह कभी बुरे कार्यों से बचने का प्रयास नहीं करता। उसके पाप पराकाष्ठा पर पहुंच जाते। वह ईश्वर के प्रति भक्ति भावना नहीं रखता। वह सदैव यही सोचता कि मैं तो मृत्यु से परे हूँ, अमर हूँ, मैं असीमित वर्षों तक जो भी चाहूँ करता रह सकता हूँ। मृत्यु का भय ही उसे दुष्कर्मों की ओर जाने से रोकता है। न जाने कब मृत्यु आ जाए, इस चिंतन के कारण अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। एक बहुत बड़े संत थे। कुछ वर्ष पूर्व उनका शरीर शांत हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी कुंडली देखकर अनेक ज्योतिषियों ने यह कहा था कि 19 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण घर वालों ने उनका बहुत शीघ्र विवाह कर दिया और संतान भी हो गई, जिससे वंश चलता रहे। उन्हें भी इस बात का भान हो गया था कि कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह चिंतित और अनमने रहने लगे। कभी वह सोचते कि जंगल में चले जाएं, कभी सोचते कि घर बार छोड़कर साधु हो जाएं। इसी बीच उनकी एक संत से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि मृत्यु को तो नहीं टाला जा सकता है, किंतु तुम्हारे मन में

0: मृत्यु का जो भय समा गया है उससे मुक्ति मिल सकती है। संत ने उन्हें भगवान के प्रति भक्ति के लिए प्रेरित किया और कहा कि आत्मा अजर अमर है, ईश्वर का अंश है। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। जब उन्हें इस यथार्थ का ज्ञान हुआ तो उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहा। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि मौत तो एक मीठी नींद है। जैसे नींद के समय आदमी सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही मृत्यु के समय भी आदमी सब कुछ भूल जाता है। सोते समय वह ख्याल रहता है कि सुबह जब हम उठेंगे तो हमको हमारी बनाई दुनिया मिल जाएगी, किंतु मृत्यु के समय ख्याल रहता है कि वह हमें नहीं मिलेगी। इसलिए लोग अपनी बनाई दुनिया के छूटने से, धन दौलत कुर्सी के छूटने से, पुत्र पौत्र आदि के छूटने से और जिस शरीर में मैं मेरा है उस शरीर के छूटने से दुखी होते हैं। मेरा अपना दृष्टिकोण तो यह है कि हम मृत्यु से चिंतित न हों। हमारा चिंतन यह हो कि मृत्यु के पश्चात जब हमारी शव यात्रा निकले तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हों और यदि हमने जीवन में दूसरों के साथ परोपकार किया है, अभावग्रस्त की यथासंभव सहायता की है, दूसरों के दुख दर्द को बताया है, सत्कर्मों में सहायता की है, तो लोग हमारी सेवाओं का स्मरण करें और यदि उनके मन में हमारी मृत्यु का शोक हो तो हमारी वह मृत्यु सैकड़ों जन्मों से श्रेष्ठ होगी। यदि शव यात्रा में लोग बुराई करें, मन ही मन प्रसन्न हो अपने परिकर में कहें कि और पहले मर जाता तो अच्छा था, तब निश्चित ही मृत्यु से पूर्व का जीवन भी निकृष्ट ही माना जाना चाहिए। इसलिए मृत्यु का भय नहीं माने और मृत्यु आने से पूर्व तक का हर क्षण अच्छे कार्यों में लगाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय था जीवन का अंतिम सत्य। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का था, वाचन था पुष्पा शर्मा का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर सविता देवी का है, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर सविता देवी का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय होगा खरीफ सब्जियों की उन्नत प्रजातियां विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे प्रातः 7:00।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का समय रहेगा प्रातः 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रजवार्ता, ब्रज साहित्य में प्रकृति सौंदर्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल कुमार रावत। चित्रपट संगीत गीतांजलि का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे प्रातः 8:30 पर। काव्यलोक सृष्टि का श्रृंगार वृक्ष है आप सुनेंगे प्रातः 9:00। कवि होंगे जितेंद्र सिंह। कार्यक्रम जिले की हलचल आप सुनेंगे प्रातः 9:15 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम आबो हवा का समय रहेगा प्रातः 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मानव और वृक्ष विषय पर। आलेख एवं वाचन होगा ललिता गुप्ता का। काव्यात्मक संवाद आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर, जिसका शीर्षक होगा जीवन के विविध आयाम। साहित्यकार, कवयित्री एवं समाज से

0: फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे प्रातः 10 बजे और फरमाइशी फिल्म संगीत हेलो आकाशवाणी का समय रहेगा दिन में 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर का समय रहेगा दिन में 12 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मथुरा। आज का विषय होगा लेप्रोस्कोपी सर्जरी एवं एआई तकनीक। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गौरव के गाए कुछ ब्रज लोकगीत। समय रहेगा दिन में 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक आप सुन सकेंगे दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा महिलाएं और पर्यावरण संरक्षण, हर घर एक पेड़ विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी मानसून में स्वास्थ्य सुरक्षा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खान पान वार्ता, बनारसी हलवा और आम की खिचड़ी। वार्ताकार होंगी पूजा चतुर्वेदी। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है खरीफ सब्जियों की उन्नत प्रजातियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसलों में कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, भिंडी, लोबिया और सेम का उत्पादन लिया जाता है। आज आप इनकी प्रमुख जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनके बारे में जान लें। सबसे पहले हम भिंडी को लेते हैं। भिंडी की जो प्रजातियां हैं उसमें आज़ाद भिंडी 1, परवनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, पूसा A-4 और BRS-6 प्रमुख किस्म हैं। बैंगन दो तरह का होता है, लंबा और गोल। लंबी किस्मों में बैंगन की में आज़ाद क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति KS-331 और पंत सम्राट। गोल बैंगन में आज़ाद B-1, पंत ऋतुराज कल्याणपुर टाइप 3, KS-224 और पूसा पर्पल राउंड। बैंगन की संकर प्रजातियां भी हैं जिसमें आज़ाद हाइब्रिड, अर्का नवनीत, सुफल, सुप्रिया, पूसा हाइब्रिड 5 और 6। मिर्च मसाले के लिए भी उगाई जाती है जिसमें पंत C-1, कल्याणपुर चमन, पूसा ज्वाला KDCS-810। अगर गृहवाटिका में मिर्च लगाना चाहते हैं तो इसके लिए चंचल, पंजाब लाल, पूसा सदाबहार किस्म अच्छी है। अचार के लिए अचार 8 और अचार 36 किस्म उपयुक्त मानी गई है। लोबिया की जो किस्में हैं उसमें पूसा बरसाती, पूसा दो फसली और पूसा कोमल। सेम की किस्म रजनी और टाइप 2। अब हम बात करते हैं कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी किस्मों के बारे में। लौकी जो लंबी लौकी आती है उसमें कल्याणपुर लंबी हरी, आज़ाद हरित, आज़ाद नूतन, पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा नवीन और अर्का बिहार। गोल लौकी किस्म है पंजाब गोल, पूसा संदेश, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड।

0: लौकी की ही संकर किस्मों में पूसा मंजरी, मेघदूत, वरद अच्छी किस्में हैं। तरोई में जो चिकनी होती हैं तोरई, उसमें कल्याणपुर हरी चिकनी, पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया। धारदार भी होती हैं तरोई, उसमें पूसा नसदार, रिज जेड, पंजाब सदाबहार, CO1। तरोई की संकर किस्मों में सुरेखा, हरिता, MSGH1। कद्दू कुल की जो किस्में हैं उसमें अर्का चंदन, पूसा विश्वास, पूसा विकास, अर्का सूर्यमुखी, अर्ली येलो और प्रोलिफिक, सोलन बादामी। करेला भी इस समय बहुत लगाया जाता है। करेला की किस्म है कल्याणपुर बारहमासी, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, अर्का हरित, प्रिया, फैजाबादी और बारहमासी। तो इन कद्दू कुल की सब्जियों की आप बुवाई 15 जुलाई तक आपको कर लेनी चाहिए। अगर इसमें अब आपको देरी हो ही गई है तो इस महीने के अंत तक।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था खरीफ फसलों की उन्नत प्रजातियां। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वती। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: शासनेन अनुमोदितम् अस्ति यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25-अधिक-2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशतदिनानां सवेतनवृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेषगहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिकगणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंट कप इत्यस्य 35-अधिकैकशततमं संस्करणं मासस्यास्य 25-दिनांकात् कोलकातायां आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है आग। शब्द रचना बहजाद लखनवी की है और इस गीत को धुन से संवारा है राम गांगुली ने।

0: मुखड़ा सब बोले हाय राम, होए होए सब बोले हाय राम,
1: हाय हाय सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम।
0: सबकी लागी उस पे नजरिया, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया,
1: सोलह बरस।

0: खबरिया अपनी तो ले कोई खबरिया।
1: 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 MHz पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हम भी इंसान हैं से। आवाजें हैं गीता दत्त और सुमन कल्याणपुर की, शब्द रचना शैलेंद्र की है और इस गीत को धुन से संवारा है हेमंत कुमार ने।

अभी आप सुन रहे थे साहिर का लिखा गीत, एसडी बर्मन का संगीत, आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था प्यासा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आवाज है मन्ना डे की, फिल्म का नाम दर्पण, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को संगीत निर्देशन दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: 2.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
4: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
5: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.8।

0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घटकर के आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
3: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, पार्ट वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा

0: पीटीईटी 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: श्रोताओं, आज हम वन महोत्सव सप्ताह की बात करेंगे। वन हमारा जीवन है। जो धरती पे पेड़ पौधा ना होए तो न शुद्ध हवा मिलेगी, न पानी, न छांव, न जीव जंतु बचेंगे। पेड़ पौधा धरती को श्रृंगार है और प्रकृति को आधार भी है। ब्रज की धरती तो सदा सो हरियाली, कुंज निकुंज और उपवन की धरती रही है। श्री कृष्ण जी ग्वालन कु और ग्वालन संग कदम की छांव में खूब खेले हैं, बंसी बजाई है, गैया चराए हैं। जालिए जब ब्रज की संस्कृति में वृक्षन को, पेड़ पौधन को बहुत ही ऊंचो स्थान दिया गया है। आज के समय में बढ़तो प्रदूषण, घटते जंगल और बदलतो मौसम हम सबको एक चेतावनी दे रहे है। अगर हम आज एक एक पेड़ लगाएं और उनको पालन पोषण करें तो आवे वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और सुंदर पर्यावरण मिल सकेगा। श्रोताओं, वन महोत्सव सप्ताह हमें केवल पौधा लगावे को ही संदेश ना देवे, बल्कि उनको परिवार के सदस्य जैसो स्नेह और पालन पोषण को भी प्रेरणा देवे। एक पेड़ सैकड़न जीवन जंतु को आश्रय देवे है, धरती को ठंडक देवे और जीवन को सुरक्षित बनावे है। आओ हम सब मिलकर संकल्प करें कि एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए और बाकी देखभाल भी करें। जब जब हम पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, तब तब हम पेड़ बचाएंगे, तब तब प्रकृति हमें आशीर्वाद देगी, हमारे साथ रहेगी और हमें भी आनंदित करेगी। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि पेड़ लगाओ, धरती सजाओ, हरियाली बढ़ाओ और भविष्य बचाओ। जय संदेश को आप सबन को वन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं मेरी ओर से। तो श्रोताओ, आओ जाई क्रम में अब आपको सुनवा दिए ब्रजवार्ता। लोक साहित्य में प्रकृति सौंदर्य, वार्ताकार हते डॉक्टर अनिल कुमार रावत।
1: काउ भौगोलिक अंचल को एक कबहू न भूले बारो एवं चिरंतन स्वरूप होतो है। जाकी विशेष प्रवृत्ति तो जेह है कि जाके पावन संगम में मानवीय नैसर्गिक प्रकृति को आनंद मिलतो है। प्रकृति को गठन परमात्मा ने कियो है। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, जहां तक नजर जाए मां तक देखे वे बारो नीलो आकाश, कल कल की आवाज करके बहवे बारी नदियां, झरना, सूरज, चांद, सितारे, सब ओर फैली हरियाली, वन उपवन, पशु पक्षी की चहचहाट, सब पे ही ब्रज लोक साहित्य में बड़ी सहज और सरल लेखनी को प्रभाव देखवे में आमतो है। जैसो कि सब जानते हैं, हर मौसम में प्रकृति नई साज सज्जा धारण कर लेते हैं और बामे प्राकृतिक सुंदरता की रमणीक ब्रजस्थली की छटा को तो कहवो ही कहा, बहुत ही मनमोहक होते। अब ये गेंदा हजारा खिलखिलाए रहे हो, फिर गुलाब महकन लगे हो और बेला अपनी सफेदी ते हास छटा बिखेर रहे हो और आनंद दे रहे हो। जाई के संग कदम की मादक सुगंधि ने मानव मन को मोहित कर लियो। अजब सुगंध आली उड़ रही, झुकी है कदम की डार। ब्रज लोक साहित्य में प्रकृत सौंदर्य को जहां तक सवाल होए, बामे चाहे तो ब्रज की गद्य हो चाहे पद्य काव्य, सब में राधा कृष्ण को जिक्र काउन काव रूप में जरूर मिलेगो। और चौन होए ब्रज भूमि कृष्ण की किरण स्थली जो रही है, कहवे को मतलब होए कि राधा कृष्ण के बिना ब्रज को लोक साहित्य अधूरो है। ब्रज के लोक साहित्य राधा कृष्ण के नाम और उनकी लीलन ते सराबोर है। तभी तो प्राकृतिक चटा के जा ब्रज प्रदेश के रेत में लोट लगाए को मन करतो है। जमुना मैया के बिनाऊ ब्रजवासी अधूरे है। जमुना माता है, वंदनीय जमुना मैया कृष्ण राधा गोपिन की लीला भूमि है। जाइते ब्रज साहित्य में जमुना मैया को भरपूर चित्रण मिलो है। ब्रज भूमि के बीच में जमुना मंथर गति ते कलकल संगीत ते बह रही है, जाको नीलो जल ब्रज की शोभा द्वगुनी कर दे तो है। जीवन दायनी जमुना के किनारे कदम के पेड़ शोभा दे रहे हैं। फूलन ते लदे जि पेड़ और इनके ऊपर मंडराए रहे भौरन को संगीत मन में उमंग भर दे तो है। कदम बरसा ऋतु में जब फूले तब सबरो पेड़ पीरे रंग के गोल लड्डू जैसे फूलनते लद जाए। ब्रज के बाग बगीचन में बड़ी संख्या में कदम के पेड़ लगाए जाते हैं, उन्हें कदम खंडी कहते हैं। महात्मन ने

कदम खंडीन के बीच में रह के अपनी साधना करिए। देख सुनहरो पास गिर जल बिहार नंदगाम, कदम खंड ब्रचार हैं जगत नंद इह ठाम। कदम के वृक्ष को नातो ब्रज में अनेक लीलांते जुर्यो भयोय, बंशी लीला चीर हरण लीला गोचरण लीला और सबते मशहूर रास लीला। बंसी लीला में कृष्ण जमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे ठाड़े है के बंशी की धुन में गोपीन को नाम ले लेके बुलामत है। कबू पेड़ पे चढ़के मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं, जाय सुनके गोपी ग्वाल उनके पास पहुंचवे कु व्याकुल है जाए। मनुष्य की कौन चलाई देव तो मोहित है जाते हैं। कूल कालिंद जाके घनश्याम कदम की छाह में बैन बजा में, जमुना किनारे प्यारी कदम तर मोहन बांसुरी बजा में। सुर नर मुन मोहित भय वर्षा वर्णन कियो न जाए, प्राकृतिक सौंदर्य के जयी क्रम में शरद पूर्णिमा की चांदनी छिटक रही है। रात की शांति मनोहर और सुखद मौसम, जमुना तट की रमणीक शोभा, किनारे कदम के फूलन की मस्त खसबोई बिखर रही है। धीरे धीरे शीतल मंद पवन बह रही है। ऐसे मनमोहक वातावरण में कृष्ण कन्हैया के मन में रासलीला के बहाने राधा और गोपिन के मन की अभिलाषा पूरी करने की इच्छा भई। तब उनने कदम के नीचे ठाड़े है के मुरली में स्वर फूंके, बंशी की धुन सुन के नर और मुनि मोहित है गए। पशु पक्षी ने अपनी सुध बुलाए दी, नदी की गति रुक गई, चंद्रमा अचल है गए। ब्रज गोपी व्याकुल है के कृष्ण कन्हैया के पास पहुँच बेकू दौड़ पड़ी। जालीला में प्राकृतिक सौंदर्य भरो परो है। ब्रज के लोक साहित्य के प्राकृतिक सौंदर्य में कदम के पेड़ और जमुना मैया को विशेष महत्व है। कदम को उल्लेख सूर ने कियो है, कह धो कुंद कदम बकुल बट चंपक ताल तमाल। रसखान कही है, जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम की डारन। जात रहते शरद को नीलो आसमान, धवल चांदनी नीरव रात, जमुना तट की चमकीली रेत और बाकी रमणीक शोभा पीरे फूलनते लदे सुगंधित कदम को ब्रज के साहित्य कारण ने बड़ो ही सुघड़ वर्णन कियो है। वैसे तो ब्रज साहित्य में षडरित को वर्णन कियो गयो है, पर बामेऊ पावस शिशिर और बसंत प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से बहुत महत्व के हैं। ब्रज लोक साहित्य में सामन की मल्हारन को बड़ो ही महत्व है। सामन के महीना में कारे कारे बदरा घिरे आमत है, वर्षा की छोटी छोटी बूंद टपके, कबू आसमान साफ है जाए, कबू इंद्रधनुष की छटा बिखर जाए, कबू बिजली तड़तड़ान लगे, कबू रिमझिम बादल बरसें। ऐसे में बाग बगीचन में कदम और नीम के पेड़न पे ब्रज की गोपी झूला डार के झूलें और मल्हारन को गायन करें। जैसे ब्रज में मल्हारें आई सावन में, झूला परे देखो बागन में। सावन आयो कारे कारे बदरा घिर रहे जी, ए जी कोई आ रही अजब बहार। सावन के महीना में प्रकृति बड़ी सुंदर लगबे लग जाए, मन में भीतर ते उमंग उठे और तराने अपने आप ही फूट पड़े। वृक्ष लता फल फूल रहे, राधा संग घनश्याम प्रेम ते हंस हंस झूला झूल रहे। बादल गरजे चमके बीजरी जी, ए जी कोई मोर करे बहुशोर। कोयल कूके हरियल डाल पे जी, ए जी कोई पवन चले झकझोर। बादल के घिरते ही मोर नाचवे लगे, बादल गरजे बीजरी चमके, पेड़ की डारन पे बैठी कोयल कुकबे लगे। पपीहा पीहू पीहू को राग अलापे, मेणुकाऊ टर्र टर्र को अपनो राग सुनाएवे में पीछे नाए रहे। जे ब्रज लोक साहित्य को ऐसो प्राकृतिक सौंदर्य के जाके आनंद को वर्णन करबो टेढ़ो काम है। जाई के संग एक और उदाहरण प्रकृति सौंदर्य को मने छू जाए। घटा पछिया फिर उठी चौगिरदा से छाए, घटा उठी है घनघोर बिजली तो चमके जोड़ते। देर तलक आकाश में बादल खिलवाड़ करके धरती पे अचानक बरसवे लग जाता है। वातावरण सरस है जातो है और फिर अंधेरो घिरियामत है। जलधार झरवे लगते है, कारी कारी कारी आई दे दे दीह अंधियारी, छरर छरर जल धारण झराती है। वर्षा ऋतु के समाप्त हैवे पे प्राकृतिक सौंदर्य को बखान जात रहते ब्रज के लोक साहित्य में सरलताते कियो गयो है। मोरन को सोर गयो, घनन को घोर गयो, झिंगुर को जोर गयो, मोरन आनंद है। लाल बलबीर अबे पावस को जोर गयो, शरद को सोर रहो छयो बहुत सुगंध है। शरद के आयबे पे प्राकृतिक सौंदर्य पे बलबीर जी ने और कही है, फूले अरविंद वृंद विमल तड़ागन में, बागन चमेली बिली सुखमा आमंद है। शरद ऋतु के बाद प्राकृतिक सौंदर्य में बसंत ऋतु की अपनी न्यारी महिमा है। मादकता गई छाए है गयो शिशिर ऋतु को अंत, समय सुहावन है मन भावन आयो सखी बसंत। अब सब और बड़ो सलोनो रंग छाए रहे हो है, बसंत जो आए रहे हो है, बसंत और ब्रज में कहा।

0: कहबो, हर सिद्ध सब क्यारी हैं, हाँ ब्रज में बसंत की छटाऊ न्यारी हैं। जा शोभा ब्रज कविन ने अपनी कविता समारी है, कोकिला की कूक जारी है, सर्दी के जैबे की तैयारी है, भांत भांत के फूल खिले, पीली सरसों लहराए रही, मानो पीरी ओढ़ चुनरिया सकल धरन इठलाए रही। गुलाब चटक उठे ऋतुराज के आयब की सुनके, ऋतुराज बसंत मदन मही पुजू को बड़े लाड़ प्यार ते पार्यो भयो राजकुमार वह, कोई एरो गैरो बालक ना है। बाय जगाए की बारी तो गुलाब की चटकारी की आई है, आचार्य देव बसंत पे बलिहारी है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छब भारी है। कहाँ धरती कहाँ धाम, कहाँ वन कहाँ बाग, कहाँ पेड़ कहाँ पंछी, कहाँ नर कहाँ नारी, सब बसंत के आए बेते आनंद मगन है उठे हैं। सेनापति ने प्रकृति के सौंदर्य को वर्णन कियो है। कूक उठी कोकिलान कूंजी गूंज उठी मोर मोरे वीर, डोल उठे सौरभ समीर सरसावने, चहक चकोर उठे कर कर सोर उठे, तेर उठी सारिका विनोद उपजावने। घनानंद की चौपाइन में हूँ बसंत को प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठ्यो है। बन बसंत बरनत मन फूल्यो, लता लता झूल निस्संग झूल्यो, खगन चुटुक पिक कुहुक सुहाई, बन मनमथ की फिरी दुहाई। ब्रज लोक साहित्य में तो बसंत रच बस गयो है, और चौन बसे जब ब्रजराज ही बसंती है रहे हैं, तो ब्रज तो बसंती हो ही हो। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है। मोर मुकट की गुलाब की चटकारी और उत मोरन की भीड़ भारी, बिहारी को भोरा जाई आस्ते अटक्यो परयो है। यही आस अटक्यो रहे तो अले गुलाब के मूल हैं फिर बसंत ऋतु इन डारन वे फूल। ब्रजलोक साहित्य में बसंत को वर्णन प्राकृतिक सौंदर्य में, चाहे संयोग हो चाहे वियोग, मने झकझोरवे की सामर्थ राखे। उधोते गोपिन ने कही बिना कृष्ण हम पे बसंत को सुख न लियो जाए। हरे हरे पातन में हरी हरी ज्योत जगे, पीत फबे फूलन में जग बोरायो है। पद्माकर ने कही औरे भांत गुंजन में गुंजरत भीरे भोर, ब्रज लोक साहित्य गद्य में लिखे पूछरी के लोठाऊ में प्राकृतिक सुंदरता की झांकी देखवे को मिलते। जैसे सांझ को समय है रहो है, सूरज भगवान गिरिराज जी के चरण में दंडोत करवे के ताई झुक परे, ठंडी हवा कछु और जोड़ते चलवे लगी, गोवर्धन के ऊपर जो धोके नंगे वृक्ष उड़े ठाड़े, बिन में सरसराहट है उठी। जैसे काऊ ने सुसरारियन के लत्तन पे लाल रंग को डोल भर के डाड़ दियो होए, जात रहते पर्वत बसंत चकवा चकबी को संयोग, कस्तूरी गंध के उन्मादे मृग किन्नर किन्नरी करील पीलू गौ धूल बेला धोतायो आद के प्रसंग ब्रजलोक साहित्य के घने ही समृद्ध अंश है।
1: अवई आप सुन रहे हते ब्रज वार्ता, लोक साहित्य में प्रकृति सौंदर्य। वार्ताकार हते डॉक्टर अनिल कुमार रावत। श्रोताओं, जब ब्रज के सौंदर्य के आगे तो तीनों लोकन को सौंदर्य भी फीको पड़ जाए, तभी तो हर कोई श्रद्धालु हर कोई भक्त यहाँ आवे को लालायत रहवे, और गांवें झूमें नाचें वृंदावन में आके, तो आओ हम भी झूमें तुम भी झूमो जा। ब्रजलोक गीत के माध्यम से ब्रजलोक गीत कौन को है, जगदीश ब्रजवासी को गायो भयो। तो आओ जब सुनो जब प्यारे से मीठे से ब्रजलोक गीत को।

श्रोताओं, बात चली है वृंदावन की, गिरधर की। तो आओ, हमें कछु सुना रही हैं प्रिया बंसल, आप सुनो।

को कृष्ण कन्हैया ने। जब मीठे से ब्रज लोकगीत को आप सुन रहे हते, गायो हतो प्रिया बंसल ने। श्रोताओं, जाई ब्रज लोकगीत के संग अब कार्यक्रम को संपन्न करवे की दुर्गेश भास्कर को दो अनुमति। तो सभी श्रोतान को हमारी ओर ते जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर

प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी।

0: 52 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह

0: समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख?
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिंह हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी आज 2 जुलाई में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। श्रोताओं, यदि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक के द्वारा किए जाने वाले उपचार के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी आज 2 जुलाई 2026 और इस समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। शब्द रचना इंदिवर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था ओपी नैयर ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ है मोहम्मद अजीज की और फिल्म का नाम है राम अवतार।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था ससुराल। शब्द रचना शैलेंद्र की थी और इस गीत को धुन से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और इस गीत को धुन से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम है यादगार।

0: थे तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुम।
1: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत गीतांजलि का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है काव्यलोक, सृष्टि का श्रृंगार वृक्ष है। कवि हैं जितेंद्र सिंह।
2: श्रोताओं जय श्री कृष्ण। हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से बोल रहे हैं। वह योगेश्वर कृष्ण जिनके आसपास मधुवन, वृंदावन, बेलवन, भांडीरवन, निधिवन और ना जाने कितनी वन्य संपदा संरक्षण पाती रही है, वो स्वयं जो गोपाल हैं, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जिनका जीवन प्रस्तुत रहा, आज वन सप्ताह के अंतर्गत एक काव्यपाठ में वन के संरक्षण के संबंध में आप तक पहुंचा रहा हूं।

वन संपदा के संरक्षण हेतु एक छोटा सा कायोपाठ आप तक पहुंचना चाहता है। एक काल्पनिक काव्य कथा आप तक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वीकार करें। दो शीशम के पेड़ खेत में खड़े हुए, संग हवा में झूमे, संग में बड़े हुए। एक किसान के घर में 70 साल

लेकिन उनकी किस्मत उनसे थी हेठी। दोनों शादी संबंधों के लायक थे लेकिन दीनहीनता के परिचायक थे। कैसे भी करके बेटे का ब्याह किया, सामाजिक संदर्भों का निर्वाह किया, बेटे तक के ब्याह में कर्जा ले बैठा, बाकी बेटी की खातिर सब दे बैठा, बेटी की चिंता में घर घर घूम रहा, दौलतमंदों की चौखट को चूम रहा। उस पर क्या क्या बीती वही समझता था, उसकी आंखों से अब लहू बरसता था। बेटी पर लोगों की नजरें तीखी थीं, हर दिन था बेचैन और रातें फीकी थीं। बेटी की खातिर जब गया किसी घर में, मांग मिली उसको दहेज की उत्तर में, बेच दिया घर रिश्ता पक्का करने को, कन्या के उस ऋण से पार उतरने को। फिर क्या था, घर शहनाई बजने लगी, किंतु वक्त पर समधी की लिप्सा जागी। बोले, इंटर पास बेटा अपना है, इसको एक गाड़ी मिल जाए सपना है। यदि आपको भावर पढ़वानी होगी तो निश्चित ही ये मद भी बढ़वानी होगी। ऐसे नाजुक वक्त पर ऐसी अनहोनी, लगने लगा कि शायद शादी नहीं होनी। सोच वक्त की मार बेचारा रोता है, ऐसे में ईश्वर का सहारा होता है। सच है उसकी लीला सबसे न्यारी है, वही जन्मदाता है पालनहारी है। आज वो दोनों शजर भी रोने लगते हैं, देख दृश्य भावुक होने लगते हैं। उनमें से एक बोला, एक किसान सुन ले, मैं कटने को हूं तैयार, मुझे चुन ले। इसका तना ये माना मुझसे मोटा है, लेकिन मुझसे ये 2 महीने छोटा है। इसके संग में मैंने लहराना सीखा, दुख में दुख और सुख में सुख पाना सीखा। सबकी खुशियों में ये जमकर झूमा है, इसका माथा मैंने झुककर चूमा है। हमें जन्म देने वाली एक माई है, इस नाते से सगा मेरा ये भाई है। इतना सुनकर एक घटना घट जाती है, धरती मैया की छाती फट जाती है। एक छोटा सा घड़ा चमकने लगता है, भाग्य को भी सौभाग्य सा लगने लगता है। देखा देखा तो पाया सोने के सिक्के थे, बाजी अंतिम थी और तुरुप के इक्के थे। तभी गर्जना होती है एक अंबर से, मत करना संबंध लालची इस घर से। यह धन बेटी की शिक्षा पर खर्च करो, उसको संभल दो, उसमें उत्साह भरो। बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं, शिक्षा से वंचित रखने का तर्क नहीं। सोच सोच कर आंखों का जल बहता था, लिपट वृक्ष से बेटा बेटा कहता था। कौन भला जो सच्चा साथ निभाता है, अंत समय में पेड़ काम में आता है। तब कहता हूं, वृक्षों का वंदन करिए, फुलवारी को महका कर नंदन करिए। जीवन में यदि एक भी वृक्ष लगाओगे, कम से कम 10 बेटों का सुख पाओगे। 10 बेटों का सुख तो एक कहावत है, असल में पौध लगाना अच्छी आदत है। वन ही तो हैं जो ये धरा सजाते हैं, यही मानवता की उम्र बढ़ाते हैं। आओ ले संकल्प वृक्ष संरक्षण का, हम पर है एहसान धरा के कण कण का। इस उपकार के बदले कुछ सत्कर्म करें, वृक्ष काटने में थोड़ी तो शर्म करें। वृक्ष ना होंगे हाहाकार तो मचना है, हम हो या हो वृक्ष उसी की रचना है, हम हो या हो वृक्ष उसी की रचना है। तो बंधुओं, ये कविता रही वृक्ष संरक्षण के लिए, जिसका उद्देश्य साथ में ये रहा कि चाहे वे दहेज के लोलुप इंसान हों, चाहे हम बेटे बेटियों में फ़र्क करते हैं और उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं, और जिनसे उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है, और इसकी मूल आत्मा वृक्षों के संरक्षण का और पौधों के रोपण के लिए जागरूक करने का भाव। एक गीत और रखना चाहता हूँ आत्मविश्वास का, ये गीत आप तक पहुँचेगा। मेरी अधिकतर कविताओं में प्रकृति के जो बिंब विधान हैं उनका आलम्बन लिया गया है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर प्रकृति के बिंब विधानों को कवि लेखक साहित्यकार प्रयोग ना करें तो उनकी रचना भी पूरी ना हो पाएगी। सृष्टि की रचना भी

इन्हीं वनों से, वृक्ष विटपों से, वल्लरियों से, पुष्पों से और वन्य संपदा से गंधयत होती है, सुरभित होती है। आइए एक गीत और मैं आपके आंगन में रख देता हूं। मैं अपने श्रम से कांटों को तुलसी का आंगन कर दूंगा, मैं अपने श्रम से कांटों को तुलसी का आंगन कर दूंगा, आंखों से झरती बारिश को,

किया दत्तवालों को, अवसर में एक डर दिखता है, अवसर में एक डर दिखता है।

गढ़ा है जीवन, शेष को स्वयं गढ़ेंगे हम। अगर हौसले को तकलीफें दिखलाओगे, मन टूटेगा तकलीफों को। अगर हौसला दिखलाओगे, भ्रम टूटेगा तकलीफों को। अगर हौसला

0: तुलसी का आंगन कर दूंगा, तुलसी का आंगन कर दूंगा।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यलोक, सृष्टि का श्रृंगार वृक्ष है। कवि थे जितेंद्र सिंह।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट।

0: एंड फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
1: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने गिघासु गंगा पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पुल पर कराए गए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पर शेष तकनीकी परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। गिघासु गंगा पुल के पुनः संचालित होने से रायबरेली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
2: 1970 के दशक का जो निर्मित पुल है वो काफी दिनों से बंद था, जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा था। अब अभी वो लाइट व्हीकल्स के लिए खोला गया है और जल्द ही उसको 10 से 15 जुलाई के बीच में हेवी व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया जाएगा।
1: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 14,75,000 समय सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 91वीं रैंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रत्येक विजेता हेतु जुलाई माह में नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। हेडमास्टर को शैक्षिक एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम समुदाय एवं जनपद रायबरेली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनपद दोतरा से दिल्ली तक गूंजा नाम राष्ट्रीय जीत ने रायबरेली व उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर दलमऊ स्थित VIP गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश अचान ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए माँ गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में बड़ा मठ के देवेंद्रानंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। माँ गंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद KL शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी

0: स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जांच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप ही संचालित हों। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकार द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर और बिल्डिंग का अवलोकन करते हुए निर्माण गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने भवनों के बाहरी एवं आंतरिक हिस्सों का निरीक्षण करते हुए पाया कि कुछ कार्य अभी भी अवशेष हैं।
1: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालौन में आयोजित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूरघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा, हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डों से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग

0: भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय है मानव और वृक्ष। आलेख एवं वाचन ललिता गुप्ता का है।
4: श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान सर्वाधिक होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित आम आदमी ही होता है। मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के मूलभूत घटक हैं। इन सभी के तालमेल से पर्यावरण स्वस्थ और संतुलित रहता है। किंतु अत्यंत खेद की बात है कि आज मनुष्य अपने अहम और स्वार्थ के बसीभूत असंतुलित भौतिक विकास की दौड़ में अंधा होकर बेरहमी के साथ वनों को उजाड़ रहा है, काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, प्राणवायु को विषैला बना रहा है। प्रकृति पर लगातार होने वाले ये हमले पर्यावरण को तिल तिल करके नष्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो आज का मनुष्य अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर आज विनाश की ओर बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण में मानव का योगदान दो चरणों में होगा। सबसे पहले प्रदूषण की गति थाम कर, दूसरा संरक्षण को गति प्रदान करके। वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण शब्द का दायरा सूक्ष्म में जैविक कोशिका से ब्रह्मांड तक बढ़ गया है। औद्योगिकरण और मानव सभ्यता के आधुनिक विश्वास से पहले पर्यावरण और मानव दोनों के बीच एक सामंजस्य एवं संतुलन था, परंतु जैसे जैसे उद्योगों का फैलाव बढ़ता गया और जनसंख्या वृद्धि से आबादी के घनत्व में बढ़ोतरी होती गई, वैसे वैसे कई क्षेत्रों में पर्यावरण विकृति की गति इतनी द्रुत होती गई कि अब प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन करना एक विकट समस्या बन गया है। इससे न केवल मानव जीवन संकट में है, अपितु पशु पक्षी एवं वनस्पति जगत के लिए भी यह संकट उतना ही भयावह हो गया है। इसको हमें बचाना है। इस संकट से बचने के लिए यह आवश्यक है सारी पृथ्वी पर मिलजुल कर ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिससे हमारी पृथ्वी और पर्यावरण सही सलामत रहे। वृक्ष लगाएं, तीव्र औद्योगिकरण, वनों के बेरोक टोक कटाव, नदियों में कूड़े कचरे का प्रवाह, कृषि में रसायनों का असंतुलित प्रयोग और तेजी से बढ़ती जनसंख्या आदि के द्वारा पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए मनुष्य ही पूर्णतः जिम्मेदार है। इसके लिए हमें ऊर्जा की बचत अधिक से अधिक करनी चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य के लिए घातक है उसके वायुमंडल में जाने की गति धीमी हो जाए। दूसरी ओर हमें ऊर्जा के उन स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा जिनसे ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा एक है। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो न इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और न ही मीथेन। इस प्रकार हम पवन ऊर्जा का प्रयोग भी करें तो यही सब लाभ होंगे। सौर ऊर्जा से हम खाना भी पका सकते हैं, बिजली भी बचा सकते हैं। यदि हम व्यर्थ कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करें तो मोटर गाड़ियों के उपयोग में थोड़ी सी योजनाबद्ध नीति पेट्रोल की खपत को कम करके पर्यावरण को दूषित होने से बचा जा सकता है। मानव चाहे तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास को रोके बिना भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। अवशिष्ट प्रदूषक पदार्थों का कंपोस्ट खाद बनाकर मानव उपयोग में लाए, उन्हें जल में नहीं बहाए ताकि उनके हानिकारक तत्व जल में नहीं जाएं और मनुष्य बीमार नहीं पड़े। इस दिशा में अधिक से अधिक शोध एवं प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे इसके लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताएं सीमित रखे और अपना जीवन सादगी से बिताए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले एक ही वाहन का उपयोग करें तो पेट्रोल की खपत कम होगी। पॉलिथीन का प्रयोग न करें, जल का अपव्यय न करें, जनता में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाएं। जल, जमीन और जंगल की रक्षा से ही सारे मानव जाति की रक्षा हो पाएगी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय था मानव और वृक्ष।

0: आलेख एवं वाचन ललिता गुप्ता का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है काव्यात्मक संवाद जीवन के विविध आयाम। साहित्यकार, कवित्री एवं समाज सेवी पूनम भाटिया से ओपी सिंह की बातचीत।
5: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं साहित्यकार, कवि और समाज सेवी के रूप में भी अपनी पहचान बना रही पूनम भाटिया जी। आपका यूं तो बहुत सारे जीवन के जो आयाम हैं उनसे सरोकार है, उनसे अपना एक रिश्ता है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक साहित्यकार और कवि के रूप में ही उनकी करवा रहा हूँ। आपका बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे उनको नवाजा गया है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनकी ही वाणी से हम जानेंगे कि जीवन को वो किस रूप में समझती हैं, देखती हैं। और एक साहित्यकार की जो चेतना होती है, साहित्यकार के जो सरोकार होते हैं और साहित्यकार की जो भूमिका होती है, वो जो समाज को दिशा दे सके, लोगों को बोध करा सके, उन कुछ प्रश्नों के साथ आज हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये अवसर दिया जिसमें हम कुछ मेरे कार्य के बारे में, कुछ समाज के बारे में, कुछ साहित्य के बारे में चर्चा कर सके। आकाशवाणी मथुरा का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद
5: जी। एक चार लाइन की कविता है जो मेरे सामने है और वो आपकी है। मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में मैं ढलना चाहती हूँ, नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, भुलाकर खुद को मैं सूरज सा जलना चाहती हूँ। तो प्रकृति का कोई भी उपादान हो, हम आपने सूरज की बात की है, वो नियमित और निरंतर जलता रहता है। आग क्या हमको ऊर्जा देता है, बल्कि जीवन का अगर संचालन हो रहा है तो उसके पीछे वो शक्ति और ऊर्जा ही है जो सूर्य से दिन प्रतिदिन और निरंतर निष्पादित होती रहती है। तो क्या मैं समझूं कि एक व्यक्ति का जो समाज में है, व्यक्ति के रूप में आया है, उसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या यही नहीं होना चाहिए कि वो खुद जले और सबको दिशा भी दे, रोशनी भी दे और बोध भी कराए? तो एक साहित्यकार के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति होने के नाते समाज में उसकी जो भूमिका है, उसकी जो सरोकार है, उनको आप कैसे देखती हैं?
6: बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब आपने कि आपने सूरज की बात की और मैंने कहा था भुलाकर खुद को मैं सूरज से जलना चाहती हूँ, मैं कविता हूँ समय के साथ चलना चाहती हूँ। तो बात सूरज की है तो सूरज के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि रोज रोज का सिलसिला सदियों से अविराम, रोज रोज का सिलसिला सदियों से अविराम, सूर्य देव को है मिला कहाँ कभी विश्राम।
5: क्या बात है।
6: तो बात यह है कि सूर्य से तो हमने प्रेरणा, सूर्य से हम सब ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वो ऊर्जा हमारे अंदर संचालित होती है और हम सारे कार्य करते हैं, तो वो ऊर्जा प्रेरणा का कार्य भी करती है। और ये साहित्य, जो साहित्य तो कहा ही जाता है सहित, जो समाज के हित के लिए कहा गया हो, तो अगर हमारा साहित्य हम कुछ ऐसा नहीं लिख पाते या ऐसा नहीं कह पाते जो समाज को उसका आईना तो दिखाए, लेकिन सिर्फ आईना दिखाना ही साहित्य का कार्य नहीं होता
5: जी,
6: है
5: जी, जी।
6: उस दशा दिखाना अलग बात है, लेकिन दिशा देना भी अलग बात है, समस्या बताना अलग बात है, समस्या के हल से जोड़ना भी एक साहित्यकार का काम है। तो मैं ये समझती हूँ कि बतौर साहित्यकार, हालांकि मैं खुद को साहित्यकार तो नहीं मानती क्योंकि जो लिखा है कुछ 7-8 किताबें ही लिखी हैं अभी, लेकिन

0: हाँ, साहित्य की हर विधा में लिखा है, गीत लिखा है, कविता लिखी है, छंद मुक्त छंद लिखे हैं, कहानी लिखी है, लघु कथाएं लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृतांत लिखे हैं। तो जो भी हम लिखें उसमें ये तत्व तो होना ही चाहिए कि वो समाज के काम आ सके, दिशा दिखा सके। जैसे कि एक मेरी कविता सीहोर मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान का वो आधार बनी, तो उसमें मैंने बहुत साधारण बच्चों के लिए लिखा था कि बच्चों पूनम लगाए लगाए गुहार, कूड़ा डालो बिन में हर बार। तो बिन में कूड़ा डालना जिसे सिखाना पड़ा कि भी आपका देश है, स्वच्छता जरूरी है। तो एक कविता के माध्यम से अगर हम ये संदेश बच्चों तक पहुंचाते हैं, और खाओ चॉकलेट टॉफी जितनी बार, आइसक्रीम से भी कर लो प्यार, पर छिलके रैपर ढक्कन खाली, सड़क पे फेंकना गलत व्यवहार।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: कविता सार्थक तभी होती है जब उसमें एक संदेश निहित हो और वो कुछ अपना कार्य कर जाए।
1: जी, बिल्कुल। और इसमें जो आपने बहुत सही कहा, एक ऐसे पहलू को जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए
0: जी
1: और उन्होंने जब इस पहलू को छुआ, तो लोगों ने दोनों ही तरह से उसको लिया। सकारात्मक पहल थी, सकारात्मकता में ही ज्यादा लिया गया, लेकिन कहने वाले तो ये भी है कि इतने छोटे काम के लिए क्या पहल करना।
0: हाँ
1: लेकिन कहीं ना कहीं आज के भागदौड़ के जीवन में इस जो भौतिकता आज इतना हावी हो गई है, तो जो संवेदना है, जो सरोकार है, जो संबंध है, जो भावना है, वो बहुत पीछे चली जा रही है। तो हमें उन छोटी छोटी चीजों को भी दिशाबोध देना पड़ रहा है कि ये
0: बिल्कुल
1: भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छता जैसा पहलू भारतीय संस्कृति में कम से कम जो हमेशा से जिसको पहले लिया गया, ना के खाइए, धो के खाइए, है।
0: हाँ
1: और अगर कच्चा भी है तो कम से कम जो है लीपन पोतन करके खाइए।
0: हाँ
1: किचन में तो बहुत स्वच्छता की बात है। तो ये चीजें चूंकि आज छूटती जा रही है, संवेदनाएं पीछे हो रही है, तो क्या लगता है कि साहित्य को फिर, यूं तो हम चेतना की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन अब पीछे लौट के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सूरज से हम ही वहीं से लेते हैं कि सूरज कभी विश्राम नहीं चाहता है।
0: बिल्कुल
1: हम शायद क्या कुछ पाके उसकी कल्पना करते हैं कि एक समय ऐसा आए जब हम विश्राम करें, लेकिन विश्राम शायद प्रकृति में है नहीं। विश्राम का मतलब कुछ अलग ही है। तो जीने की कवायद में शायद हम जीना ही भूल गए, इसीलिए शायद बहुत सारी चीजें पीछे रह गई।
0: हाँ, आपने इस बिंदु में बहुत सारे बिंदु उठा दिए, और बात यह है कि हम पीछे भी देखें और हम विश्राम भी करें तो अलग अलग बात है। देखिए, जो हमारा भूतकाल है उससे पीछा नहीं छूट सकता,
1: जी जी
0: उस तो वो तो आधार है हमारे वर्तमान का, और फिर जो वर्तमान में हम करेंगे वो आधार बनेगा भविष्य का। तो भूतकाल को तो देखना ही है, और हमारी सनातन की जो परंपराएं रही हैं वो परंपराएं, मैंने कहीं कहा था कि वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए,
1: क्या बात है।
0: धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए, नदियां वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे, धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम दैनम दिनम में करते हैं, जो हमारा रोज का काम है, उसमें बहुत ये होता है कि ये काम हम क्यों करते हैं। हमें रोज ये समझाया नहीं जाता है कि इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है, लेकिन वो हमारी जीवनचर्या में ऐसे बुन दिए गए हैं सनातन की, कि वो अपने आप ही जो है वातावरण का, पर्यावरण का, हमारे संस्कारों का जो है काम होता रहता है। तो जो जैसे भी वेद, अगर वेदों की बात करें तो उसमें 20 सहस्र अधिक मंत्र हैं, तो वो भी पहले लिख दिए गए। तो हमको लौट के तो वहां हम जा नहीं सकते,
1: सही
0: लेकिन
1: बात है।
0: हमें देखना तो होता ही है। एक शेर भी होता है ना, आगे चलता है फिर जाके एक हाइट पे जाके पीछे मुड़ के देखता है, कहते हैं सिंहावलोकन। तो
1: सिंहावलोकन।
0: हाँ, तो वो सिंहावलोकन तो करना ही पड़ता है। जब तक हम पीछे नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितना आगे आ गए हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: आगे
1: है।
0: की दिशा तय करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि पीछे देखें और पीछे से सीखें और आगे
1: जी
0: बढ़ें।
1: जी जी जी जी तो मतलब हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, जीवन के
0: हाँ
1: हर आयाम को हमें देखना भी होगा,
0: हाँ
1: सहेजना
0: और
1: भी होगा, और
0: सूरज की बात,
1: जीना भी
0: हाँ
1: होगा।
0: और
1: और
0: सूरज की बात तो डॉक्टर साहब हमेशा ही लागू है कि
1: हाँ
0: रोज रोज निकलना, रोज ढलना पड़ता है
1: सही बात
0: और
1: है।
0: चलना पड़ता है।

0: हमारे डॉक्टर कवि कुंवर बेचैन जी कह गए हैं, मेरी किताब की ही भूमिका में मेरी एक पुस्तक आई थी जिसकी भूमिका उन्होंने लिखी, अभी तो सागर शेष है,
1: हाँ,
0: तो
1: मैं
0: उसकी
1: देख रहा हूँ उसमें जी।
0: तो उन्होंने उस भूमिका में लिखा कि पूनम जो बहा वो रहा, समय के सतत प्रवाह में अगर आप प्रभावशील नहीं है, आप नहीं बहा, आप उसके साथ नहीं बहते, आपकी कविता उसके साथ नहीं बहती, आपकी सोच उसके साथ नहीं बहती, तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि जो रुका हुआ पानी है वो गंदला हो जाता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: बहता रहता है वो पवित्र
1: हाँ,
0: रहता है।
1: बहना पानी का धर्म है,
0: बिल्कुल
1: रुक जाना फिर वो
0: बिल्कुल
1: पानी होने
0: हाँ
1: का भाव भी खो देता है
0: तो
1: और
0: सही
1: अपने
0: बात है। तो उन्होंने
1: गुणों को
0: यही
1: भी
0: कहा
1: खो देता
0: कि
1: है,
0: जो
1: तो
0: बहा वो रहा,
1: जी
0: जो
1: जी
0: रुका वो चुका,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: चुकना नहीं है, चलते तो रहना ही
1: जी
0: है।
1: आपने कुंवर बेचैन साहब की अपने जिक्र किया, बहुत अच्छे गीतकार, संवेदनाओं के चितेरे रहे उसमें। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, उसमें ये जानना चाहता हूं कि जो भाव पक्ष है जीवन का, व्यक्ति का, समाज का, क्योंकि वो पहला रूप है, सूक्ष्म रूप है, वो शायद कहीं छूटता जा रहा है उसमें। अब हम स्थूल उसमें ज्यादा होते जा रहे हैं, संबंधों को भी बहुत स्थूल रूप में देख रहे हैं, लेकिन संबंध एक्चुअल में स्थूल है नहीं, उनके पीछे त्याग है, बलिदान है, सेवा है, लेकिन ऐसी जो चीजें हैं आज कहीं ना कहीं बेईमानी सी लगती है व्यक्ति को। व्यक्ति को लगता है कि जैसे माँ बाप की ही बात करूं मैं, आजकल हम बच्चों के करियर को लेके बहुत सजग हो गए हैं, लेकिन सजगता सिर्फ इस रूप तक हो गई है कि आज पैसा है, बच्चे को आपने एक लैपटॉप दे दिया, एक 10x12 का एक एसी लगा के कमरा दे दिया, और उसका विद्यालय, उसकी पुस्तकें, और वो उसके संसार को आपने इतना छोटा कर दिया है कि अपेक्षाएं तो बहुत हैं, और आप अपनी जो इतिश्री वहां मान लेते हैं कि मैंने उसको ये सुविधाएं दे दी, अब मैं उससे जो सब अपेक्षा चाहता हूँ वो पूरी
0: पूरी
1: वो
0: होगी।
1: करे, लेकिन उसमें कई बार बड़ी विद्रूपताएं आती हैं, बड़े कष्ट होते हैं, और बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनको हम फिर ताउम्र याद भी नहीं करना।
0: पश्चाताप करते हैं।
1: हाँ,
0: जी जी
1: तो क्या संबंध इस तक है कि हम भौतिक सुख सुविधाओं में ही उनको देखें, तराशें और जिएं, जबकि वो तो भाव रूप में और संवेदनाओं के रूप में ज्यादा जीवंत रहते हैं उसमें।
0: बिल्कुल भाव तो महत्वपूर्ण है, जैसे कविता में भी कहा जाता है कि सबसे पहले तो भाव महत्वपूर्ण है, शिल्प तो उसके बाद आता है।
1: बाद आता
0: तो
1: है।
0: संबंधों की जो बारीकियां हैं, केवल जिसे कहते हैं मेटेरियलिस्टिक तौर पर, जो हम उनको चीजें उपलब्ध करा दें, सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दें और फिर उनसे अपेक्षा रखें कि वो पूरी करेंगे, तो ये कुछ ज्यादा हो जाता है। कि एक तो ये तो बदले की बात हो जाती है, अदला बदला। मैं तो यहां तक भी कहती हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, कि अगर आप आजकल ये चलन चल गया है कि वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, तो वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? अगर हम उसकी जड़ में जाएं, क्योंकि हर चीज की जड़ तो होती है, तो अगर आजकल आजकल कहें या पिछले कुछ दशकों से, 60 के दशक के बाद से, 70 के बाद ज्यादा बढ़ गया, जब महिलाएं भी जॉब करने लगी और दोनों जॉब कर रहे हैं, अब बच्चे को आपने किसी क्रेश में डाल दिया है या उसे जल्दी स्कूल भेज दिया है, तो बच्चे को आप क्रेश, अब आजकल अमीर माँ बाप हैं, दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे को वो अच्छे से अच्छे क्रेश में डालते हैं, अच्छी सी अच्छी सुविधाएं देते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पे टीचर बहुत अच्छी है। तो जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो उनको अच्छे से अच्छे वृद्धाश्रम में डालते हैं,
1: हाँ, जहाँ सुख सुविधाएं
0: उसका
1: हो।
0: उसका मन नहीं कचोटता कि मैंने क्यों
1: हाँ,
0: इनको वृद्धाश्रम में रखा, क्योंकि आपका मन नहीं कचोटा जब आपने उसको क्रेश में रखा, आप उसको अपने से दूर भेजते रहे कि एक अच्छी सी नैनी उसको पाल लेगी, एक क्रेश में वो पल जाएगा, क्रेश में सब सुख सुख फिदा है। तो जब आपने नहीं किया, तो वो क्यों, उसका मन क्यों कचोटेगा?
1: सही
0: तो
1: बात है,
0: संबंधों की बात तो यही है कि तुम्हारे
1: मतलब
0: हैं,
1: आपने अगर नहीं जिया
0: हाँ
1: तो, या
0: आप,
1: आपने अपने हिसाब से जिया संबंधों
0: हाँ
1: को, तो वो भी अपने हिसाब से जी रहा है,
0: बिल्कुल,
1: उसमें फिर कोई उसमें विरोधाभास क्यों
0: हाँ
1: देखते
0: बिल्कुल, यही
1: हैं।
0: मैंने कहा है इस बारे में कि तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम, तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम, करो आज कल पर न डालो इन्हें तुम, बिखर जाएंगे रिश्ते टूटे जो बंधन, बड़ो और गले से लगा लो इन्हें तुम। तो भावपूर्ण संबंध, तो भाव तो जब तक प्रबल नहीं होगा, तो तब तक किसी भी संबंध का आधार नहीं होता है, केवल बदले की दुनिया।

0: या नहीं है।
1: जी जी
0: ना तो आपका एक गिव एंड टेक की बात करते हैं कि हमने आपको ये दे दिया, अब आप ये करो, आपको सुंदर सा, जैसे आपने कहा कि आपका रूम डेकोरेट कर दिया, ये कर दिया, अब यहाँ बैठो और वो रिजल्ट दो जो हम चाहते हैं, ये नहीं होता है। जिंदगी 2+2=4 नहीं है, जिंदगी में इधर भी है उधर भी है, जिंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, और बच्चों के साथ और अपनों के साथ संवाद बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
1: अब मैं तो ये भी देखता हूँ, आपने तो बहुत काम किया है साहित्य में भी और बहुत सारे आयामों को आपने छुआ है, सिर्फ वो संबंध नहीं जो ब्लड के ही, परिवार के ही, समाज के, अब तो ईश्वर के साथ भी संबंध बहुत सतही हो गए हैं, बहुत मतलब हम ये कहते हैं कि 1.25 रुपए के प्रसाद में हम 1.25 लाख पाना चाहते हैं, तो ईश्वर को भी क्या हम समझ में नहीं आता। तो आपने राम को लेकर के काफी कुछ लिखा है, आपने अपनी कुछ चेतना के उन चीजों को झकझोरा है लोगों के साथ, तो क्या हम वाकई में वो जो संबंध हो सकते हैं, ये तो बड़ा मतलब व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध ही बहुत आत्मीय होने चाहिए, लेकिन अपने इष्ट और अपने आराध्य के साथ के संबंधों को तो ऐसा होना चाहिए कि वो दिखने भी नहीं चाहिए, फिर एक दिखावा सा क्यों हो गया है, फैशन सा क्यों हो गया है, ऐसा चलन हो गया है कि पहले दिखना चाहिए निभे या ना निभे इसमें।
0: हाँ, दिखना चाहिए तो आपने बहुत आज की समय की जिसे कहते हैं नस पे आपने हाथ रख दिया है, क्योंकि वो दो बातें होती हैं आजकल सोशल मीडिया पे, अगर आपने कुछ काम किया है तो दिखना चाहिए, और अगर आप दिखते नहीं हैं तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड हो जाता है, तो जो दिखता नहीं है तो इसका मतलब वो निष्क्रिय है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो दूसरी बात आपने कही कि राम की बात, तो राम के ऊपर भी मैंने लिखा, राम के ऊपर एक अलग तरीके से लिखा है डॉक्टर साहब,
1: जी, जी, जी।
0: मैंने लिखा है कि राम कथा के पात्रों पे लिखा है, तो सबसे पहले तो क्योंकि राम कथा है तो राम के बारे में ही लिखा कि रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ,
1: क्या बात,
0: मुश्किलें हल हुई पथ सुगम हो गए, राम की जब लगी लौ में तपना हुआ,
1: क्या बात।
0: और राम की कथा में बहुत से पात्र आते हैं, आप देखिएगा कि एक पात्र आता है मंथरा, तो उसकी बात करूं मैं आपसे कि राम को जो चुभा शूल थी मंथरा,
1: क्या बात है,
0: दुख अवध को मिला मूल थी मंथरा, और माना अपराध के कई से ही हुआ, सोच पर जो पड़ी धूल थी मंथरा,
1: क्या बात।
0: तो राम कथा के पात्र तो ऐसे पात्र हैं कि आप उनसे सीखें, उनके बारे में जानें, बल्कि मैंने अलग अलग पात्रों के बारे में लिखा है कि वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जियाले जटायु ही थे, सीए दशानन के द्वारा हुई अपहरित, सूचना देने वाले जटायु ही थे। तो राम कथा के पात्रों पर लिखते लिखते तो मैंने ये भी सोचा डॉक्टर साहब कि आजकल बड़ी जैसे किसी भी ऑफिस में जाएं तो उस ऑफिस में अधिकारी से मिलने पहले उसके जो गेट पे बैठे हैं उनके असिस्टेंट उनसे बात करनी पड़ती है,
1: निश्चित तौर पर।
0: हाँ, तो मैंने
1: कई सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है जीवन में।
0: तो मैंने ये कहा लोग पूछते हैं इसी मामले में कि राम को पूजें कि हनुमान को पूजें, पहले किसको पूजें, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं। तब मैंने ये कहा कि राम भक्ति का द्वार है हनुमत वेद विधान, सहज मिले श्री राम भी भज लें यदि हनुमान,
1: क्या बात है।
0: तो ये दुनिया का लॉजिक है कि आपको कहाँ कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, तो राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी,
1: जी भी
0: हमारे
1: और हनुमान स्वयं के उस नाम में जो लिखा हुआ है, शायद अगर एक छोटा सा उनके नाम का विश्लेषण ही कर लें कि जो अपने मान को दबा दे, जो अपने सम्मान को छुपा दे,
0: छोटा
1: वो हनुमान है।
0: हाँ।
1: तो ये अगर व्यक्ति शायद समाज में आज कर ले तो कद उसका बहुत बड़ा हो जाता है। अभी आपने दिनकर विमर्श को लेकर के भी एक जो पुस्तक आ रही है उसमें एक संपादन का काम किया, तो मैं पहले बेचैन जी का जिक्र आप कर रही थी, सूर्य का आपने जिक्र किया, लेकिन दिनकर भी उसी कड़ी के

0: हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने वो लिखा है जिसको अगर हम थोड़ा सा भी समझ लें, आत्मसात कर लें, तो पथ आसान हो जाता है, रास्ते निकल आते हैं, चीजें दिखने लगती हैं जो जिस मायने में है, जो जिस रूप में है। तो क्या मैं अगर ये पूछ लूं कि दिनकर आज कितने प्रासंगिक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि दिनकर के माध्यम से हम जीवन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते
1: देखिए, आपने उस जगह लाके खड़ा किया है जहां मैं आजकल काम कर रही
0: हैं?
1: हूं
0: जी
1: और जो मेरी सोच का विषय भी है और कार्यक्षेत्र भी है।
0: जी
1: तो बात दिनकर की है और ये मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने सूर्य से शुरू करके सूर्य पे ही लेके आए हैं।
0: जी
1: तो उनका नाम तो रामधारी सिंह दिनकर था,
0: हाँ
1: लेकिन जो दिनकर जो उपनाम लगाया उसको उन्होंने इतना सार्थक किया है,
0: जी
1: इतना सार्थक किया है कि हर अंधेरे में उनका जो सूर्य है वो चमकता है, आपका मार्ग प्रशस्त करता है। और आज के माहौल में दिनकर एक कालजयी रचयिता है।
0: जी जी जी
1: उनकी कविताएं, उनका लेखन, चाहे वो संस्कृति के चार अध्याय हो, चाहे हुंकार हो, चाहे रसवंती हो, चाहे उनका कर्ण वाला जो उनका
0: जी
1: रहा
0: जी
1: है कुरुक्षेत्र वो रहा हो, तो हर जगह उन्होंने ऐसा लिखा है जो लिखा आप भूतकाल के जो हमारे पुराणों के इतिहास लेके लिखा, लेकिन उसके उस पर उन्होंने अपना कार्य किया और उसके बाद उसको आज भी प्रासंगिक रखा। अब जैसे कर्ण की बात कर लें, कुरुक्षेत्र की बात कर लें, तो उन्होंने ऐसा लिखा कि एक जाति जो है वो बड़ी बात नहीं है, आपका कार्य, आपका
0: आपका
1: संबल,
0: जो
1: आपका भुजबल जो है बड़ी
0: आपका
1: बात है,
0: मनोबल
1: मनोबल
0: जी
1: भुजबल बड़ी बात है। तो ऐसे ही दिनकर की एक किताब आ रही है बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है इस जुलाई में ही आ जाएगी, दिनकर विमर्श, जो एक शोध पत्रों का संकलन है और दिनकर की 117वीं जयंती पर जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस किताब पे मैं काम कर रही हूँ डॉक्टर दिनेश के साथ,
0: जी
1: और इसमें मेरा शोध पत्र भी है जो दिनकर की उर्वशी पर केंद्रित है, दिनकर की उर्वशी में मनोविज्ञान।
0: जी
1: तो अगर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे होता है परकाया प्रवेश,
0: हाँ
1: परकाया प्रवेश इतना आसान नहीं है,
0: बिल्कुल
1: शंकराचार्य जी ने किया था अपना वो जो शास्त्रार्थ को जीतने के लिए, कि एक महिला एक राजा के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था ताकि वो
0: जी
1: काम
0: जी
1: अध्यात्म सीख
0: जी
1: सके।
0: जी जी जी
1: तो दिनकर की जो आप सोच देखिए, वो ओज के कवि रहे, वो स्वतंत्रता के लिए काम किया, लेकिन उर्वशी में जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने मनोवैज्ञानिक चिंतन वहां रखा है, ये
0: जी
1: मेरे पूरे शोध पत्र का आधार है कि वह एक स्त्री के मन की बात ऐसे जानते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे वो उस जीवन को जी रहे हो,
0: जी रहे हो
1: चाहे वो एक परी है,
0: जैसे
1: अप्सरा
0: स्वयं
1: है,
0: स्त्री बोल रही हो।
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: ऐसे जैसे वो ऊपर काया प्रवेश कर गए। इतनी बड़ी सिद्धि,
0: जी जी
1: जिसकी सिद्धि
0: हम
1: आज जो
0: मनोविज्ञान
1: सिद्धि मैं,
0: जानने के लिए नेचुरली उसके पीछे जाना पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: उसको समझना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तब वो शब्दों में आता है। अगर जिएंगे नहीं तो शब्द शायद मायने
1: हाँ
0: नहीं रखते,
1: बिल्कुल,
0: तो वो लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वो उससे भी
1: हाँ
0: परे जा पा रहे हैं उसमें।
1: उससे परे जा पा रहे हैं, वो एक रानी के मन की बात समझ रहे हैं, वो एक अप्सरा के मन की बात समझ रहे हैं, वो एक ऋषि पत्नी के मन की बात समझ रहे हैं, वो एक स्त्री के मन की बात समझते समझते एक पुरुष राजा पुरूरवा के मन की, जो लगातार द्वंद्व में है, जो जो पुरुष का मन होता है उसका, वो तो वो समझते ही हैं, उसके साथ वो स्त्री का मन भी समझ रहे हैं कि रात गई बात गई ना हो जाए कहीं, आज ये राजा मेरे साथ है सुबह भूल जाएगा मुझे, ऐसे अपनी पत्नी को छोड़ा है।
0: सही
1: तो
0: बात
1: वो इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया है,
0: है।
1: एक एक चीज पर कार्य किया है। तो उनका चाहे वो ओज काव्य हो, चाहे संस्कृति के चार अध्याय हो, वो आज भी उतने प्रासंगिक है और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें उनसे सीखने को मिलता
0: जी
1: है।
0: जी चलते चलते यहाँ उर्वशी की बात आ गई, तो मैं इस बातचीत को यही खत्म करना चाहूंगा। स्त्री विमर्श की बहुत बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री विमर्श क्यों होना चाहिए? स्त्री के तो आधार है, स्त्री तो स्त्री के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो आधार है, जो सर्वव्यापक है, जिसके बिना हम किसी प्रकृति की कल्पना ही नहीं कर सकते, प्रकृति के बिना आप बताइए क्या हम हो सकता है। तो स्त्री जो जननी है, जो मतलब जीवन के जितने रूप हैं उस सबका संबल तो स्त्री है। तो क्या सिर्फ विमर्श करके

0: छोड़ देना इतना ही उसके लिए काफी है, उसके लिए तो हमें सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वयं इस विमर्श की वो भी हैं, और आपके उससे जानना चाहता हूं कि क्या इसका कुछ हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा को बहुत थोड़ा देकर के संतुष्ट कर देना चाहते,
1: बिल्कुल
0: साहित्य साहित्य में विशेषकर।
1: सिंह साहब, आपने जाते जाते ऐसे विषय पे छेड़ा है जो खुद एक पूर्ण चर्चा मांगता है।
0: जी
1: जो
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: स्त्री विमर्श, जो मैं अगर इसके जड़ में जाऊं तो स्त्री विमर्श भारत के लिए है ही
0: है ही
1: नहीं,
0: नहीं।
1: क्योंकि हमारी संस्कृति में तो देवी तुल्य है माँ,
0: मैं
1: स्त्री
0: यही
1: शुरू से।
0: आपसे कहलवाना चाह रहा था कि जिस संस्कृति में लिख दिया होगा कि यत्र नारेस्तु
1: जी,
0: पूजन्ति रमन्ति तत्र
1: रमन्ते तत्र
0: देवता,
1: देवता,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वहां फिर ये अब कहीं उसको छोटा करके देखना है।
1: हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसकी जो मेरा सोच है वो बताती हूँ कि जैसे हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री का स्थान हमेशा ही पुरुष से ऊपर रहा है, और स्थान ऊपर और नीचे की बात नहीं है, दोनों की जो शारीरिक और मानसिक संरचना है दोनों की अलग है, और वो मिलके दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते
0: जी
1: हैं। तो
0: जी जी
1: इसमें किसी से कॉम्पिटिशन की बात ही नहीं है कि भाई मेरे को हक मिलना चाहिए। ये एक हम गलत अनुसरण कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति का, जहां
0: जी
1: उनके यहां स्त्री को वोट देने लायक, मतदान देने लायक करने में भी सदियां बीत गई।
0: जी जी
1: हमारे यहां तो शुरू से स्त्री की
0: हाँ
1: जो राजा उसको राजा महारानी की राय लिए बिना कार्य नहीं करते थे, और फिर इतनी विदुषी स्त्रियां हुई हैं। और आपने तो सीता के बारे में पढ़ा, आपने मैत्री, पुष्पा, गार्गी सबके बारे में पढ़ा, तो इतनी हुई है। ये तो बीच में कुछ कुछ साल जो
0: कालखंड
1: कुछ
0: ऐसा आ
1: कालखंड
0: गया।
1: ऐसा आ गया जहां स्त्री को भोग्या बना दिया गया, और उसको उस भोग्या रूप के कारण छुप के रहना पड़ा। अब वो जो छुप के रही तो उसे बाहर निकलना पड़ा, तो जो बाहर निकलना है वो स्त्री विमर्श के नाम से बाहर आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किस स्त्री को किसी से भी तुलनात्मक अपने आप को देखना चाहिए,
0: जी
1: और
0: जी
1: तुलना तो ये है कि खुद की खुद से कीजिए तुलना बारंबार, खुद की खुद से कीजिए तुलना बारंबार। तुलना उत्तम है अगर विकसित करे विचार,
0: क्या बात है।
1: स्पर्धा उत्तम है अगर विकसित करे विचार। तो स्त्री और पुरुष का दोनों का जो संरचना है बॉडी की, माइंड की, वो इस प्रकार है कि दोनों अर्धनारीश्वर का हमारे यहाँ संकल्पना
0: संकल्प
1: है।
0: जी जी
1: हाँ,
0: जी बिल्कुल
1: तो कोई किसी से ज्यादा नहीं है, और मैं इसको बात
0: पूरक
1: को,
0: है,
1: हाँ,
0: प्रकृति में
1: पूरक है।
0: पूरकता बड़े मायने
1: हाँ
0: रखती है कि हम छोटे हों या बड़े हों लेकिन
1: जी
0: किसी काम से जुड़ करके उसको पूरा
1: जी
0: कर देते
1: बिल्कुल
0: तो महत्व तो बराबर का हो जाता है। तो यही भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष के बीच का
1: बिल्कुल
0: संबंध है कि हम एक
1: बिल्कुल
0: दूसरे के पूरक हैं।
1: यही कहते हैं कि स्त्री कई रूप दिखाती है, माँ का, पत्नी का, तो उसके साथ पुरुष भी तो पिता का, पति का पिता रूप दिखाता है, तो उसी सारे रूपों में वो भी है। तो लेकिन ये तो तय है कि स्त्री के अंदर क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वो धारण करती है, वो सृजन करती है,
0: सृजन करती है
1: तो
0: तो
1: उसको किसी टेस्ट की, किसी विमर्श की जरूरत नहीं है,
0: जी
1: आवश्यकता नहीं है।
0: जी जी
1: मैंने
0: जी
1: तो कहा ही है कि जिंदगी को आजमाना जानती हूं,
0: जी
1: जिंदगी को आजमाना जानती हूं मैं, गमों में मुस्कुराना जानती हूं, और तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, मैं भी अपना घर बचाना जानती
0: क्या
1: हूं।
0: बात है, क्या बात है। तो श्रोताओं, आप थी पूनम माटिया जी, आप साहित्यकार, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू आयाम जिन पर वो लिखती हैं, सोचती हैं, और बल्कि ये सब करने के साथ साथ उस जीवन को जीती भी हैं जो आपके सामने कुछ शब्दों के मायने में थोड़े से समय में रखा। पूनम जी, आज आप आई और इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे श्रोताओं से जुड़ी, कुछ उन बिंदुओं पर अपने विचार रखे जो हमारे जीवन से सरोकार रखते हैं। जीवन तो बहुत बड़ा है, उसके आयाम भी बड़े हैं, चीजें भी बड़ी हैं, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं लोग हम। आज आपका धन्यवाद भी करते हैं और इस कार्यक्रम को भी समापन करते हुए श्रोताओं से विदा लेते हैं। आपका भी धन्यवाद,
1: बहुत
0: नमस्कार।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता हुई कि हमने कई विषयों को छुआ, और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे अगर आपने चाहा तो।
0: जी जी जी
1: जीवन माया चक्र है, जैसे चाक कुम्हार, और जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार।
0: जी चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ, अभी फिलहाल नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे काव्यात्मक संवाद, जीवन के विविध आयाम।

साहित्यकार, कवित्री एवं समाज सेवी पूनम माटिया से बातचीत थी ओपी सिंह की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी आज 2 जुलाई में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। श्रोताओं, यदि आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक के द्वारा किए जाने वाले उपचार के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार आज यानी 2 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म धुरंधर दरवेन से। आवाज़ है जुविन नौटियाल की।

इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीत से संवारा है शिव हरि ने। आवाज़ है उदित नारायण की, फिल्म का नाम है डर।

अभी आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म का नाम था बंधन। इस गीत को लिखा था भैरव अरुण ने और इस गीत को संगीत से संवारा था आनंद राज आनंद ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, ऐश किंग और क्लिंडन केरिलो की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बॉडीगार्ड।

अभी आपने सुना सवानंद किरकिरे का लिखा गीत। आवाजें थी शान और शांतनु मैत्रे की। फिल्म का नाम था थ्री इडियट्स। फिल्म संगीत का सफर जारी रहेगा, उससे पहले सुन लीजिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस बार गुरुवार आज यानी 2 जुलाई में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। श्रोताओं, यदि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक के

द्वारा किए जाने वाले उपचार के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछिए सवाल। डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार, यानी आज 2 जुलाई 2026, और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनजान का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आवाज़ थी अलका याग्निक की और फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसी। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। विजू साहा ने इस गीत की धुन बनाई है और आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, समीर की रचना है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को। फिल्म का नाम था दाग द फायर। इस गीत को लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं रश्मि।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं, आपका इलाज करने आई हूँ। क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: हम होली एस गुजराना गली से बोल रहे हैं, मथुरा से।
0: जी, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम सफा चौधरी है।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप बताइए।
0: बिल्कुल, हम भी अच्छे हैं। और क्या करती हैं आप?
1: फोन मिला रहे हैं, आज पहली बार मिला है।
0: जी जी जी जी, तो अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम जी जी फाइलों का काम करते हैं।
0: अच्छा, और कार्यक्रम सुनती हैं हेलो आकाशवाणी?
1: हाँ जी, डेली सुनते हैं।
0: अच्छा, आज आपका पहली बार फोन मिला है?
1: हाँ दीदी, आज पहली बार फोन मिला है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: दीदी हमारा सत्यम शिवम सुंदर का कोई गाना सुना दीजिएगा।
0: कोई भी गीत सुनवा दे।
1: हाँ जी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ जी को मेरा प्रणाम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: रश्मि दीदी बोल रही हैं क्या?
0: हाँ जी।
1: अरे दीदी आप आई बारा, आज हम याद ही कर रहे थे आपको दीदी
0: जी। देखिए आपने याद किया तो बस हम आ ही गए।

0: देखिए आपने याद किया तो बस हम आ ही गए। जी
1: दीदी, आप कैसी है दीदी? हमारे आकाशवाणी कैसी है दीदी?
0: मैं और आकाशवाणी परिवार दोनों आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता और आप भी आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज क्या फरमाइश रहेगी यादराम जी?
1: दीदी, ओ दीदी, आप पहचान गई भाई। दीदी भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दीदी आपने तो मेरी बोली पहचान ली। दीदी मैं तो आपको बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि दीदी ने मेरी आवाज ही पहचान ली।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: दीदी
0: जी अब मैंने पहचान ली, पर आप भी अपना परिचय स्वयं दीजिए, आप कौन से गांव से बोल रहे हैं?
1: दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ दीदी, गांव उस पार से। कि भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दीदी रश्मि दीदी ऐसी बनी रहे और
0: बिल्कुल
1: आपका प्रोग्राम ऐसी हमें सुनवाते रहे आप हमें। और
0: जी।
1: दीदी आपका एक प्रोग्राम मुझे बड़ा अच्छा लगा,
0: हाँ
1: 84 कोस वाला।
0: अच्छा, चलिए
1: दीदी
0: हमारे
1: आपकी आवाज, आपकी मधुर वाणी,
0: जी।
1: आपकी सुंदरता की भविष्य वो वाणी
0: हाँ
1: इतनी सुंदर लगती है कि ओहो कुछ कह ही नहीं जाता। दीदी से हम बात करते रहे लेकिन समय के अभाव के कारण हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है, कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, और फिर से अनुरोध रहेगा अपनी पसंद बताने के लिए।
1: देखो आजकल शादी ब्याह चल रही है, अब 2-4 दिन के हैं, 10-15 दिन के, जो 11-10-11 तारीख तक। तो दीदी एक गाना सुनवा दे, दो गाने बताऊंगा दीदी, आप
0: जी
1: आपको जो पसंद लगे उसे सुनवा देना।
0: बिल्कुल बताइए।
1: एक तो सूर फिल्म का है दीदी, बन के दुल्हनिया आज चली हूँ मैं साजन के द्वारे, सहनाई बजे ना बजे।
0: ठीक है।
1: एक घर द्वार का है, सात फेरों के साथ तो वतन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। इन दोनों गानों से दीदी
0: हाँ
1: आप एक गाने को डेलीगेट कर दे,
0: जी
1: सबको
0: बिल्कुल
1: सुनाए, सबको
0: जी।
1: सुनाए राधे राधे जय श्री कृष्ण।
0: जय श्री कृष्ण।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: रश्मि दीदी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में राजू जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कैसी हैं आप और हमारी हेलो आकाशवाणी टीम?
0: मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आनंदित हूँ, और ऐसे ही हमारी आकाशवाणी परिवार की पूरी टीम भी है। और आज क्या सुनना चाहेंगे राजू जी?
1: आज तो मौसम बड़ा ही खुशगवार है दीदी। बादल है, बूंदाबांदी हो रही है, और कहा जाए तो पहली बारिश तो नहीं लेकिन पहली फुहार जो मानसून की दस्तक के बाद की है वो यहाँ इस समय जारी है।
0: बिल्कुल, तो आज पसंद बताइए अपनी।
1: आज फिल्म का नाम तो इस समय मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन गाने के बोल जरूर याद हैं। पहली बारिश में और तू, पहला मौका में और तू, दूर से भीगी खुशबू आए।
0: हेलो आकाशवाणी,
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, परिचय दे दीजिए
2: डी आर नागवानी हूँ, चक्का बड़ा कैंप से।
0: जी। स्वागत है कार्यक्रम में, क्या पसंद रहेगी आज आपकी?
2: बस एक बात कह कहूंगे, सदा दूर रहो गम की परेशानियों से, सामना ना हो कभी आपको तन्हाइयों से। हर आसान हर ख्वाब पूरा हो आपका, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, ये दुआ दिल की गहराइयों से।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खूबसूरत सी पंक्तियों के लिए। और अभी अपनी फरमाइश बता दीजिए।
2: गाना सुनाएंगे मुझे आज, बरसात का मौसम है, गाना है पहली पहली बारिश में मैं और तू।
0: ठीक है, पहली बारिश में और तू।
2: जी हाँ, फूल और कांटे फूलों का गीत है।
0: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: जी, गांव पचावर से चंद्रपाल रावत
0: जी, गांव पचावर
1: जी।
0: से चंद्रपाल रावत।
1: हाँ, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई जी। से बात हो रही है, मुझे साल से ज्यादा हो गया, फोन लगाते लगाते एक बार मिल भी गया था, लेकिन आप नहीं थी उस समय।
0: ओ तो चलिए, आज हमारी और आपकी पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ, पहली बात हो रही है जी। बहुत मान, चलो आज मेरा इतना बढ़िया नसीब है कि आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: आप
0: क्या चंद्रपाल जी, क्या करते हैं आप?
1: जी, हम तो अपनी गांव में खेती बाड़ी मेहनत करते हैं, कोई खास काम नहीं है। 19 साल आगरा में नौकरी की थी, एक्सरे फिल्म का काम।
0: अच्छा, चलिए, अभी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है?

0: हाँ बढ़िया चल रही है,
1: चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो आज पसंद क्या रहेगी आपकी?
0: आपकी वो है भाभी जी, आपसे नमस्कार करना चाह रही है।
1: चलिए
0: नमस्कार स्वीकार करो।
1: बिल्कुल स्वीकार करते हैं भाभी जी का नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है। और अब पसंद बताइएगा।
0: पसंद ये गाना है, पिक्चर का नाम तो नहीं पता है दीदी, पर गाना है इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से उतारी है तुम्हारी आंखें।
1: तो ये भाभी जी के लिए सुनवा रहे हैं गीत?
0: अल्ली के लिए सुनवा रहा हूँ
1: अच्छा चलिए सुनिए पसंद का ये गीत।
0: जो आज 30 गाने थी।
1: अच्छा ठीक है सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का।
0: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
1: दीदी मैं आपका जाना पहचाना नियमित श्रोता, ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राना, सिहोरा मथुरा उत्तर प्रदेश से मुखातिब हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और कैसे हैं आप?
1: दीदी हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और आप लोग भी ईश्वर की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज क्या सुनना चाहेंगे महेंद्र सिंह जी?
1: सबसे पहले तो दीदी मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि कार्यक्रम के प्रसारण बहुत ही

0: जा रही है और क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिल पा रही है।
1: जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और आपका तो कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज ही कुछ अलग और है, इसके लिए फिर से धन्यवाद।
1: और आपको भी फिर से धन्यवाद। तो जी
0: जी, क्या है कि रेडियो के माध्यम से हमें नए नए दोस्त मिले हैं और एक ऐसा माध्यम है यानी आकाशवाणी एक ऐसा खुला हुआ मंच है
1: जी,
0: इसके माध्यम से हम अपने नए नए दोस्त बना बैठे हैं। आप इजाजत तो मैं कुछ दोस्तों के नाम शामिल कर लूं।
1: बिल्कुल कीजिए।
0: ये है हमारे बहुत ही जागरूक और सजग श्रोता प्रेम सिंह सिसोदिया मध्य प्रदेश से, और यहीं से है आदरणीय लोकेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया छठीकरा मथुरा से, जवाहर सिंह जी हैं ग्राम सायपुर तहसील नदवई जिला भरतपुर से, तेजचंद जी हैं फरासिया छिंदवाड़ा से
1: जी जी जी जी,
0: और यादराम जी हैं हमारे उस पार मथुरा से, और मांगेलाल चंदेल हैं जिला गुना मध्य प्रदेश
1: जी। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कार्यक्रम में। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
0: सभी दोस्तों के लिए मैं सुनना चाहूँगा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, मरहूम मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गीत है। आप इस गीत को हमारे रेडियो सेट तक जरूर प्ले करेंगी, ऐसी आपसे उम्मीद और अपेक्षा रखता हूँ।
1: जी जी जी, ठीक है, सुनिए पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी रश्मि शर्मा की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

कार्यक्रम संबंधी सूचना श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 2 जुलाई में 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक। श्रोताओं, यदि आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं AI तकनीक के द्वारा किए जाने वाले उपचार के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी से, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी आज 2 जुलाई 2026, समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के सफर में। और आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। यदि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करे, तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण की अनेक समस्याएं कम हो सकती हैं। आज वन महोत्सव सप्ताह हम मना रहे हैं। साथियों, पेड़ लगाना केवल एक कार्य नहीं, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। जिस धरती पर हरियाली मुस्कुराती है, वहीं जीवन खुशहाली के गीत गाता है, और एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। आज हम बात करेंगे हमारे इसी कार्यक्रम में हरियाली का संकल्प और खेल भावना का उत्सव विषय पर। साथियों, जुलाई का प्रथम सप्ताह पूरे देश में वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, और वहीं 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस भी मनाया जाता है। एक ओर वृक्ष हमें जीवन, शुद्ध वायु और प्रकृति का संतुलन देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेल पत्रकार हमें खेल जगत की प्रेरक कहानियों, संघर्षों और उपलब्धियों से जोड़ते हैं। तो आइए इन दोनों महत्वपूर्ण अवसरों पर हम एक सुंदर सा गीत सुनते हैं।

जीत की कहानी केवल मैदान में नहीं बनती, उसे दुनिया तक पहुंचाने वाला पत्रकार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कलम और कैमरा जब खेल से जुड़ते हैं ना, तो इतिहास के नए अध्याय लिखे जाते हैं।

साथियों, हम बात कर रहे थे वन महोत्सव सप्ताह और विश्व खेल पत्रकार दिवस के बारे में। आइए पहले वन महोत्सव सप्ताह के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी धरोहर हैं। ये वर्षा लाते हैं, जल स्रोतों की रक्षा करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और असंख्य जीव जंतुओं का घर हैं। आज जब पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और उनकी देखभाल भी करे। कारण ये है कि हम वाहवाही के कारण या बहुत ही खुशी में वृक्षों को लगा तो देते हैं, छोटे छोटे पौधों को जगह जगह हम लगा देते हैं, लेकिन उसमें हम पानी देना भूल जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केवल पेड़ लगाना ही सार्थक नहीं होता है, पेड़ों को समय समय पे जल की, धूप की, मिट्टी की और उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है। पेड़ लगाना केवल एक कार्य नहीं, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। जिस धरती पर हरियाली मुस्कुराती है ना, वहीं जीवन खुशहाली के गीत गाता है। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है।

साथियों, जीत की कहानी केवल मैदान में नहीं बनती, उसे दुनिया तक पहुंचाने वाला पत्रकार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कलम और कैमरा जब खेल से जुड़ते हैं तो इतिहास के नए अध्याय लिखे जाते हैं। जब हम खेल जगत की बात करते हैं और खेल और उसके जुड़े हुए जीवन की बात करते हैं, तो हम खेल के बारे में पाते हैं कि खेल हमें अनुशासन, टीम भावना, धैर्य और संघर्ष करना सिखाते हैं। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग बनाता है। हार कर बैठ जाना मंजिल नहीं, गिर कर फिर उठ जाना ही असली जीत है। मेहनत की हर बूंद सफलता का आधार बनती है। हर वर्ष कम से कम एक वृक्ष हमें अवश्य लगाना चाहिए। इधर हम खेल की बात कर रहे हैं और उधर वृक्ष की बात करेंगे। जिस तरह से खेल भावना, ईमानदारी और अनुशासन को जीवन में हमें अपनाना चाहिए, हम अपनाते हैं, इसी प्रकार से प्रकृति की रक्षा हमें करनी चाहिए, खिलाड़ियों का सम्मान हमें करना चाहिए।

साथियों, वन धरती की हरी चादर है जो हमें जीवनदायी ऑक्सीजन और शुद्ध हवा उपहार में देते हैं। पेड़ पौधे इंसानों के सबसे सच्चे मित्र हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करते हैं। जंगलों को बचाना केवल पेड़ों को बचाना नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बचाना है। प्रकृति की गोद में वह असीम शांति और सुकून है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। आज यदि हम वनों का संरक्षण करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ कल दे पाएंगे।

साथियों, खेल केवल हार जीत का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे का नाम है। मैदान में पसीना बहाता हर खिलाड़ी हमें सिखाता है कि टीम वर्क और एकता से बड़ी कोई चुनौती नहीं है, बल्कि उस बड़ी से बड़ी चुनौती को टीम वर्क और एकता से जीता जा सकता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस उन खेल पत्रकारों को समर्पित है जो खिलाड़ियों के संघर्ष, उनकी जीत की कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। खेल पत्रकार मैदान के रोमांच, तनाव और खुशी के पलों को शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से हमारे घरों तक जीवंत बनाते हैं। खेल पत्रकारिता ही है जो एक आम खिलाड़ी को देश का हीरो बनाती है और लाखों युवाओं को खेल के मैदान में उतरने की प्रेरणा देती है।

साथियों, जब धरती पर हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी, जब खेलों का सम्मान बढ़ेगा तभी देश का स्वाभिमान आगे बढ़ेगा। एक वृक्ष, एक जीवन, एक खिलाड़ी, एक प्रेरणा और एक सच्चा पत्रकार समाज का आईना। इसी बात के साथ, इसी चर्चा के साथ अब अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए, नमस्कार। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय

0: है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं एआई तकनीक। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स मथुरा।
1: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
2: लोगों को चेंज के लिए ना बीच में एक 5-7

0: श्रोताओ नमस्कार। आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर, बहुत सारे विषयों पर जो स्वास्थ्य संबंधी हमारे इशू होते हैं जीवन में, उन पर हम समय समय पर आपसे बात कराते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों से। आज के इस कार्यक्रम में जो विषय रखा गया है वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसमें AI का प्रयोग। बहुत सारी विज्ञान की तकनीकी विकास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो क्षेत्र कोई भी हो लेकिन विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग वहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है उसमें। तो जो सर्जरी डॉक्टर करते थे पहले सामान्य तौर पे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। सर्जरी डॉक्टर ही कर रहे हैं, हालांकि रोबोट भी आ गए हैं, लेकिन ह्यूमन उसमें दखलअंदाजी अभी भी है। लेकिन आज बात करेंगे कि AI कैसे चीज़ों को आसान बना रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो चाहे सर्जरी की बात हो। आज हमारे साथ हैं हमारे शहर के ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजयन तिवारी साहब, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। कई बार आपसे बात कराई, आप सलाहकार भी हैं सर्जरी विभाग आकाश सिम्स जो हॉस्पिटल है मथुरा में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार सर।
0: जी, तो थोड़ा सा बताइए कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये क्या है, उसमें AI का प्रयोग कैसे हो रहा है। चीज़ें तो बदल रही हैं लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इसको समझ पाए तो उसको क्या लगता है कि कई बार लगता है कि AI तो सिर्फ मोबाइल तक ही है क्या, कंप्यूटर तक ही है, लेकिन जीवन में बहुत जगह AI आ गया है इसमें। तो बताइए थोड़ा सा इसमें।
1: जी देखिए, एक जो सच है और जो कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही सच है और परिवर्तन ही नियम है,
0: सही कह रहे हैं।
1: और परिवर्तन को एक्सेप्ट और एडजस्ट करके ही इवोल्यूशन यानी कि प्रोग्रेस हो सकती
0: जी
1: है।
0: जी मतलब जीवन की आसानी परिवर्तन को स्वीकार कर लेने में है, ये आप कह रहे हैं।
1: जी,
0: जी,
1: तो इसी क्षेत्र में जब हम अगर हम पहले से चलें आगे की तरफ, तो बहुत पहले जब सुश्रु जी हुआ करते थे, सुश्रुत संहिता और ये सब चीज़ें होती थीं,
0: बिल्कुल।
1: तब बिना बेहोशी के गरम चाकू करके कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते थे।
0: जी
1: सक्सेसफुल वो भी रहे, धीरे धीरे उसमें स्टरलाइजेशन यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल को मैनेज करना शुरू किया गया। फिर एक बेहोशी की कुछ चीज़ें आई कि उसमें ऐसा भी होता था कि सिर पे चोट मार दो तो पार्शियली बेहोश हो जाए और सर्जरी कर दो।
0: जी, उस समय व्यक्ति को
1: जी,
0: दुख ना हो, कष्ट ना हो।
1: बाद में कुछ सुंघाते थे, फिर ईथर आ गया, बहुत दिनों
0: हाँ
1: तक चला कि ईथर सुंघा दो कर दो। अब ऐसे आ गए हैं कि स्पाइनल है या जनरल एनेस्थीसिया की बिल्कुल स्मूथ, यूजली कॉम्प

0: कॉम्प्लिकेशन लेस, तो ये इवोल्यूशन है।
1: जी जी
0: ऐसे ही सर्जरी में पहले गर्म चीज से करा, फिर सर्जरी से करा, फिर ब्लेड से किया, फिर लेप्रोस्कोपी आई।
1: हाँ
0: लेप्रोस्कोपी एक सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस कमरे के भीतर देखना है और
1: हाँ
0: पूरा सब कुछ देखना है, तो एक तो तरीका यह है कि भाई सारी दीवारें तोड़ दो और दिख जाए,
1: दिख जाए।
0: और दूसरा यह है कि एक विंडो बना दो और
1: हाँ
0: गर्दन भीतर डाल दो, चारों तरफ देख लो।
1: देख लो,
0: सो दिस इज लेप्रोस्कोपी।
1: मतलब जहाँ हम देखना चाह रहे हैं वहाँ उस तकनीक के हिसाब से जाएं, देख लें, कैमरा डाल दें
0: यस
1: या अपनी आँख की पहुँच पकड़ लें, तो
0: यस,
1: साधन कुछ भी हो लेकिन पर्टिकुलर एरिया को हम देख पाते हैं।
0: पर्टिकुलर एरिया। तो कैमरा आपने डाल दिया, अब कैमरे भी क्या हो गए कि वो चारों तरफ घूम जाते हैं, प्लस उसमें लाइट होती है, प्लस वो किसी पर्टिकुलर जगह

0: दो और
1: हाँ
0: गर्दन भीतर डाल दो, चारों तरफ देख लो।
1: देख
0: तो
1: लो,
0: दिस इज लेप्रोस्कोपी।
1: मतलब जहाँ हम देखना चाह रहे हैं वहाँ उस तकनीक के हिसाब से जाएं, देख लें, कैमरा डाल दें
0: यस
1: या अपनी आँख की पहुँच पकड़ लें, तो
0: यस,
1: साधन कुछ भी हो लेकिन पर्टिकुलर एरिया को हम देख पाते हैं।
0: पर्टिकुलर एरिया। तो कैमरा आपने डाल दिया, अब कैमरे भी क्या हो गए कि वो चारों तरफ घूम जाते हैं, प्लस उसमें लाइट होती है, प्लस वो किसी पर्टिकुलर जगह को 15-16 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर मान लो आपकी गर्दन चारों तरफ घूम जाए, वो 20 गुना बड़ा देख ले, उसमें लाइट भी लगी हो, तो आप भीतर जाने के बजाय अंधेरे में गर्दन डाल दो छोटे से छेद से और पूरा कमरा देख लो। दिस इज वॉट
1: जी
0: लेप्रोस्कोपी
1: मतलब
0: एग्जैक्टली।
1: इसको थोड़ा सा अगर बाहर देखें, भाई हम दूरबीन से सितारे देख रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं, ऐसे ही अंदर देखना भी
0: यस
1: आसान हो गया है
0: एग्जैक्टली
1: उसमें इसमें। तो अब तकनीकी ये भी आ गई है कि पहले बच्चा जब बाहर आता था तब पता लगती थी कि भाई इसमें ये स्वस्थ है नहीं है, अब जब भ्रूण बनना शुरू होता है तभी उसमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वहाँ से पता लग जाता
0: हाँ
1: है उसमें।
0: बिल्कुल पता लग जाता है। जो कलर अल्ट्रासाउंड्स हैं, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, बच्चों के स्पेसिफिकली देखने का, प्रेगनेंसी ओरिएंटेड, क्रोमोसोमल, सो मैनी, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो पता चलने लगी हैं। और इसी में जो यूज है अब, और वो है AI।
1: जी, अब AI पे बात करेंगे लेकिन एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं,
0: जी
1: उनसे सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, नाम बता दीजिए।
2: नासिर हुसैन बोल रहा हूँ,
1: नासिर हुसैन, कहाँ से बोल रहे हैं नासिर जी?
2: गांव भंडियारा तहसील कामा जिला डी से।
1: कामा तहसील डीग से। जी, बताइए डॉक्टर साहब, बैठे बात करिए।
0: जी बताएं।
1: फरमाइए जी।
2: सर मुझे ये करनी थी, मतलब मेरी फरमाइश ये है, मतलब जैसे 4-5 साल का है, उसके अंदर पेट में पथरी है,
0: जी
2: उसका हो जाएगा कुछ
0: बिल
2: इलाज?
1: डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
0: बिल्कुल हो जाएगा। रूटीनली बेस पर हम लोग करते हैं, रोज एक या दो पित्त की थैली के ऑपरेशन दूरबीन विधि से एवरेज तौर पर हम करते ही करते हैं।
1: तो मतलब ये कहें कि अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल
0: हाँ
1: है,
0: बहुत नॉर्मल।
1: इसमें कोई परेशानी नहीं है नासिर हुसैन जी, आप आइए मिलिए और अपना जो परेशानी है उसको दूर कराइए। और कुछ जानना चाहते हैं?
2: नहीं जी, थैंक
1: जी, तो
0: यू।
1: आपका जो है काम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है आजकल तो। अब एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते,
2: नमस्कार सर,
1: नाम
2: नमस्कार।
1: बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं सर जय सिंहपुरा से बोल रहा हूँ,
1: जय सिंहपुरा, तो आप हमारे पास से ही बोल रहे हैं, नाम बताइए।
2: सुरेश चंद अग्रवाल,
1: दिनेश चंद अग्रवाल,
2: सुरेश चंद।
1: अच्छा सुरेश चंद, ठीक है सुरेश जी, बताइए क्या परेशानी है, डॉक्टर साहब बैठे हुए बात करिए।
2: रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, उसे सही कर देंगे।
1: क्या परेशानी?
0: एक्चुअली
1: पहले परेशानी
0: हाँ,
1: बता दीजिए डॉक्टर साहब।
0: एक्चुअली कोई भी चीज़ें फोन से तो ना कन्फर्म पता चलती हैं ना ठीक हो सकती हैं। और रीढ़ की हड्डी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पहले आप दिखाएं, फिर हम अंदाज लगाएं कि हड्डी की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम है या नस की प््रॉब्लम
2: नस
0: है।
2: दबाई
0: हाँ तो MRI करवाइए पहले और फिर दिखवाइए।
2: करा ली, MRI में तो आई है। अच्छा
0: देखिए
1: तो उम्र बता दीजिए अपनी, सूरज जी
2: मेरी
1: उम्र बताइए अपनी।
2: 73।
1: 73।
2: हाँ
0: देखिए यूजली 90% तक हर चीज का इलाज कहीं ना कहीं पर संभव है, कुछ
2: हाँ
0: ऐसा होता है जो नहीं संभव है। और स्पाइन वगैरह
2: हाँ
0: आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, तो एक बार आप दिखवाइए फिर उसके बाद निर्णय लेते
1: है
0: हैं।
1: ना। तो
2: तो अब
1: हाँ,
2: चौराहे
1: सिम्स से बोल रहे
0: पे
1: हैं और अपना ये जो राधा वैली के,
2: आ गए।
1: जी,
2: तिवारी नर्सिंग होम से ही हो ना?
0: हाँ जी
1: हाँ
0: हाँ
1: जी हाँ,
0: जी हाँ
1: सही
0: जी
1: पहचान आपने, सही पहचान।
2: अब देखो मैं तो आपको पहचान गया, आप मेरे को पहचानो। आप
1: चलिए चलिए, आप आइए और चीजों को
2: आपने लड्डू
1: दिखाएं।
2: बहुत खिलाए हैं।
0: अच्छा
1: जी चलिए,
0: ठीक
1: ठीक है ठीक है, अच्छा है।
2: आपकी
1: जी, अच्छी बात है कि आप परिचय में भी हैं, लेकिन चीज़ों को लेके आइए, अगर कोई समस्या है तो उसके साथ मत जिए और आप जो है इलाज कराइए, ठीक है सर, है ना। तो एक श्रोता डॉक्टर साहब और जुड़ रहे हैं, बात कर लेते
0: जी
1: हैं। हेलो
2: हेलो।
1: जी, नमस्कार।

0: कार।
1: चार्जिंग
0: जी, बताइए
1: एफएम से, एफएम
0: जी। हाँ, एफएम बोल रहे हैं,
1: से
0: आकाशवाणी से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एफएम से, मैं
0: हाँ
1: मथुरा से बोल रहा था।
0: हाँ हाँ वो तो बोलो
1: मनपसंद प्रोग्राम चलता है? मनपसंद
0: जी।
1: प्रोग्राम चलता है क्या?
0: नहीं, ये मन पसंद नहीं। अभी हम डॉक्टर तिवारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उस पर बात कर रहे हैं, एआई प्रयोग पर। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो सर्जरी से दूर होती हैं, तो उस पर बात करें। डॉक्टर साहब, एआई की बात हम कर रहे थे इसमें, तो थोड़ा सा बताइए कि अब एआई जब से आया है, लोग इसको थोड़ा सा वैसे देख ले, जीवन में भी उपयोगी हो सकता है, सर्जरी जैसे उसमें भी उपयोगी हो सकता है, तो थोड़ा सा
2: देखिए,
0: बताइए।
2: इंटेलिजेंस चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, हमारे आपके अंदर है। वो नेचुरल जो बाई बर्थ है, कुछ हमने स्किल से डेवलप करी है, और आर्टिफिशियल मींस जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नॉलेज से आती है, सो इट इज एआई।
0: जी, मतलब बहुत सारा डाटा, बहुत सारे लोगों
2: यस
0: के अनुभव, बहुत सारे लोगों की थीसिस प्रयोग, वो एक डाटा करके जो निष्कर्ष निकलता है उसको अपन एआई कह सकते हैं।
2: उसको ही कह सकते हैं। एक्चुअली
0: जी
2: जो कंप्यूटर है या जो सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर से भी जो ऊपर हैं, जो सुपर कंप्यूटर हैं, इनकी गणना इतनी अरबों कैलकुलेशन ये 1 सेकंड के कम फ्रैक्शंस में कर सकते हैं, मतलब अपनी सोच से परे हैं। इतने बड़े
0: हाँ
2: बड़े कंप्यूटर होते हैं, इस कमरे के 10 कमरे के बराबर एक
0: एक
2: कंप्यूटर,
0: कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें कितना
2: तो
0: डाटा।
2: वो सुपर कंप्यूटर जैसे। अब आप जैसे पहले जमाने में जाइएगा कि महाभारत में रामायण में युद्ध होते थे,
0: हाँ
2: इन्होंने धनुष चलाया, वहां से चल के आया, दोनों आपस में टकरा गए और ये हो
0: हाँ
2: गया, तो ये कहीं ना कहीं एआई जो था, इंसान लेके थोड़ी उड़ता था।
0: हाँ वो उसने संधान किया, एक मंत्र वो
2: मंत्र
0: किया और
2: किया,
0: छोड़ दिया।
2: पुष्पक विमान था, बिना
0: हाँ
2: बैटरी के चलता था, बिना पेट्रोल के चलता था, एक बैठ गया दूसरी सीट निकल आती
0: हाँ
2: थी।
0: मतलब क्षमता जितनी आवश्यकता उतना बढ़ता
2: तो
0: जाता।
2: कुछ ना कुछ तो उसमें इंटेलिजेंस थी ना उस विमान में। मैं कह सकता हूं यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
0: नए जमाने में।
2: नए जमाने की।
0: जी
2: तो जो भी नॉलेज है, जो भी कोई कहीं कर रहा है, प्लस जो कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको स्किल को डिवाइस को डेवलप कर सकता है, उनको मिला के इंसानी ब्रेन के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम कह सकते हैं यूज ऑफ
0: ए
2: एआई।
0: आई है इसमें, मतलब हम अपने काम के लिए, सहूलियत बनाने के लिए उसको एक तरह से, कोई गलती ना हो
2: जी
0: मेरे से, अगर कोई गलती हो रही है और मैं एआई का उपयोग कर रहा हूँ तो वहाँ गलती होने के चांस एक तरह से कम हो गए।
2: कम हो जाए, प्रिसीजन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब
0: जी
2: माइन्यूट से माइन्यूट जगह को भी आप टच कर सकते हैं बिना साइड में डिस्टर्ब किए हुए।
0: जी जी जी अब एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो,
3: हेलो सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, नाम बता दो अपना।
3: मेरा नाम सरिता है सर।
0: सरिता है, आपको क्या समस्या हो गई?
3: मेरे मशीन में आके बाल उखड़ रहे थे। हाँ
0: बाल उखड़ रहे?
3: तो मेरी सर्जरी हुई थी, वो पहले हो गई है।
0: अच्छा, तो तुम डॉक्टर साहब से बात करो सीधे, देखो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब।
2: क्या सर्जरी हुई थी बेटा तुम्हारी?
3: प्लास्टिक सर्जरी हुई थी जांघों पे से खाल लेकर।
2: ओके, तो उस जगह पर बाल थोड़ा सा मुश्किल से आते हैं, कई बार नहीं आते तो हमें इम्प्लांट करवाने पड़ते हैं।
3: बालों की समस्या नहीं है मेरे को ये समस्या है। 2023 में 2 अप्रैल को मेरे लगी थी, अब तक वो कॉज सही नहीं हुआ है। कृपा
2: तो बेटा आके दिखाओ, अब मैं फोन से और माइक से कैसे बता दूं बिना देखे?
0: इसके लिए तो आना पड़ेगा, है ना? ठीक है
3: कहाँ पे
0: बेटा,
3: आना पड़ेगा?
0: कहाँ पे आना पड़ेगा? डॉक्टर तिवारी बात कर रहे हैं, ये पता है कहाँ बैठते हैं आपको?
3: नहीं तो
0: आप कहाँ रहती हैं?
3: मैं मथुरा जिले में रहती हूँ,
0: नहीं,
3: गांव भील में। भील
0: मथुरा जिले में कहाँ पर? डीग?
3: गांव भील।
0: चलिए ठीक है, डॉक्टर तिवारी तो कृष्णापुरम वाले चौरा तिराहे के पास बैठते हैं, आप सिम्स में आ सकते हो, है ना? तो कहीं भी आप जी,
3: ऑफिस से कितना दूर है इनका हॉस्पिटल?
2: सीएमओ ऑफिस से
0: सी
2: लगभग
0: एम
2: 1 किलोमीटर दूर
0: एक
2: है।
0: किलोमीटर दूर है, सदर में है। आप जा

0: के दिखा लो।
1: हम कभी भी आ सकते हैं
0: डॉक्टर का एक टाइम होता
2: बेटा,
0: है
2: लगभग 2 बजे से 5 के बीच में,
0: है ना, 2 से 5 बजे आ जाओ शाम को,
1: शाम शाम
2: शाम दो,
1: को 2 बजे से 5 बजे तक।
0: ठीक
2: हाँ
0: है। ठीक है बेटा, है ना डॉक्टर साहब। अब इसमें दो प्रश्न हमारे व्हाट्सएप से चल करके आए हैं। एक
2: जी,
0: प्रकाश जैन है, 55 वर्ष उम्र है, महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी की आवश्यकता किन बीमारियों में पड़ती है, या लेप्रोस्कोपी किन बीमारियों में दूरबीन से हम वो कर सकते हैं। दूसरा है कुशेश्वर प्रसाद राजनगर से, क्या किडनी में स्टोन होने पर भी उसका निदान और लेजर से हो सकता है।
2: जी
0: तो मेरा प्रश्न भी है, अगला यही था कि कहाँ कहाँ हम लेप्रोस्कोपी और उसका यूज कर
2: देखिए,
0: सकते हैं।
2: लेप्रोस्कोप एक तरह से छोटा सा स्कोप है,
0: हाँ
2: जनरली जिसकी डायमीटर 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। अब आप सोच सकते हैं, अगर 3 मिलीमीटर का कोई है तो अगरबत्ती के साइज का है वो।
0: हाँ
2: अब ऐसे स्कोप को, इसे हम दूरबीन कहते हैं हिंदी में, कहीं भी आप डाल दो,
0: जी
2: अगर हम पसलियों के बीच में डाल देते हैं तो चेस्ट को देख सकते हैं, लंग्स यानी फेफड़ों को देख सकते हैं, उसमें हमें हार्ट के बीट्स भी लगातार डायरेक्ट दिखती हुई दिख जाती
0: जी
2: हैं,
0: जी जी
2: फेफड़ों में पानी भरा है तो दिख जाता है, जो गले में थायराइड होती है इसमें उसको खाल में गैस डाल के फुला के थायराइड की सर्जरी कर सकते हैं, पेट को कर सकते हैं, बच्चेदानी की जो हम दूरबीन से देखते हैं उसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, इनफर्टिलिटी यानी जो बांझपन में यूज होता है, नले बंद तो नहीं है, ओवरी में दिक्कत तो नहीं है, उसमें बच्चेदानी को और पेट को दोनों साथ में देख लेते हैं। अगर हम इसको फिस्टुला यानी भगंदर या पायलोनिडल साइनस में डाल देते हैं तो उसे वॉफ्ट कहते हैं, यानी वीडियो असिस्टेड फिस्टुला या साइनस ट्रीटमेंट। तो कुल मिला के ये है, एंडोस्कोपिकली हम आज की डेट में स्पाइन सर्जरी भी करते हैं। तो आप जहां भी सोच सकते हैं, बालों को छोड़ के, कि बाल में तो नहीं डाल सकते
0: जी
2: इसको,
0: जी जी
2: हर जगह हम स्कोपी कर सकते हैं। फायदा यह है कि विजन यानी कि दिखना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लाइट का फोकस होता है, 10, 12 से 15, 16 गुना तक बड़ी चीजें दिखती हैं बिना डिस्टरबेंस के, मतलब इमेज क्लियर रहती है।
0: जी
2: तो हमारा प्रिकॉशन या एक जो प्रिसीजन है वो बहुत परफेक्ट रहता है,
0: जी जी
2: और
0: जी
2: इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, आजकल रोबोटिक भी आ गई है, कि जब आप फिक करके क्लिक करोगे तभी वो काम करेगा।
0: जी। तो
2: तो
0: अब इतना मतलब संक्षेप में आपने इतना विस्तार से बता दिया कि शरीर में कोई भी बीमारी है,
2: जी
0: कोई भी समस्या है, आप अगर उसमें सर्जरी का उपयोग हो रहा है तो उससे पहले एक अच्छी तरह उसको जांच लेते हैं, देख लेते हैं कि समस्या कहाँ है, कैसे उसका निदान किया जा सकता है और कहाँ हमें सर्जरी करनी है। तो इससे एक तरह से चीज़ें खराबी की तरफ नहीं जाती, असफलता की तरफ नहीं जाती, सफलता के चांस बहुत बढ़ गए
2: बहुत
0: हैं।
2: बढ़ जाते
0: जी
2: हैं।
0: जी
2: एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको किस्सा, कि एक गन शॉट का पेशेंट आया, यानी कि गोली मार दी गई, गोली रीढ़ की हड्डी के पास लगी, वो घूमते घूमते पसली के सहारे फेफड़े के पास पहुंच गई।
0: बताइए।
2: अब एक मशीन होती सीआरएम, हमने उसमें देखा, हम लोग ये बुलेट इंजरी करते रहते
0: जी
2: हैं, तो
0: जी जी
2: ये लेप्रोस्कोपी यानी थोरेकोस्कोपी, छाती की जांच दूरबीन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई भी बुलेट या मेटल होता है तो उस मशीन यानी एक्सरे मशीन होती है सीआरएम, उसमें दिख जाती है। तो हमने मरीज को लिटाया, उसमें देखा, मार्क किया कि यहाँ बुलेट है, उस जगह सोचा इंसिजन लगाएंगे, उसको पलटा के देखा कि डबल डायमेंशन से कन्फर्म हो जाएगा यहीं पे गोली है। जैसे ही पलटाया तो वो गोली कहीं और चली गई, हमें समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या है। फिर उसको वापस किया, फिर गोली वहीं आ गई। एक जगह हमने वहां पर इंसिजन यानी चीरा भी लगाया, हमें नहीं मिली। बहुत देर बाद समझ में आई कि गोली फंसी नहीं है, गोली फेफड़े के ऊपर फ्रीली पड़ी हुई है,
0: हाँ वो घूम जा रही
2: तो वो घूम
0: है।
2: जा रही है। तब फिर हमने इसमें स्कोप डाला, यही दूरबीन, फेफड़ों को देखा, हमें गोली दिखी, उसको पकड़ के निकाला।
0: निकाल
2: तो
0: लिया।
2: दीज आर द बेनिफिट, वरना पूरी पसली खोलनी पड़ती, छाती आधी खोलनी पड़ती,
0: मतलब
2: छोटे से
0: चीज
2: छेद से काम हो गया।
0: आसानी से काम हो
2: जी
0: गया। तो वो इसीलिए कि वहाँ एआई कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं उसमें। अब आपने एक बात छेड़ी थी कि जो भगंदर है,
2: जी
0: पाइल्स है, फिस्टुला है, ये कहने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये सब होता है

0: है तो एक तो पहले तो वो भारतीय समाज में रहता है तो शर्म उसको घेर लेती है और बरसों वर्ष उस समस्या के साथ जीता रहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता जहां उसे जाना चाहिए। तो आप चूंकि इससे रोजाना दो चार होते हैं कि व्यक्तियों से क्या कहना चाहेंगे सामान्य जन से कि बहुत आसान हो गया इसका इलाज अब।
1: मैं बताऊं आपको ये कहानी शुरू कैसी हुई और अब क्या हो रहा है कि बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे कहा कि हम तो अपना बवासीर का सर्जरी करा के आ गए हैं। मैं शायद 9th या 10th में था, मध्य प्रदेश की किसी जगह की बात है
0: जी
1: ये।
0: जी
1: तो मैंने पूछा कहाँ पे कराया, तो बोले साहब फला फला गांव में जाके कराया। वो गांव का नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने पूछा ऐसे ही, और लोगों ने पूछा कि तुमने वहां का पता कैसे पता किया कि वहां गांव में वो फलाना हकीम या वैद्य जो भी वो करता है। बोले साहब मैं ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके टॉयलेट में नंबर लिखा हुआ था। और अगर आप कभी सफर किए हो तो
0: हाँ
1: आपने भी देखा होगा
0: बिल्कुल
1: कि
0: देखा है।
1: टॉयलेट्स में नंबर लिखे रहते थे।
0: जी
1: तो मुझे तब से एक तो ये लगा कि कितनी कॉमन चीज है और आदमी कितने संकोच में जाके देखता है, वहां से नंबर ले सकता है।
0: हाँ
1: अगर मैं कोशिश करूं तो ये तो बता ही सकता हूं ना कि अब क्या क्या ऑप्शन है
0: बिल्कुल।
1: और कहाँ कहाँ। अगर ट्रेन में मालूम पड़ा महाराष्ट्र से आदमी आ रहा है और आगरा में पढ़ रहा है और दिल्ली जा रहा है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम तो मथुरा ही में करो या
0: जी
1: करवाओ,
0: जी जी
1: आप समझ लो। तो
0: हाँ
1: अब आज की डेट में क्या है कि जैसे AI हो गया, लेप्रोस्कोपी हो गया, ऐसे फिस्टुला यानी भगंदर, फिसर, मोटी भाषा में सब लोग इसको बवासीर कहते हैं, पर हर चीज बवासीर नहीं होती। हर चीज में धागा यानी छार सूत्र नहीं बांधा जाता,
0: जी
1: हर
0: जी
1: चीज में चीरा नहीं लगाया जाता। मुझसे किसी ने मना थोड़ी किया है कि ना आप धागा मत बांधो, कि ना आप चीरा मत लगाओ, कि आप फला मत करो, हमारे पास तो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो हर चीज का एक स्टेज होती है, जैसे पाइल्स है इसमें कि बिना पेन के ब्लड जाता है लेटरिन के साथ में,
0: जी
1: तो उसमें इंजेक्शन लगता है शुरू के स्टेज में, वहीं पे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ना ज्यादा खर्च ना दर्द, छल्ले लग जाते हैं, फिर सर्जरी होती है। आज की डेट में लेजर होती है। लेजर का फायदा क्या है कि बिना बड़े चीरे के उसको सिकोड़ भी देता है, जिससे ब्लीडिंग भी कम है, दर्द भी कम है, इन्फेक्शन भी कम है, रिकवरी भी जल्दी है, खर्चे भी कम है, ओवरऑल ठीक ही ठीक है,
0: और समाधान अच्छा
1: समाधान
0: है,
1: भी अच्छा है।
0: आसानी से आप जो है आराम से करा
1: ऐसे ही
0: सकते हैं।
1: फिस्टुला है ये। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगली बार तो मेरी बात एक ना एक तो सुन ही लेगा। ऐसे ही फिस्टुला है, उसमें हम लोग वीडियो असिस्टेड यानी बहुत पतली दूरबीन, फिस्टुला मतलब एक तरह से सुरंग। अब या तो आप उस सुरंग को पूरी खोल दो, मान लो एक नाले का
0: मतलब
1: पाइप
0: दिखती
1: है,
0: नहीं लेकिन उसमें जगह है।
1: यस
0: जी
1: सपोज करिए एक दो जगह नाले बह रहे हैं, बीच में पाइप है, वो
0: हाँ
1: पाइप फिस्टुला है जो दोनों जगह से जुड़ रहा है। अब या तो आप पूरा पाइप उखाड़ के साफ करो, या ये है कि एक आदमी को भेज दो टॉर्च लेके और साफ करके आ जाए। ये ही इसमें है कि आपने दूरबीन डाली, उसमें देखा जो कुछ है उसको निकाल दिया, लेजर से उसको कोगुलेट यानी सिकोड़ दिया,
0: हाँ
1: कॉन्टेक्ट कर दिया,
0: हाँ
1: ठीक होने के लिए
0: जी
1: छोड़
0: जी
1: दिया।
0: मतलब जो जो मेन रास्ता है वहां से चीज ना आकर के उस पाइप से जो आ रही थी रुक जा रही थी, व्यक्ति को परेशानी दे रही थी, अगर उसको हम साफ करके बंद कर देते हैं तो
1: जी
0: मेन रास्ता फिर से आपका काम करने लगता है और
1: छोटी छोटी चीजें होती हैं, फिसर में है, रोज आदमी जाता है, रोज दर्द होता है, रोज सोचता है आज मैं शादी नहीं जाऊंगा, आज खाऊंगा नहीं। भाई क्यों नहीं जाओगे, कब तक नहीं जाओगे,
0: जी जी
1: एक
0: जी
1: छोटी सर्जरी, सक्सेसफुल सर्जरी कराइए, खत्म करिए। ऐसी पैरों की नसों का है, मैं देखता हूं इतने लोग आते हैं कि अब वो ट्रीटेबल नहीं होते।
0: हाँ
1: मेरा मकसद सिर्फ यही है, मुझे कुछ ऐसा नहीं है
0: हाँ
1: कि भाई पहले बढ़ गई, फिर जख्म बन गए, फिर पैरों का रंग चेंज होने लगा, फिर अल्सर बन गया, फिर पैर मोटा हो गया, फिर हमने मना कर दिया कि अब आपको इसी के साथ जीना है, उस स्टेज पर क्यों पहुंचना जब ट्रीटमेंट है।
0: है सही बात
1: तो
0: है।
1: ये कुछ चीजें हैं कन्वे
0: मतलब
1: का
0: हम एक समस्या की वजह से जीवन के आनंद से दूर है, वो
1: और वो भी
0: परेशानियां
1: जो
0: भगत।
1: परफेक्टली, मतलब सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है, मैं आपसे कहूंगा एक आध चीजों को छोड़ के जिसमें ऑल एंड नन लॉ फिनोमेना लागू होता है, ठीक हुआ तो जिंदगी भर के लिए हुआ, फिर दोबारा वो चीज नहीं होगी।
0: तो इतनी तकनीकी विकास हो गया है उसमें। एक निशा भार्गव जी हैं वृंदावन से, आप लिख रही हैं, डॉक्टर साहब क्या भविष्य में AI लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को और अधिक सुरक्षित, सटीक और सफल बनाएगी?

0: साथ ही क्या एआई कवि सृजन की जगह ले सकती है, या यह केवल एक सहायक तकनीक ही रहेगी? और एआई के बढ़ते उपयोग के बावजूद एक सृजन का अनुभव और निर्णय कितना महत्वपूर्ण हो रहा था? इसमें इन्होंने काफी सारी
1: जी,
0: चीजें पूछ ली
1: मैं
0: हैं, शायद आप अच्छे से
1: फीलिंग
0: बस।
1: समझ गया आपकी।
0: हाँ
1: मैं आपके सवाल का जवाब एक छोटे से सवाल से दूंगा कि क्या संभव है कि ये दुनिया बिना इंसानों के हो जाए? घरों में इंसान न रह के सिर्फ कंप्यूटर रहें,
0: रोबोट
1: लोग
0: रहे।
1: आपस में न बात करें, मशीनों से ही काम कर लें,
0: जी।
1: खाना की जगह बिजली का करंट लगा लें, तो मेरे ख्याल से इंसान को चीजें सपोर्ट कर सकती हैं,
0: जी।
1: इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। जिस चीज को सुप्रीम पावर ने बनाया है, जिसको यूनिवर्स कुदरत ने बनाया है, उसको इंसान कैसे रिप्लेस कर सकते हैं?
0: जी। और यही शायद जीवन की भी खूबसूरती है,
1: यही
0: व्यक्ति
1: है
0: होने की भी खूबसूरती है,
1: जी।
0: कि हम चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको और बढ़ा रहे हैं। और शायद जिस एआई की और सुपर कंप्यूटर की आप बात कर रहे थे, वो भी इंसानों ने बनाया।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो
1: कभी ऐसा कोई नहीं बन पाएगा कि छोटा गेहूं जैसा दाना बना दिया कि एक साल में कंप्यूटर बड़ा बन गया, बच्चा बन जाता है, बीज से पेड़ बन जाता है। तो ये
0: प्रकृति अपनी जगह
1: प्रकृति
0: है,
1: को पार नहीं कर
0: प्रकृति को
1: सकते।
0: जीना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसके साथ जुड़ाव भी जरूरी है। अभी हो ये रहा है कि शायद तकनीकी विकास से और इन इंस्ट्रूमेंटों से, विशेषकर एंड्रॉयड मोबाइल के आने से, एक एकाकी सा जीवन व्यक्ति जी रहे, लेकिन एक समय फिर आएगा, लोग सोच भी रहे और समझ भी रहे, और शायद मोबाइल से दूरी समझदार लोगों ने बना भी ली है।
1: आप देखिए, आपने ये टॉपिक क्यों छेड़ा? आप भी समझ रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: मैं भी
0: जी।
1: समझ रहा हूं। हो गई है
0: हाँ
1: शुरुआत,
0: जी,
1: समझेंगे
0: हमारे श्रोता भी समझ रहे हैं इस
1: जी,
0: बात
1: बिल्कुल
0: को।
1: समझेंगे।
0: जी। तो आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि हम एक जो, अब मैं थोड़ा सा समापन की तरफ आ रहा हूँ, और
1: जी
0: ये जानना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति समस्याओं के साथ क्यों जीने की आदत डाल लेता है? वो क्या सिर्फ संकोच है? क्योंकि पैसे का अभाव तो नहीं हो सकता, लेकिन एक आदत सी बन गई है, इस आदत को
1: आदत
0: कैसे
1: सी
0: तोड़े?
1: बन गई। एक्चुअली
0: जी।
1: होता क्या है, कुछ नेचर होता है इंसान का। पहला तो संकोच कुछ खास बीमारियों के लिए, दूसरा एक पैसे का, क्योंकि वो सब काम करता है उसके लिए इकट्ठा नहीं करता या खर्च नहीं करना चाहता, या खास तौर से अपने लिए। अगर बच्चे के लिए होगा तो कर देगा, अपने लिए नहीं करना चाहता। तीसरा अवेयरनेस, उसे डाउट रहता है कि आगे क्या होगा, तो उसे थोड़ा अगर वास्तव में क्लेरिफिकेशन जनरलाइज वे में पब्लिक को मिल जाए तो वो आदमी काम करवा लेता है। चौथा एक मेंटेलिटी होती है। आप सपोज करिए, आपने दुकान खोली, आप सोचेंगे इसमें से कमाई 10,000 रुपये महीने आनी चाहिए। आप घर बनाते हैं 1 करोड़ का, आप नहीं सोचते इसमें से इनकम आनी चाहिए, शांति से रह लेते हैं, और ऊपर
0: सही।
1: के 2 कमरे खाली रहते हैं जिंदगी भर,
0: हाँ, वो कभी कोई
1: कभी
0: आएगा
1: कोई
0: उसके लिए,
1: आएगा तो
0: लेकिन
1: वो।
0: आप आरामदायक उसमें।
1: तो ये मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, और हो रही है ग्रेजुअली। अब लोग थोड़ा सा अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने लगे हैं।
0: चलते चलते डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा अलग हटके आया है, लेकिन आप इसका जवाब मुझे लगता है दे पाएंगे। बसंत कुमार सिन्हा जी हैं, उम्र 67 वर्ष है। आप लिखते हैं कि पेशाब में थोड़े झाग आते हैं, दुर्गंध आती है, और 80% ही पेशाब हो पाता है, मतलब रुकावट है, तो
1: जी
0: शायद
1: देखिए, जो
0: किडनी।
1: आपकी उम्र है उसके हिसाब से पहली प्रोबेबिलिटी है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्रोस्टेट एक गठान होती है जो इस माध्यम में होती है, तो उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। दूसरा, जो झाग और बदबू है, ये जनरली तब आते हैं जब किडनी में इन्फेक्शन होता है और वो प्रोटीन या एल्बुमिन उसके साथ में निकलता है। यूजली डायबिटिक पेशेंट में ऐसा होता है, या अगर कोई डायबिटीज की आप दवा ले रहे हैं तो भी ऐसा होता है। उसके लिए एक यूरिन की जांच करवा लीजिएगा, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक कल्चर करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा, बेसिक के बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर देखते हैं क्या करना है।
0: हाँ, मतलब तो जो थोड़ी सी जांचें हैं, आप जाके
1: जी,
0: दिखा लीजिए। प्रोस्टेट हो सकती है, क्योंकि उम्र
1: प्रोस्टेट हो
0: ऐसा कह
1: सकती है,
0: रही
1: और
0: है।
1: जो झाग और ये बता रहे हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपने खुद नोट किया है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ये जनरली जब प्रोटीन जाता है यूरिन के साथ में या एल्बुमिन जाता है तब ऐसा होता है।
0: जी।
1: तो देखो ना,
0: चलते चलते कुछ और, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं और श्रोता हमसे जुड़े भी रहेंगे, लेकिन समय की सीमा हो रही है,
1: जी
0: जो कुछ हमारे श्रोताओं से कहना चाहें
1: बस
0: आप।
1: मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं आता इसलिए बार बार हूं कि आप समझें,
0: जी
1: सरकार बाजू में बैठे हैं इसलिए साथ देते हैं, इसलिए टाइम देते हैं कि आप लोगों की अवेयरनेस से हमें सुकून मिलता है। इसलिए नहीं कि हम इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, हाँ इसलिए कि जुड़े हैं।

0: तो हम बता सकते हैं।
1: जी
0: तो उन चीज़ों को समझिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो मैं क्यों आता हूँ, क्या मेरी सोच है, क्या मेरी शिद्दत, एक छोटी सी कहानी से ये भी सुनाऊंगा। तब
1: जी
0: तक के लिए आप स्वस्थ रहिए,
1: मस्त
0: मस्त रहिए,
1: रहिए
0: क्योंकि पहला सुख निरोगी
1: जी
0: काया।
1: जी जी तो
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, मेरा जो काम समापन का था वो डॉक्टर साहब ने खुद ही कर दिया है। हर प्रोग्राम के बाद हम यही कहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो इलाज देना नहीं है, इलाज करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको अवेयर करना है कि भैया जीवन में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, सुविधाएं हो गई हैं, पैसा भी है, और सरकार खुद चाह रही है कि भाई 1947 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। तो वहाँ ये चीज़ें भी हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, एक अच्छे जीवन की कितना वो है, इनके सबके मूल्यांकन होंगे, गणनांक होंगे, तो वहाँ ये चीज़ें काउंट करेंगे। तो विकसित भारत बनने में जब 100 साल आज़ादी के हों तो ये हम अपने लाभ के लिए इन चीज़ों को
0: यस
1: आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे कार्यक्रम का इसका उद्देश्य जागरूकता करना है। अगली बार फिर आप आएंगे एक नए विषय और डॉक्टर के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं डॉक्टर साहब। आपका भी धन्यवाद कि आप
0: थैंक
1: आए
0: यू,
1: और
0: आपका
1: जुड़े हमारे
0: धन्यवाद।
1: साथ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं एआई तकनीक। विशेषज्ञ थे डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ जनरल सर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा।
3: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं गौरव

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत के अंतर्गत कलाकार गौरव के स्वर में गाए हुए कुछ ब्रज लोक गीत।

0: स्मूद स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत के अंतर्गत कलाकार गौरव के स्वर में गाए हुए कुछ ब्रज लोक गीतों का।

0: कार्यक्रम ब्रजलोक गीत अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे गौरव। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार हिंदी में होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री

0: काइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। एक छोटे से अंतराल के बाद।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर आप सुन सकेंगे समवेत स्वरों में देश गान। अपराह्न 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोग, जिसमें होगी चर्चा, विषय होगा महिलाएं और पर्यावरण संरक्षण। हर घर एक पेड़, मानसून में स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे खान पान वार्ता के अंतर्गत बनारसी हलवा और आम की खिचड़ी, जानकारी देंगी पूजा चतुर्वेदी। अपराह्न 1:45 पर श्रोता साथी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे।

टी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 4 बजे। संध्या 5:30 पर युवा भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात के अंतर्गत शिमला समझौता वर्षगांठ विषय पर और साथ ही विश्व खेल पत्रकार दिवस विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मथुरा जनपद में खेलों की स्थिति। जानकारी देंगे राकेश कुमार यादव, जिला खेल अधिकारी से सुरभि शर्मा की बातचीत के अंतर्गत।

किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी संध्या 6:15 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम में होगी चर्चा खेती के साथ पेड़ लगाना आय बढ़ने का अवसर विषय पर और हरी खाद की उपयोगिता विषय पर। साथ ही श्रोता साथी सुनेंगे भेंट वार्ता गांव का पानी गांव में खेत का पानी खेत में। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक तेवतिया और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। संध्या 6:45 पर फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे।

संध्या 7:05 पर व्रत साहित्यिक कार्यक्रम देश हमारो के अंतर्गत आप जानकारी प्राप्त करेंगे गुलाबी शहर जयपुर के बारे में। संध्या 7:31 पर शाम सुहानी संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का ले सकेंगे आप आनंद। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुन सकेंगे। रात्रि 10:00 प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

संध्या 6:45 पर आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य केनिंगटन ओवल लंदन से दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये मैच आप हमारे ट्रांसमीटर पर सुन सकेंगे, साथ ही अन्य सभी कार्यक्रम आप हमारे प्रसारण ऐप पर सुन सकेंगे।

0: अभी श्रोता साथी जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति शर्मा।

बहनों, कभी किसी को उसके बीते हुए पल से मत परखिए। लोग गिरते हैं, संभलते हैं, फिर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी हमेशा आगे बढ़ें, अपनी उम्मीदों के साथ, अपने प्रयासों के साथ सफलता को प्राप्त करें। इसी खूबसूरत पंक्ति के साथ स्वागत करती हूँ आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, बात करते हैं आज हम, हमारे चारों तरफ जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है और उसमें महिलाएं अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। महिलाएं घर परिवार और समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। महिलाओं के बिना जीवन असंभव सा प्रतीत होता है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी प्रकार महिलाओं का और पर्यावरण का आपस में गहरा और अटूट संबंध है। महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य उपभोक्ता होती हैं और प्रबंधक भी होती हैं। वे न केवल प्रकृति का पोषण करती हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के हर बड़े कदम में हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती हैं। दैनिक जीवन में पर्यावरण के साथ महिलाओं का गहरा जुड़ाव होता है। ग्रामीण महिलाएं घर के लिए लकड़ी, चारा, पानी इकट्ठा करती हैं, उसकी व्यवस्था करती हैं। इसलिए पर्यावरण में हो रहे बदलावों को सबसे पहले महसूस करती हैं। घरेलू कामकाज करते समय पानी की बचत करना, कचरे का सही इस्तेमाल करना यानी खाद को बनाना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना जैसी अच्छी आदतें अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं हर घर एक पेड़। ये एक सरल लेकिन प्रभावशाली पर्यावरण संदेश है। इसका अर्थ है कि हर परिवार कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। हर घर में कम से कम एक पेड़ लगाना समय की आवश्यकता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ प्रदूषण को कम करते हैं और बरसात होने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी का तापमान संतुलित रखने में योगदान देते हैं। यदि हर परिवार एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा देश हरा भरा, स्वच्छ और अधिक हमारा पर्यावरण बहुत ही स्वस्थ हो सकता है। इसीलिए हर घर एक पेड़ का संकल्प लेकर हमें पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। मैंने इस समय हम सभी ऐसी भयंकर गर्मी से आहत हैं, सभी परेशान हैं और ऐसे में हम गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे इलाकों में, पहाड़ों में, हरे भरे स्वच्छ वातावरण में घूमने जाते हैं ताकि हमें गर्मी से राहत मिल सके, क्योंकि गर्मी से राहत हमें पर्यावरण से ही मिलती है। तो इसीलिए हमें हर घर एक पेड़ का संकल्प अपनाना चाहिए। तो बहनों, ये तो हुई पर्यावरण के संरक्षण की और पेड़ पौधों को सींचने की, उन्हें उनकी देखभाल करने की, ये सभी बातें रहीं। और अब पर्यावरण के साथ साथ हम अपने लिए भी सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए।

बहनों, घर के बने हुए भोजन का महत्व बहुत अधिक है। ये केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार के साथ जुड़ाव का भी आधार है। घर का बना भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ताज़ा, स्वच्छ और पौष्टिक होता है, क्योंकि इसे साफ़ सुथरी सामग्री और अपनी पसंद के अनुसार तैयार किया जाता है। घर के भोजन में तेल, मसाले, नमक और चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होता है। तो घर का भोजन नियमित रूप से खाने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और कई जीवन शैली संबंधी बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है। इसके अलावा बाहर के भोजन में घर का खाना अधिक किफ़ायती भी होता है। घर का भोजन नियमित रूप से

0: लेना चाहिए और बाहर के भोजन को अवॉइड करना चाहिए। तो बहनों, घर के खाने के बाद अगर कुछ मीठा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो बहनों, आप घर पर भी मीठा बना सकते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग पकवान, अलग अलग व्यंजन। तो इसीलिए हम आपको सुनवाते हैं आज एक वार्ता खान पान के अंतर्गत, बनारसी हलवा और आम की खिचड़ी। जानकारी दे रही हैं पूजा चतुर्वेदी।
1: बहनों, यूं तो मीठा खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर लंच और डिनर के बाद यदि कुछ मीठा हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। यूं तो बहनों, मिठाई में आपको बहुत तरह की वैरायटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग तरह का हलवा बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन बनारसी हलवा बनाने की रेसिपी के बारे में बताते हैं। वैसे तो हम सभी अपने घरों में हलवा बनाते ही हैं। आज का जो हलवा है वो कुछ अलग हटकर है। तो चलिए बताते हैं इसकी रेसिपी के बारे में। आप सभी ने बनारसी पान के बारे में तो सुना ही होगा। इस फेमस पान का जिक्र बॉलीवुड की फिल्मों में कई बार देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि बनारस गए और यहाँ पान ट्राई नहीं किया तो क्या किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि बनारस का पान बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन क्या आपने कभी बनारसी स्टाइल हलवा ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो आपको लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए। आप इसे अपने घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। बनारस का हलवा स्वाद में बहुत ही टेस्टी होता है। आज ही आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। आइए देखते हैं बनारस स्टाइल हलवा बनाने की विधि। तो सबसे पहले बहनों, हम इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में बताते हैं। इसे बनाने के लिए आप कद्दू लेंगी 1 किलो, दूध लेंगी 500 ग्राम, चीनी लेंगी 1 किलो, खोआ 400 ग्राम, बादाम 50 ग्राम और काजू 50 ग्राम, इलायची पाउडर 1 चम्मच। तो बहनों, अब हम आपको बताते हैं बनारसी हलवे को बनाने का तरीका। तो बनारसी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को काटकर उसका नरम गूदा निकाल लेंगे। इसके बाद कद्दू के ऊपर से छिलका उतारकर अलग रखें और कद्दू के टुकड़े काटकर मिक्सर में पीस लें। यह एक तरीके का पेस्ट बन जाएगा और यह गाढ़ा थोड़ा दिखने लगेगा। इसके बाद गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने दें और दूध को मीडियम आंच पर गर्म करें। ध्यान रहे आपको बीच बीच में इसको चलाना भी है, नहीं तो ये जल जाएगा। चम्मच से इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहें। दूध में उबाल आने लगे तो कद्दू का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिला लें। थोड़ी देर इसे पकने दें। इसमें गाढ़ापन आने के बाद गैस को बंद कर दें। इसके बाद गैस पर एक दूसरी कढ़ाई रखें और उसमें घी गरम करें। इसके बाद काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स को तल लें। तल कर बाहर निकाल लें कढ़ाई से। उसके बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर घी में खोआ को भून लें। एक कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा सा खोआ भूनें और फिर स्वाद अनुसार चीनी मिलाकर 1-2 मिनट तक मध्यम आंच पर इसे पका लें। अगले स्टेप में दूध और कद्दू का मिश्रण मिला लें। ऊपर से तले हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ इलायची पाउडर मिलाएं। इस तरह आपका बनारसी हलवा तैयार हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ और बताते हैं आपको इसके बारे में। तो बहनों, आज की हमारी दूसरी रेसिपी कुछ इस तरह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियां तो आ ही चुकी हैं और गर्मियों में कुछ खाने का मन करता है। तो घर पर बनाएं समर स्पेशल क्रिस्पी आम की कचौड़ी। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। गर्मियों का मौसम आ गया है, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फल आम ही होता है। बच्चे हों या बड़े हों, ज्यादातर सभी को यह फल बहुत ही पसंद होता है। बाजारों में आप जहाँ देखो वहाँ आम देखने को मिलते हैं। आम खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतने ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। गुणों से भरपूर आम को अक्सर लोग सलाद, शेक या

0: हेंडाई के रूप में खाना पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम आपको आम के एक यूनिक रूप से मिलवाएंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। इस रेसिपी में हम आपको मैंगो क्रिस्पी कचौड़ी की बहुत ही आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आपने शायद ही पहले कभी खाया होगा या देखा होगा। आइए तो हम आपको बताते हैं मैंगो खस्ता कचौड़ी के बारे में। मैंगो खस्ता कचौड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी सामग्री कुछ इस प्रकार हैं: मैदा 1 किलो, तेल 500 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, मूंग दाल 2 घंटे भिगोई हुई हो, हरा धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्च 2 या 3, धनिया पाउडर आधा चम्मच, सौंफ पिसी हुई आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हींग 1 चुटकी, अदरक पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, आम की चटनी, सजाने के लिए सेब। इसको बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। मैंगो खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में मैदा, नमक, तेल और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। इसके बाद आटे को ढक्कन से ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद भीगी हुई मूंग की दाल को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें और फिर दाल को एक कढ़ाई में डालकर अन्य सभी मसालों के साथ फ्राई कर लें। इसके बाद रखे हुए आटे की लोइयां बनाकर पूरी जैसा गोल बेल लें। अगले स्टेप में इन पूरियों के अंदर मूंग दाल की स्टफिंग भरकर उसे चारों साइड से बंद कर दें, थोड़ा थोड़ा बेलें और एक प्लेट में अलग रख दें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें और फिर इसमें कचौड़ी डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें। आपकी मैंगो खस्ता कचौड़ी तैयार है। अब इसे सेब से गार्निश कर आम की चटनी के साथ खाने के लिए सर्व करें और अपने परिवार के साथ बैठकर इन स्वादिष्ट कचौड़ियों का स्वाद लें। तो ये है आज की हमारी दोनों रेसिपी। आशा करती हूँ आपको ये दोनों मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी और इसी स्वाद के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे। तो जब तक आप इन दोनों रेसिपी को बनाएं और घर पर अपने परिवार के साथ बैठकर इसका आनंद लें।
1: बहनों, अभी हमें पूजा चतुर्वेदी ने बताया कि घर पर किस प्रकार हम बनारसी हलवा और आम की खिचड़ी का स्वाद ले सकते हैं। बहनों, घर पर बैठकर साथ में भोजन करने से परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम, संवाद और अपनापन बढ़ता है। बच्चों में भी स्वस्थ खान पान की आदतें विकसित होती हैं और संतुलित भोजन का महत्व भी समझते हैं। इस प्रकार घर का बना भोजन स्वास्थ्य, बचत और पारिवारिक संबंधों तीनों के लिए लाभदायक है। इसलिए हमें यथासंभव घर का बना ताजा और संतुलित भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बहनों, ये तो हुई खान पान की बातें और वनिता लोक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं एक गीत।

बहनों, मौसम का बदलाव होना तो निश्चित है, क्योंकि ऐसी गर्मी के बाद मानसून से हमें राहत मिलती है और अभी इस समय इतनी गर्मी है। तो वैसे मानसून सभी को बहुत सुहावना लगता है, पर हर मौसम अपने साथ कुछ नफा और नुकसान लाता है। तो मानसून के मौसम का आनंद लेने के साथ साथ आपको अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको हमेशा साफ, उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। घर का बना हुआ ताज़ा और गर्म खाना खाना चाहिए। बाहर के कटे हुए फल, चाट और स्ट्रीट फूड से बचें। अपनी डाइट में विटामिन सी शामिल करें, जिससे कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरे शरीर को ढकने वाले फुल कपड़े पहनें, क्योंकि मानसून के मौसम में मच्छर तो बहुत हो जाते हैं। पूरे शरीर की साफ सफाई और त्वचा की सुरक्षा करें। घर आकर साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ करें, उसके बाद ही कुछ खाने पीने की वस्तु को ले करके ग्रहण करें। बहनों, गीले कपड़े या गीले जूते चप्पल पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस प्रकार आप मानसून के मौसम में अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा करके मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और पेट की होने वाली अन्य बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए आपको इन छोटी छोटी आसान सी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप मानसून के मौसम में भी स्वस्थ रह सकें। बहनों, मानसून चिलचिलाती गर्मी से बेहद जरूरी राहत लेकर आता है, जिससे सब कुछ हरा भरा और जीवंत हो जाता है। हालांकि ठंडी बारिश के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी आती हैं, जैसे संक्रमण, मच्छर जनित बीमारियां, भोजन और पानी का दूषित होना, त्वचा संबंधी समस्याएं। तो मानसून के दौरान अच्छी स्वच्छता बनाए रखना सिर्फ साफ सफाई बनाए रखने के बारे में नहीं, ये मौसम की बीमारियों से बचाव और पूरे बरसात के महीने में स्वस्थ रहने की कुंजी भी है। तो बहनों, ये तो हुई स्वस्थ रहने की बातें, और कार्यक्रम में चलते चलते सुन लेते हैं एक गीत।

मैनू आज मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी देखभाल करें और अपनी डाइट में खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा करें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो बहनों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया दीप्ति शर्मा ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की जुगलबंदी में फिल्म इश्क के इस गीत को। संगीत दिया अनु मलिक ने और गीत को लिखा राहत इंदौरी साहब ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म जहर के इस गीत का। गीत को अपनी आवाज से संवारा श्रेया घोषाल ने, गीत को लिखा सईद कादरी ने और संगीत रूप कुमार राठौर का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

0: साथियों, इस गीत को हमने फिल्म शिकारी से लिया है। गीत को अपनी आवाज दी है कुमार सानू ने।
1: बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा।
0: गीत को लिखा समीर ने और संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

साथियों, फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। इस सफर पर आपके साथ थी आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: colleges in Palghar district and under the Panvel Municipal Corporation. Schools in Palghar and in Raigad, some talukas including Alibag, Panvel, Uran, Srivardhan, Masla, Tala and Polatpur have also remained closed today as a precautionary measure. Fishermen have been advised not to venture into the sea. Nivedita, AIR News, Mumbai.
1: A powerful storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for Comprehensive Convention on International Terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also entered round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
3: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा

0: विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
0: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
1: अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी

0: मानदी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने

0: पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
3: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
3: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी

0: आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है।
1: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया

0: और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
1: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
2: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
3: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
4: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
3: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
3: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
6: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
7: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
6: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
7: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
6: क्यों दे दूं?
7: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
6: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
7: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
8: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो,

0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
1: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
1: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
3: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
3: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
4: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
4: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना जिसके पास जा रहा है,
4: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
6: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
4: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
3: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलूं।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए,

0: और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्ययान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
1: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
2: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
1: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
2: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
3: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
4: हम अच्छे हैं।
3: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
4: जी हम तैयार हैं।
3: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्ययान आदित्य L1 के बारे में।
4: आदित्य L1 के बारे में?
5: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
2: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
2: जी, मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
1: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
2: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
1: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
2: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
3: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य

0: की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्ययान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
3: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्ययान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर, आदित्ययान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्षयान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्ययान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 4 बजे हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक। देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी।

0: 106 देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे लिसनर्स के साथ कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफर तो काफ़ी मेरा शानदार है लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है ऑफिसर से लेकर जितने आपके सब

0: कोऑर्डिनेट है, जितने भी कार्मिक हैं
1: जी
0: सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें था। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी।
1: तो सर जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी

0: सुमित जोशी सर डीआईजी थे, जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका, इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
1: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर, मैं ठीक बता रहा हूँ?
0: जी बिल्कुल ठीक, बहुत बता
1: जी
0: रहे।
1: तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
0: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ जीपीएस वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
1: जी
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत खतरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी
0: इसमें। जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आजादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं, अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं, कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर
0: जी।
1: तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
1: बाहर
0: से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बाला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध

0: गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उसमें आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी।
0: तो बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे दोनों साइड से, काउंटर फायर बहुत जबरदस्त
1: जी,
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी।
1: सर हमें ये भी हम जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोग को हम लोग परास्त करें, कितने से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी खात्मा करें।
1: जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
0: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
1: जी,
0: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों का बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
1: क्या बात है,
0: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
1: जी। तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
0: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
1: अच्छा।
0: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला, तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
1: जी। और दो बार आपको मिला है,
0: दो बार गैलेंट्री।
1: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
0: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
1: एग्जैक्टली। लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहां आप पहुंचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें
0: अच्छा।
1: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और सब
0: एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता कि वो कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं एक रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में के देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
0: अच्छा,
1: में ज्वाइन किया जी
0: जी। तो आपने स्कूलिंग के जमाने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सोलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया, उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा,
1: एनडीएफ के खिलाफ काम हम लोग किए जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा,
1: वहाँ फिर एनडीएफ के एक कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी, इंडो भूटान। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था, उस समय असम जल

0: आई थी एनडीएबी का उससे,
1: अच्छा,
0: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफी काम किए थे, हमारे बटालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें, उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था, बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
1: अच्छा, हाँ, तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी,
0: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीजें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी,
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है 4 साल का 5 साल का, ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की,
0: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग,
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन, हाँ, असम में आपने शुरुआत, अच्छा,
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत, अच्छा, हुआ जी।
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
0: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में हुआ जी जी।
1: अच्छा,
0: जी जी,
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
0: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी, तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
1: अच्छा,
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई,
1: अच्छा,
0: असम में आ गई हॉली में जी।
1: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युकसुम में मेरी पोस्टिंग
1: जी
0: है।
1: अच्छा, एक चीज सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग सही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहां पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है,
0: जहां जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी
1: जी
0: जी। हाँ, लेकिन
1: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज को हम याद,
1: अच्छा,
0: करते हैं जी।
1: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
0: जी
1: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं
0: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज से हर बड़े चीज में
1: जी
0: जी जी जी।
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला, आज भी के मेरा जो मानना है आज के समय में, कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है,
1: यानी कि जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
0: हाँ, इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है वो तो दूसरा चीज हो जाता है
1: जी जी,
0: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहां जहां था वहां ना कोई टेक्निकल गजट पहुंचना संभव था, ना कुछ पहुंचना, ना आदमी पहुंचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज यहां जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई एसएसबी ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं,
0: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी,
0: तो
1: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
1: जी, जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलेविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेट

0: belatedly. So I pay my gratitude and of course heartfelt obeisance to them myself. Shankar Lodhe from Kakrola, Dwarka, Sector 15, Delhi. Se. Jai Hind, Jai Bharat Mata Ki, Jai Vande Mataram. I hope my message will forward to respected sir. Yes, of course. Aapka message humne Inspector Rituraj ji ko suna diya hai. To sir, aap kuch kehna chahenge is message ke jawab mein? Ye bahut aapki tareef kar rahe hain aur aapko greet bhi kar rahe hain. आपके मिशंस के लिए भी और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए
1: जी. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं. जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं. अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नजदीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए.
0: क्या बात है सर. बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं. आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके अवेयर रह करके भी इंफॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं.
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने. तभी हमारा देश जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं. एक और मैसेज है सर. सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से. जय हिंद कह रहे हैं आपको.
1: जय हिंद आपको भी.
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से. प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी. ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये.
1: जय हिंद. हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें. तभी देश का तरक्की होगा. तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल सर आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें. सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही. उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को. आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से. उसके बाद फिर INT का कोर्स किया. इंफॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है.
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीजें.
1: फोर्स से ही मैंने जी.
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर. ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स गोल्डम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा. ये जी
0: अच्छा.
1: कैसे कैसे नक्सल से कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी. जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा
1: खाना. और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं. वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है, कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है.
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज. और
0: अच्छा,
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा,
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी.
0: पूरा टैक्टिक्स. तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी.
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा. आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके.
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी. जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरमेंट में अपने आपको ढालना होता है.
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है.
0: अच्छा,
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है.
0: तो एक लीटर पानी में और वो भी 72 घंटे
1: इस टाइप के ड्रिल. उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
0: अच्छा. तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है.
0: 1 महीना
1: जी.
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को? क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है. टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज. मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है.
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है.
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं.
0: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं.
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया. और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल.
1: जी हाँ, तो हो जाता है उसमें.
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें.
1: उसमें क्या

0: होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा,
1: अच्छा
0: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
1: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
0: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है,
1: अच्छा
0: अचानक अचानक सब चीज़ होता है। आप
1: पहले से नहीं बताते हैं?
0: नहीं, खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
1: ओके, एक तरह से ड्रिल
0: हाँ
1: ड्रिल।
0: ड्रिल ड्रिल, हाँ
1: अच्छा
0: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
1: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी
0: अगर
1: जीदारी के साथ।
0: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस
1: जी
0: अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
1: यानी कि एक
0: हाँ
1: भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो
0: कमजोर
1: पूरी
0: पड़ा,
1: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
0: हाँ तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है ट्रेनिंग
1: मोटिवेटेड
0: का।
1: रखना।
0: हाँ ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा एक टीम वर्क के जैसा टीम के रूप
1: जी
0: में ही उनको ढाला जाता है।
1: सर, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं
1: जी
0: भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी। हाँ और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
1: जी
0: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
1: जी
0: जी।
1: आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी जी जी जी
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डरों को
1: अच्छा
0: पकड़ना है जी, उसके उसके
1: अच्छा
0: उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है।
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है
1: जी
0: जी।
1: सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है, या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
1: जी
0: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया, मतलब?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए
1: सर,
0: जी।
1: यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं,
0: जी
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है, और
0: जी
1: ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद, और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू, जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूं कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा। उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी, देश हमारा

0: भी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस एसोसिएशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: यह खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं। सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर के वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूं, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि

0: हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज एसएसबी से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

0: आप सुन रहे थे।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

मेजर साहब, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत आनंदराज आनंद का था और संगीत भी आनंदराज आनंद का।

समीर के बोल अभी आपने सुने। हरिहरन और चित्रा की आवाज़ों में फिल्म थी जिद्दी। धुन तैयार की थी दिलीप सेन ने। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

माशूक फिल्म का गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाज़ों में। गीत गौहर कानपुरी का था, धुन तैयार की थी श्याम सुंदर ने।

नीलेश मिश्रा का बोल अभी आपने सुने के और साथियों की आवाजों में। फिल्म थी मक्खी। और अब सुनते हैं अरुण पौडवाल के संगीत निर्देशन में इंदिवर की शब्द रचना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है मीरा का मोहन।

अनाथा पोडवाल और सुरेश वाडेकर के गाए मीरा का मोहन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज 2 जुलाई है और आज के दिन 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। हर साल 2 जुलाई को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है और ये समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान की सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच कई मुद्दे बाकी थे, युद्धबंदी, कब्जाई गई जमीन और कश्मीर विवाद। इन्हें सुलझाने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बैठक हुई और जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे, शांतिपूर्ण समाधान, भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे, कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम की लाइन को नियंत्रण रेखा यानी LOC माना गया। दोनों देश इसका उल्लंघन भी नहीं करेंगे। साथ ही दोनों देश एक दूसरे की जमीन से सेना हटाएंगे और जिसके साथ भारत ने 13,000 वर्ग किलोमीटर जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस लौटा दी। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भी रिहा किया। व्यापार, संचार, यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। इस समझौते पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को आधी रात को बॉर्नस कोर्ट में शिमला में इस पर हस्ताक्षर किए। इसका जो विशेष रूप से महत्व है वो है युद्ध की समाप्ति। 1971 के युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म किया गया, द्विपक्षीयता का सिद्धांत लागू किया गया, कश्मीर समेत सभी मुद्दे सिर्फ भारत पाक आपस में सुलझाएंगे, UN या किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं होगी। भारत आज भी इसी आधार पर बात करता है। LOC का जन्म हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा शब्द का इस्तेमाल हुआ जो आज भी कायम है। मानवीय पहल, 93,000 युद्धबंदियों की रिहाई विश्व इतिहास की सबसे बड़ी रिहाई थी। इस समझौते के साथ कुछ विवाद और आलोचना भी हुई जिसमें सर्वप्रथम है कश्मीर का हल नहीं हुआ। समझौते में कश्मीर को द्विपक्षीय

ये मुद्दा तो माना गया पर स्थायी समाधान नहीं निकला। कई लोग मानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जीती हुई जमीन लौटाकर और युद्ध बंदी को छोड़कर पाकिस्तान से कश्मीर पर स्थायी हल नहीं लिया। पाकिस्तान ने कारगिल में 1999 और आतंकवाद आदि से एलओसी और द्विपक्षीयता का उल्लंघन बराबर किया है और वो वर्तमान में भी जारी है। आज इतने वर्षों बाद भी शिमला समझौता भारत पाक संबंधों का आधार है। जब भी कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय दखल की बात होती है भारत शिमला समझौते को हवाला दिया जाता है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी भारत ने कहा कि यह द्विपक्षीय ही मामला है। शिमला समझौता युद्ध के बाद शांति की उम्मीद लेकर आया था। इसका मकसद दुश्मनी को दोस्ती में बदलना था। हालांकि सभी लक्ष्य पूरे नहीं हुए फिर भी इसने दोनों देशों की बातचीत को मेज पर लाकर एक ढांचा दिया है। शिमला समझौता बताता है कि युद्ध का अंत स्याही से होता है बारूद से नहीं। शांति की उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: साथियों, आज हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है. इसे खेल पत्रकार दिवस या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी कहते हैं. ये दिन उन पत्रकारों को समर्पित है जो खेल की दुनिया की हर खबर, हर रोमांच और हर भावना को हम तक पहुंचाते हैं. बिना इनके स्टेडियम की तालियां हमारे ड्राइंग रूम तक नहीं पहुंच पाती हैं. 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी APIPS की स्थापना हुई. इसकी याद में 1994 से 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है. AIPS आज 160 देशों के 95 से ज़्यादा खेल पत्रकारों का संगठन है. खेल पत्रकार वो होते हैं जो मैच का स्कोर ही नहीं, खिलाड़ियों का दर्द, कोच की रणनीति, दर्शकों का जोश और खेल की राजनीति भी लिखते हैं. ये अखबार, टीवी, रेडियो, वेबसाइट, यूट्यूब हर जगह होते हैं. प्रेस बॉक्स में बैठकर 90 मिनट का मैच 900 शब्दों में समेट देना इनका हुनर है. खेल पत्रकारिता का महत्व सर्वप्रथम खेल और जनता के बीच पुल का काम करता है. सचिन का शतक हो, नीरज का गोल्ड, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, ये सब खेल पत्रकारों की कलम से घर घर पहुंचता है. कई बार खिलाड़ियों की समस्याएं, फेडरेशन की गड़बड़ी, डोपिंग जैसे मुद्दे भी खेल पत्रकार ही उठाते हैं. साथ ही ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, कबड्डी, हॉकी जैसे जो क्रिकेट के आगे कम लोकप्रिय खेलों को भी कवरेज देकर ये उन्हें जिंदा रखते हैं. किसने कब कहां कितने रन बनाए, ये सारा इतिहास खेल पत्रकार ही सजोते हैं. सातों दिन 2400 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है. यदि रात में मैच खत्म होता है 2 बजे तो ये खबर भी 2:05 पर भेज देते हैं. साथ ही इनको TRP के दबाव, व्यूज, ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में सटीकता बनाए रखना भी बड़ा मुश्किल कार्य से गुजरना होता है. हालांकि मैदान से आजकल दूरी दूरी हो गई है. आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस जूम पर, मैच टीवी ग्राउंड की मिट्टी की जगह कमी देखने को मिलती है. फेक न्यूज और फैन बार बार के बीच सही खबर देना भी बड़ा चैलेंज है. हमारे यहाँ बहुत खेल पत्रकार हुए जिसमें से विशेष रूप से क्रिकेट कमेंट्री के बादशाह किशोर भीमानी, अयाज मेमन, ओलंपिक और क्रिकेटर के जानकार बोरिया मजूमदार, कादम्बरी मुरली वेट.

0: महिला खेल पत्रकारिता का बड़ा नाम है और हर्षा भोकले, जिनकी आवाज सुनते ही क्रिकेट की याद आ जाती है। पहले अखबार का एक पेज खेल का ही होता था, आज इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर थ्रेड से मैच लाइव चलता है। मीम्स सब खेल पत्रकारिता का हिस्सा बन गए हैं, पर असली चुनौती है 10 सेकंड की रील में भी सच्चाई और गहराई बनाए रखना। आज के इस दिन पे अपने पसंदीदा खेल पत्रकार को सोशल मीडिया पर टैग करके शुक्रिया जरूर कहें। पुराने अखबारों की वर्ल्ड कप की तस्वीरें और कटिंग को जरूर पढ़ें और देखें, और साथ ही युवा पत्रकारों को बढ़ावा दें। और इसी विषय पर आज हम अपने साथियों को भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं, मथुरा जनपद में खेलों की स्थिति। इस विषय पर राकेश कुमार यादव, पूर्व जिला खेल अधिकारी से सुरभि शर्मा की बातचीत सुनवा रहे हैं।
1: श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में खेलों में भी कोई भी व्यक्ति अपना करियर बना सकता है। वो समय चला गया जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हमारे जनपद में खेलों को लेकर काफी सारे प्रयोग किए गए, काफी सारी सुविधाएं हमारे जनपद में खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही, चाहे वो स्टेडियम से संबंधित हो, खेलों से संबंधित हो या प्रतियोगिताओं का आयोजन किया हो। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं राकेश सर। सर, ये बताइए कि खेलों का हमारे जनपद में क्या भविष्य है, क्या सुविधाएं, वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे जनपद में खेलों की?
2: खेलों की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है। जब से सरकार खेलों के प्रति जागरूक है, उतने ही जागरूक खिलाड़ी होते जा रहे हैं। सरकार की ओर से गणेशरा स्टेडियम स्थापित है, उसमें खेल सुविधाएं, सभी प्रकार के खेल सुविधाएं, जैसे बैडमिंटन हॉल, स्विमिंग पूल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, जिमनास्टिक के लिए सारी सुविधाएं।
1: क्या कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही हैं या कुछ नए ऐसे इक्विपमेंट्स लाए गए हैं जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस में सहायता मिले?
2: बिल्कुल बिल्कुल, नए उपकरण में जैसे हमारे यहाँ कबड्डी का मैच है, कुश्ती का मैच है, जो नए बिल्कुल नए हैं, माननीय विधायक जी ने, श्रीकांत शर्मा साहब ने अपनी निधि से उपलब्ध कराए हैं। और बैडमिंटन हॉल में जो रबर का कोर्ट बनाया है, उन्हीं की निधि से बना हुआ, और बास्केटबॉल कोर्ट भी माननीय मंत्री जी की निधि से बना हुआ।
1: ये जो नई सुविधाएं प्रदान की जा रही है, क्या उनका रख रखाव भी सुनियोजित तरीके से किया जाता है? कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कार्यक्रम है या जो सुविधाएं वो शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनके रख रखाव में समस्या आती है जिससे कालांतर में वो सुविधाएं किसी काम की नहीं रहती। इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, रख रखाव खेल विभाग की ओर से किया जाता है, और खेल विभाग बड़ी होशियारी से इन उपकरणों का, जो उपकरण हमें सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उनका रख रखाव करती है। और जहाँ तक हमारे स्टेडियम की परिसर की बात है, उसमें बाकायदा रख रखाव पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि वो बच्चों प्रयोग करें अपना खेल के मैदानों में उपकरण, जैसे एथलेटिक्स इवेंट है उसमें बच्चे प्रयोग करते हैं, और फिर जाके एक स्टोर रूम बने हुए हैं, उनमें बच्चे रखते हैं, कोचेज हैं तो एथलेटिक्स के, वो विशेष ध्यान देते हैं। 5 कोच हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें 5 कोच में एक कुश्ती के कोच हैं, खेलो इंडिया की ओर से एक सेंटर चलता है, उसमें 30 प्रशिक्षार्थी हैं जिनका चयन हुआ था जिला स्तर पर, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण। एथलेटिक्स में एथलेटिक्स कोच द्वारा, फेंसिंग में फेंसिंग के कोच द्वारा, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग के कोच द्वारा, और एक जिम ट्रेनर है हमारे पास, जो यहाँ आधुनिक जिम है जिसका लाभ शहर के सभ्रांत नागरिक और खिलाड़ीगण लेते हैं।
1: आपने जिक्र किया खेलो इंडिया, क्या है खेलो इंडिया, इसका क्या अभिप्राय, इसके पीछे क्या प्रयोजन है?
2: खेलो इंडिया एक भारत सरकार की स्कीम है, जितने भी इंडिया में जनपद है, हर जनपद में उन्होंने एक खेल, वहाँ के खिलाड़ियों ने और वहाँ की एसोसिएशन और क्रीड़ा अधिकारियों ने एक खेल का चयन किया जो उस शहर में पॉपुलर हो। जैसे अपने यहाँ पे कुश्ती पॉपुलर है, कुश्ती की बेल्ट

0: है मथुरा। तो यहाँ पे खेलो इंडिया के द्वारा कुश्ती का कोच रखा गया है और कुश्ती में प्रशिक्षण चलता है।
1: खिलाड़ियों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी घर से निकलता है तो सब कुछ अपनी चिंताएं पीछे छोड़ के निकले, ऐसा ना हो कि अगर वो खेले तो खेलते समय उसे अपने घर की परिवार की चिंता रहे। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे उसको प्रोत्साहन मिले, क्या ऐसा कुछ है?
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की एकलव्य क्रीड़ा कोष है, जिसमें जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए खेलते हैं, उस क्रीड़ा कोष से उनको उपकरण दिलाना, उनकी भोजन व्यवस्था करना और उनका अच्छे शहर में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एकलव्य क्रीड़ा कोष से की जाती है, जिसमें हमारे जिले के दो कुश्ती की बालिकाएं ऑलरेडी उस स्कीम में वो पात्र हैं, उस स्कीम में प्रशिक्षण ले रही हैं।
1: खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार किया जाता है? क्या स्कूल कॉलेज अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं या कोई ऐसी प्रतियोगिता का आप आयोजन करते हैं जिससे खिलाड़ियों का चयन किया जाए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है गांव के बच्चे बेहद अच्छे होते हैं किसी भी खेल में, लेकिन उनको मार्गदर्शन सही नहीं मिल पाता। किस प्रकार अगर कोई खिलाड़ी है, किसी के माता पिता चाहें उनके बच्चे आगे जाए, खासतौर से बालिकाओं को लेकर माता पिता बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि उनकी सुविधा का, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
0: जी जी बिल्कुल, जब बच्चियों की प्रशिक्षण की बात होती है और बालकों की प्रशिक्षण की बात होती है, तो आजकल जो बच्चियों के साथ टीम मैनेजर के रूप में एक महिला लगाई जाती है, साथ में अगर टीम कोच की जरूरत होती है, टीम मैनेजर टीम कोच एक एक महिला रहती है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी स्टेडियम में खेलकूद होते हैं बालिकाओं के, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वगैरह सारी व्यवस्था रहती है, उनको पूरी वो सुविधाएं दी जाती है और उनके खेल पर विशेष ध्यान करके हम लोग सारी चीजों का ध्यान रखते हैं।
1: खिलाड़ियों के चयन की क्या प्रक्रिया है, किसी खिलाड़ी को कैसे पता चलता है?
0: खिलाड़ियों को सबसे सबसे पहले हमारे यहाँ छात्रावास की व्यवस्था है, छात्रावास की चयन प्रक्रिया अलग है, प्रतियोगिता की चयन प्रक्रिया अलग है। छात्रावास की चयन प्रक्रिया इस तरह से होती है, जो अंडर 12 और अंडर 15, 15 साल से नीचे और 12 साल से नीचे, 12 साल से नीचे दो खेल है, जिम्नास्टिक और स्विमिंग, जिसमें 12 साल के नीचे के बच्चों का चयन होता है, पहले जिला स्तर पे होता है, फिर मंडल स्तर पे होता है, इसके बाद प्रदेश स्तर पे होता है। तो उसमें छात्रावास में जो प्रदेश में अच्छे बच्चे होते हैं, जितनी सीटें खाली होती हैं, उनके माध्यम से एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लगता है 20 दिन का, 15 से 20 दिन का, उसमें चयनित होते हैं बच्चे और उसी में चयन होता है छात्रावासों में। इसी तरह कॉलेज का होता है और एक अंडर 15 का इसी तरह होता है। प्रतियोगिताओं के लिए पहले जिला स्तर पर प्रतियोगिता में बच्चों का चयन होगा, जो प्रथम आएंगे वो मंडल स्तर पर जाएंगे, जो मंडल में प्रथम आएंगे वो राज्य स्तर पर जाएंगे, जो राज्य में प्रथम आएंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, ये चयन प्रक्रिया है।
1: से जो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन अब होगा, उस बारे में जानकारी दीजिए।
0: इस बारे में अंडर 14 साल के, 14 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, उनके 10 खेलों का आयोजन हमारी मंडलायुक्त महोदय द्वारा मंडल में किया जाएगा। यहाँ से जिले की टीम बन के पहले जिले पे उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिले पर 18, 19, 20 दो दिन ये कार्यक्रम, तीन दिन ये कार्यक्रम गणेशराज स्टेडियम में और मैनपुरी के स्टेडियम में भी इसी डेटों में, और फिरोजाबाद और आगरा, ये चारों जनपदों में 18, 19, 20 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। फिर ये जो चयनित 10 खेलों में जो चयनित बच्चे होंगे वो मंडल स्तर पे 23, 24, 25 को प्रतिभाग करेंगे। ये प्रतियोगिता है अंडर 14 की, जो इसमें अभी हम लोग कराने जा रहे हैं।
1: इसमें कोई खिलाड़ी कैसे प्रतिभाग कर सकता है, क्या उसको कुछ फॉर्म फिल करना पड़ेगा या कहाँ से उसे जानकारी मिल सकती है इस विषय में?
0: मैंने आज समाचार पत्र में, जैसा आपने मुझको बताया भी है और आज मैंने पढ़ा भी है समाचार पत्र में, आज निकला भी है, उसमें निशुल्क बच्चों को बस अपना आधार कार्ड लाना है, निशुल्क प्रवेश है, किसी भी विद्यालय की ओर से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं तो आप का ना हो किसी भी एक क्लब की टीम हो आपकी, या अगर टीम गेम है नहीं है तो इंडिविजुअल गेम में एथलेटिक्स और कुश्ती है तो उसमें भी प्रतिभाग कर सकते हैं। आप आधार कार्ड हो, आपकी आयु 14 साल से नीचे, उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं।
1: जी, जो व्यक्ति, जो बच्चे यहाँ चयनित हों

0: उनका क्या भविष्य है, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा आगे जाके?
1: वो मंडल स्तर पर जाएंगे, मंडल स्तर पर भी वो होगा, प्रतियोगिता होगी, तो मंडल स्तर तक का भी कार्यक्रम आ चुका है। आगे जो कार्यक्रम आएगा तो वो जो मंडल स्तर पर फर्स्ट सेकंड आएंगे या फर्स्ट आएंगे तो उन बच्चों को आगे भेजना होगा तो वो भी भेजा जाएगा।
0: जी, क्या खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप का कुछ प्रावधान है? कई बार ऐसा होता है अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो खिलाड़ी प्रोत्साहित होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल स्कॉलरशिप का प्राविधान एक तरह का है, उसको स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं क्योंकि आजकल विद्यालय में तो स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे जूनियर सब जूनियर अंडर 14 है, अंडर 18 है, अंडर 19 भी है, अंडर 20 भी है, ये 17 भी है, कई ग्रुप है। उसमें अगर बच्चा प्रथम द्वितीय तृतीय वो स्थान पाता है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक धनराशि, जिसकी अलग अलग श्रेणी है, फर्स्ट को 20,000 है, सेकंड को कुछ और है, थर्ड को कुछ और है, राष्ट्रीय जैसे राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता है उसमें वो राशि ज्यादा है, 75,000 है, 50,000 है, ये अलग अलग राशियां हैं, तो वो बच्चों को प्रदान की जा सरकार द्वारा।
2: मथुरा जनपद में खेलों की स्थिति, साथ ही सुन रहे थे अभी ये भेंटवार्ता राकेश कुमार यादव पूर्व जिला खेल अधिकारी से सुरभि शर्मा की बातचीत, और अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। जी बसने को है कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच

0: बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज संध्या 6:45 पर आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य कैनिंगटन में ओवल लंदन में दूसरे सेमी क्रिकेट मैच का फाइनल का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा आज संध्या 6:45।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज खेती के साथ पेड़ लगाना आय बढ़ाने का अवसर, साथ ही हरी खाद के उपयोगिता चर्चा करेंगे दीपक गोस्वामी। भेंटवार्ता होगी गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक तेवतिया और आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। इसके अलावा मौसम का हाल, बाजार भाव और कृषि समाचार होंगे। समय रहेगा संध्या 6:15।

हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है। संध्या 6:45 पर फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:05 पर वे साहित्य कार्यक्रम में दे समारोह में श्रोता लेंगे गुलाबी शहर जयपुर के विषय में जानकारी। वार्ताकार होंगे नरेंद्र कुमार शर्मा।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे रात 8:00। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा रात 9:15।

रात 8:45 और रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। ये था आज का कार्यक्रम विवरण।

प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा आज रात 10 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हिंदी समाचारों का समय रहेगा

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति पर प्रश्न।

सोम ठाकुर की शब्द रचना भी आपने सुनी इंदिरा शर्मा की आवाज में। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। भैया, खेती के संग संग अगर खेत के संग पेड़ लगाए हुए काम करो जाए, यानी मिट्टी को संरक्षण है जावे और संग में एक हमारे आय को भी नया साधन बन सके। या कि मुख्य फायदा ये है कि भैया पेड़ की जड़ 2 से 4 मीटर गहरी जाके जब अंदर होए तो बात मिट्टी को पकड़े है और ढलान वाले खेत में जो हमारा मिट्टी को जो क्षरण है वो रुक जावे है। अतिरिक्त कमाई के रूप में या तो लकड़ी के रूप में, फल के रूप में या अन्य रूप में लाभ लियो जा सके। और भैया एक बात और है कि गर्मी में जब हमारी फसल होए तो अगर पेड़ लगे हों तो या तो नमी बनी रहे और हमारी फसल में तापमान भी कम रहे। अब भैया हमारे जो पेड़ लगाए हुए में ये भी ध्यान रखनी है कि हमें कौन कौन से पेड़ लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं। खेत की मेड़ पे सागवान, शीशम, पॉपुलर, उत्तर दक्षिण मेड़ पे फलदार अमरूद, नींबू, सहजन, ढलान, नाला और किनारे वाले तरफ बांस के, बेटीवर के पेड़ और खेत के बीच में अर्जुन और खेचड़ी के पेड़। भैया सबसे ज़्यादा कमाई वाले जो पेड़ हैं वह में पॉपुलर जो लगे हैं ये 5 साल में तैयार है जावे और बीच में गेहूँ, धान, कोई भी हम फसल आराम से

0: ले सकें। सहजन, सालवर फली, एक पेड़ हमारे बहुत ही उपयोगी है, मेड़ पे हम याकू लगाए सकें। ऐसे ही बांस के संग में अदरक, हल्दी, छाया में हल्दी बढ़िया होए और बांस 4 साल में कटाई को तैयार रह जावे। अब भैया पेड़ लगाए हुए थे, पहले पूरी जानकारी और या से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं इनसे बात करके, और जो अगर या की अनुमति अगर कहीं से लेवे की आवश्यकता है, जो पेड़ आप लगाए रहे हैं तो बाकी अनुमति भी अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नियम से अपनी सारे कार्य को करना चाहिए। या में दूरी की भी विशेष बात हो, पानी की भी बात हो, और कौन सी जगह कौन सा पेड़ लगाना है और हमारे खेत में कैसी स्थिति है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ निर्भर करे। तो भैया ये तो बात रही हमारे खेती के संग पेड़ लगाए हुए की, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री की। अब आपको आज भेंट वार्ता क्रम में जानकारी दिवा रहे हैं, गांव को पानी गांव में और खेत को पानी खेत में। हमारे विशेषज्ञ वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक तेवतिया, और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भैयाओं, जे सही कहोगे कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव ना है, न खेती बाड़ी संभव है। हम लोग देखता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हमारो भूमि को जल संरक्षण या भूमि को जो संरक्षण जल है वो लगातार वाको स्तर गिरते जा रहा है, और जाके ताई हमारे कई ब्लॉकन में, मथुरा ब्लॉकन में कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़े। बरसात के जल को अगर संरक्षित करे जाए तो निश्चित रूप से जो जल है वो हमारी खेतीबाड़ी के कामों में आ सके है, और जो भूमि को जल है वाको स्तर बढ़ाया जा सके है। तो इन्हीं सब बातचीतन को लेकर के हमारे संग हैं डॉक्टर अशोक तेवते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: बस आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे किया जाए जल का संरक्षण।
2: देखिए साहब, ऐसा है जैसे ही हमारे होली पूजन होता है और होलिका में हम होलिका दहन करते हैं, और उसके तुरंत बाद ही ऐसा महसूस होने लगता है कि हमें पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है
1: जी।
2: चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वो सिंचाई के पानी की समस्या हो, और फिर उसके बाद के जो महीने आते हैं अप्रैल, मई और जून, तीनों महीने बड़े ही संकट के साथ हमें गुजारने पड़ते हैं, और हर समय ऐसा लगता है कि हमारी पानी के बिना फसल भी सूखी जा रही है या बिना पानी के हमारी पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। ये समस्या भी कहीं कहीं हमारी ही उत्पन्न की हुई है, ऐसा देखने में आया है और प्रायः होता ही है
1: जी।
2: कि जब वर्षा होती है तो हम उसके संचयन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 94% जल, वर्षा जल
1: जी,
2: ऐसे ही बेकार बह करके चला जाता है।
1: ये शहरों की बात हो रही है डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र?
2: ये मैं ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात कर रहा हूँ और शहरी क्षेत्रों की भी
1: जी।
2: मैं वैसे मुख्यतः बात करूंगा ग्रामीण क्षेत्रों की
1: जी,
2: क्योंकि मैं किसानों से इस समय बात कर रहा हूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा
1: जी।
2: तो हमारा जो वर्षा जल है वो अधिकांश बह करके व्यर्थ चला जाता है, और बह करके केवल वर्षा जल नहीं जाता, अपने साथ वो खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है, और उपजाऊ मिट्टी में आप जानते हैं कि बहुत सारे तरीके के पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी रहते हैं, और उनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो बड़े कीमती हैं पोषक तत्व, जैसे सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिनकी आपूर्ति के लिए हमें अलग से उर्वरक देना पड़ता है
1: जी,
2: और वो काफ़ी महंगे भी साबित होते हैं। एक तरफ हम उर्वरकों की कमी से भी जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम वर्षा के जल के साथ काफ़ी जो बेशकीमती पोषक तत्वों को बहने देते जा रहे हैं
1: जी। तो ये सच है कि जो वर्षा का जल है उसका लगातार ह्रास हो रहा है, मतलब उसका संचयन नहीं कर पा रहे हैं हमारे किसान भाई या हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, तो उसके संचयन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे श्रोता के, पिछले दिनों पानी की काफ़ी कमी रही, तो ये जल स्तर लगभग कितना गिरता जा रहा है हमारे यहाँ, ऐसा कोई आंकड़े हैं सरकारी विभाग में?
2: जी जी, ये मेरे पास विकास खंडवार भी आंकड़े हैं
1: जी,
2: जिसमें भूजल विकास की दर और भूजल में जो कमी आ रही है, जो दोहन हो रहा है, उसकी मेरे पास आंकड़े हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस समय

0: स्थिति है वो खराब। राया ब्लॉक की है, राया के साथ साथ हमारा माठ, बलदेव, छाता
1: जी,
0: ये ब्लॉक भी हमारे सेमी क्रिटिकल स्थिति में आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ स्थिति यह है कि जितना हम दोहन कर रहे हैं उतना पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। अमूमन ये होना चाहिए कि जो जितना हम भूजल निकाल रहे हैं उतना ही बरसात के दिनों में उसको रिचार्ज हो जाना चाहिए। यदि रिचार्ज कम है और दोहन ज़्यादा है तो हम उसको क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल श्रेणी में रखते हैं, और जहां आवश्यकता होती है विशेष ध्यान देने की संरक्षण के लिए।
1: तो शासन द्वारा प्रयास क्या किए जा रहे हैं और एक आम आदमी को क्या करना चाहिए?
0: इसमें शासन द्वारा गत वर्ष एक योजना चलाई गई थी, भूगर्भ जल संरक्षण योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़बंदी का कार्यक्रम लिया जाना था, और उसका उद्देश्य था कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में।
1: जी,
0: गत वर्ष से जिले में 6 विकास खंडों में ये योजना बनाई गई थी, और पर्याप्त जो भी संसाधन उपलब्ध हैं और जो हमारे पास क्षमता उपलब्ध है उसके अनुसार ही यहाँ कार्य भी किया जा रहा है। उसमें छाता, फरह, राया, बलदेव और माठ
1: जी,
0: ये ब्लॉक लिए गए थे, और इन विकास खंडों में मेड़बंदी का कार्यक्रम बना करके मनरेगा योजना के अंतर्गत मेड़बंदी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
1: तो ये डॉक्टर साहब, ये मेड़बंदी का कार्यक्रम ये योजना के तहत कार्य किया गया था, लेकिन ये तो एक बहुत सरल उपाय, इसको तो हर किसान कर सकता है, अपने खेतों में जाकर के बरसात के समय पर मेड़ को थोड़ा ऊंचा कर दे जिससे कि उसका पानी दूसरे खेतों में बह करके न जाए, तो इसको तो हर किसान करे तो कैसा रहेगा?
0: बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था कि सरकारी प्रयास ही केवल हो और जन सहयोग ना हो तो अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसको जो हमारे सरकारी प्रयास हैं इनको तो एक दिशा निर्देश मानते हुए, गाइडलाइंस मानते हुए किसानों को भी इसी प्रकार के प्रयास करने चाहिए। और आवश्यक है कि वर्षा होने से पहले
1: जी,
0: जो कि अभी बरसात शुरू हुई है, इस समय हमारी जो खेतों की मेड़ है उनको अच्छी तरीके से मजबूत करके बांध दें और प्रयास करें कि खेत का कोई बिल्कुल भी पानी, एक बूंद भी पानी खेत से बाहर न जाने पाए।
1: जी,
0: इसी प्रकार सभी किसान जब प्रयास करेंगे किसी एक क्षेत्र के तो पानी, खेत का पानी खेत में ही रुकेगा।
1: डॉक्टर, खेत का पानी खेत में ही रुके और जो चार्ज हो हमारा वाटर चार्ज हो, इसके लिए क्या खेत में जुताई वगैरह कुछ करनी होती है पहले या कुछ ऐसी कोई?
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और इसके लिए भी बहुत जरूरी है जहाँ हमारा ढालू खेत होता है, क्योंकि पानी वहीं बह करके जाता है जहाँ खेत ढालू होता है, और ढाल भी जब 0.5% से ज़्यादा होता है, 0.5% तक ढाल हो तो बहुत पानी का बहाव नहीं रहता है, उसके ज़्यादा में ही हमें आवश्यकता पड़ती है संरक्षण की
1: जी।
0: उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें ताकि जो बरसात का पानी है वो एकदम से नीचे ना बहे, क्योंकि जब जुताई ढाल के विपरीत दिशा में होगी तो प्रत्येक कूड़ में पानी भरा रहेगा और वो नीचे की तरफ एक साथ नहीं बहेगा। दूसरी जरूरत इसकी है कि अगर हमें फसल बोनी है तो भी हम उसे ढाल के विपरीत दिशा में ही कूड़ निकालते हुए बोएं ताकि जब पानी बहे तो प्रत्येक पौधा जो है पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करे और पानी का बहाव कम हो जाए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता है बरसात के दिनों में कि जहां हमारी मेड़ है यथा आवश्यक उन पर घास रोपण कर दिया जाए ताकि वर्षा के पानी से मेड़ों को कम से कम नुकसान हो और उनकी मिट्टी ना कटे।
1: वृक्षारोपण कैसा कार्यक्रम रहेगा अगर इस समय वृक्षारोपण कर दिया जाए बरसात के समय में, तो आगे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से वो हमारे जल को बहने से रोकेगा,
0: बहुत कटाव को रोकेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसके लिए कृषि वानिकी का कार्यक्रम, हम उसको कहते हैं कृषि वानिका का कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। इसमें खेत के मेड़ की दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खेत के मेड़ से सटे हुए उस साइड ढाल पर पौधे रोपे जाते हैं, और वो पौधे वो होते हैं जो उनका फैलाव कम होता है और सीधे ज़्यादा बढ़ते हैं। उनसे क्या होता है कि जो मिट्टी की उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं और बहने से रोकती हैं, साथ ही साथ उनसे अतिरिक्त आमदनी भी हमें प्राप्त हो जाती है, तो ये कार्यक्रम भी बिल्कुल लिया जाना चाहिए।
1: तो ये तो बात रही डॉक्टर साहब खेत का पानी खेत में, और आपने बताया था गांव का पानी गांव में, इसको भी हमको संचरित करना चाहिए, इसको स्टोरेज करना चाहिए, इसको कैसे किया जा सकता है, ये कहाँ कैसे संभव है?
0: जी बिल्कुल, जैसे हमने बताया खेत का पानी खेत में, क्योंकि गांव भी खेतों से मिलकर के ही पूरा एक क्षेत्र बना होता है। जब प्रत्येक किसान पानी को अपने ही खेत में रोकने का प्रयास करेगा

0: तो पूरे क्षेत्र से या पूरे गांव के खेतों से बहाव पानी का बहुत कम हो जाएगा, केवल वही पानी बाहर जाएगा जो कि अतिरिक्त पानी है, जब हमारी मेड़ों से नहीं रुक पा रहा होता है और उसे हम सुरक्षित जल निकास के साथ, सुरक्षित जल निकास के साथ का अर्थ यह है कि हम उसको खेत में निचले स्थान पर पानी को बहने से रोकेंगे और ऊंचे स्थान से पानी को बाहर जाने देंगे।
1: अच्छा।
0: जिससे कि खेत में
1: जो जरूरत का पानी है वो खेत में रहेगा
0: और जो मिट्टी बह करके खेत में आई है वो कहीं निचले स्थान पर जमा हो जाएगी, उथली ऊपर से तरफ से पानी बाहर निकलेगा। तो ऐसा पानी जो गांव का पूरे गांव के खेतों से होकर के जाएगा, उसको गांव के अंदर स्थित जो भी पोखर तालाब होगा उसकी तरफ हम उस दिशा को मोड़ेंगे, पानी के बहाव की दिशा को, और उस पानी को हम उस तालाब में संरक्षित करेंगे। तो उसको हम कहेंगे कि गांव का पानी गांव में
1: जी।
0: तो यथासंभव जितना पानी खेतों में रोक सकते हैं वो रोकें, जब उसके अतिरिक्त अगर पानी है तो उसको तालाब की तरफ ले जाएं, तालाब में संरक्षित करें। तालाब की जीर्णोद्धार हम बरसात से पूर्व भी करा सकते हैं, जिसको कि 3 मीटर तक गहरा किया जा सकता है। इसके यदि फिर भी हमारा पानी तालाब भी भरने के बाद भी अतिरिक्त पानी बचता है तो हमें फिर तालाब से बाहर बहने की, उसको सुरक्षित जल निकास से तालाब से बाहर जाने की उसको जाने देंगे, ताकि हमारी नदियों में या नालों में सिल्टेशन और बाढ़ की स्थिति ना पैदा हो।
1: जी, तो बात डॉक्टर साहब ये तो बात रही गांव में गांव की, लेकिन आजकल शहर में तो ये देखने में आ रहा है कि जो भी फ्लैट्स बन रहे हैं, जो मकान बन रहे हैं, उनको भूगर्भ रिचार्ज के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की गई है, क्या ऐसे गाँव में भी संभव है?
0: बिल्कुल गाँव में संभव है। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया कि गांव के अंदर भी, क्योंकि हमारे बड़े बड़े घर होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आंगन भी होते हैं, तो जहां हमारे पास ऐसी सुविधा है तो हम अपने घर के पानी को एक तरफ गड्ढा खोद करके और उस गड्ढे में हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, जहां से उसका जो है भूगर्भ जल में पानी परकुलेशन के माध्यम से चला जाता है, तो वो पानी भी हम रोक सकते हैं बाहर अनावश्यक बहने से, उसको संरक्षित करेंगे या जल स्रोत को हमारे वो बढ़ाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बातचीत के दौरान कोई बात हमारी छूट रही हो, कुछ किसान भाइयों से आप कहना चाहें?
0: जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी बात हुई थी मेड़बंदी की, तो इसमें विशेष रूप से ध्यान दे करके किसान केवल ये ना सोचें कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि खेत का पानी जब भी बह के जाएगा पानी तो बहेगा ही बहेगा, जो कि भूगर्भ जल को रिचार्ज करता, कहीं भूगर्भ जल वो किसान के काम आता। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि काफ़ी बेशकीमती पोषक तत्व तो बह जाते हैं, उनको भी इससे रोकने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं फिर एक चीज़ और जो बीच में छूट गई थी कि यदि किसान संभव हो तो किसान अपने खेत में भी किसी एक कोने में छोटा सा एक तालाब खोद सकता है, जिसको कि हम पिट कह सकते हैं, ऑन फार्म पॉन्ड कहते हैं, तो वो भी एक छोटा सा तालाब बना सकते हैं, ताकि वो अपने खेत का पानी भी अपने खेत में रोक सकता है और जब हमें आवश्यकता हो, क्रिटिकल आवश्यकता होती है, उस समय उससे सिंचाई भी की जा सकती है।
1: तो किसान भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पानी का महत्व कितना है, और ख़ास करके अप्रैल से जून के समय में आप लोगों को पानी की खूब याद भी आती है। अगर हम वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं, उसका संचयन करते हैं, तो आगे आने वाले समय के लिए वो पानी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और दूसरी बात, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप संचयन नहीं करते, पानी को ऐसे ही बहने देते हैं खेतों में, तो आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आती है, मिट्टी आपकी ऊसर भी हो सकती है, खराब मिट्टी हो सकती है, आपको पैदावार भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने खेत के पानी को बाहर नहीं जाने दें, बरसात में जो भी पानी आ रहा है उसके अपने खेत की मेड़बंदी करें अच्छी तरह से, उस पानी को संचित करें। तो आप थे डॉक्टर अशोक तेवतिया जी, मथुरा के भूमि विकास अधिकारी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में, पुरानी कहावत है भैया, और ये जल संरक्षण की भी बात है और आज के समय की आवश्यकता की भी बात है। तो जितनी अगर हमारी संभाई होए, जितना प्रयास हम कर सकें, या के लिए हमें अवश्य करना चाहिए और या पर विचार भी हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही लाभकारी भी है। अपने जानकारी लही हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक तेवतिया से, और बातचीत कर रहे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। अब भैया विषय हरी खाद। हरी खाद एक ऐसा

वरदान है जो कि हमारी खेती में बहुत ही उपयोग है। मतलब ऐसी फसल जिन्हें बिना कटाई के खेत में उगाए के फूल आवे ते पहले मट्टी में पलट दी हो जाए, और ये हमारी मट्टी के लिए एक उपयोगी तत्व के रूप में काम करे। हरी खाद की जो उपयोगिता है, मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ावे है, सनी डैचा मूंग जैसी फसल मिट्टी में पलट देते, हमारी मिट्टी भुरभुरी होए, पानी सोखने की क्षमता बढ़े। ऐसे भैया जो नाइट्रोजन है वाकी मात्रा बढ़े है, ढैंचा लोबिया सनई जैसी दलहनी हरी खाद की जड़ जो हुए यहाँ में नाइट्रोजन जमा हुए और याते हमारी खेती अच्छी हुई, मिट्टी की संरचना सुधरे है, खरपतवार और रोग नियंत्रण में भी हमारा कम लागत लगे है, जैसे सूक्ष्म जीवन को भी वृद्धि हुए और ये हमारे सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में फास्फोरस जैसे तत्व और अन्य जो आवश्यक तत्व हैं इनकी मात्रा को बनाए रखें। लवणीय क्षारीय भूमि में भी सुधार हुए और अगली फसल में हमारी पैदावार कम लागत लगाए हुए पे भी अच्छी हुई। तो ये सब हमारे किसान भैया तो जाने ही हैं, बस तैयारी करने की आवश्यकता है। हरी खाद रासायनिक खाद को एक विकल्प के रूप में उपयोगी हो, जमीन की सेहत अच्छी हो और लंबी उम्र तक हमारी जमीन अच्छी पैदावार दे सके। तो भैया ये तो बात रही हरी खाद की, अब आपको सुनवा में है यह ब्रज लोकी।

0: अभी भी आनंद ले रहे प्रमोद कुमार शर्मा के स्वर में या ब्रज लोकगीत को। भैया, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दिनन में आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही हल्की सी मध्यम बारिश, गरज चमक के संग आंधी तूफान की भी संभावना है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जावे है कि यही के अनुरूप अपनी खेती की कार्य योजना को तैयार करें। जायद की परिपक्व फसल की कटाई और मड़ाई कर दाने को संरक्षित करें तथा कटी हुई फसल यदि हो तो वह सुरक्षित स्थान पर रखकर काई पॉलीथीन सीट से तक दें। किसान भैया को सलाह दी जावे है कि मक्का उड़द मूंग की परिपक्व फसल की कटाई मड़ाई तथा खरीफ मक्का एवं सब्जी की बुवाई वर्षा न होवे की स्थिति में करें। पशुओं को पेड़ के नीचे नाए बांधें और पशुओं को सुबह शाम नहलाएं, छायादार स्थान पर रखें, 3-4 बार पानी पिलाएं। हवा की विपरीत दिशा में खड़े के कीटनाशक रोगनाशी और खरपतवार नाशी को छिड़काव न करें। यदि संभव हो तो छिड़काव करने के बाद खाने से पहले और कपड़े धोवे के बाद हाथन को साबुन से अवश्य धोएं। और जो हमारे किसान भैया धान की तैयार पोत कर चुके हैं, वे धान की तैयार पौध की रोपाई करें। धान की पौध की रोपाई के लिए खेतन के मेड़न को मजबूत करें, जाते बरसात का पानी खेतन में रुको रहे और शीघ्र पकने वाली धान की प्रजाति की नर्सरी डालें। यदि सामान्य खेतन में धान की पौध की रोपाई 20 से 25 दिन में और ऊसर भूमि में 25 से 30 दिन की पौध की रोपाई करें। धान की फसल में चौड़ी एवं सकरी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के काजे रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर अनिली फास 30 EC 1.24 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोल बनाए के 2-3 इंची पानी में छिड़काव करें और अपनी धान की खेती की तैयारी करें। अब यह पशुपालन की बात। मौजूदा मौसम को देखते हुए किसान भी इनको सलाह दे दिया है कि रात में जानवर को खुली जगह न बांधें, दिन के समय जानवर को छायादार जगह में बांधें, पेड़ के नीचे न बांधें। तेज हवाओं के कारण नुकसान है सके। जानवर को खुरपका मुंहपका की बीमारी से बचाए भी एक काजे टीका अवश्य लगाए। यही के संग कार्यक्रम में विदा लेवे को है समय। सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे किसानवाड़ी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया दीपक गोस्वामी ने। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य कैनिंगटन ओवल लंदन से

दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर श्रोता सुनेंगे फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या वंदन कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

मजरू के शब्द रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी शागिर्द, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: राजन साजन मिश्रा और कविता कृष्णमूर्ति के गाए सुर संगम फिल्म की इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: एफएम 102 शिमला 2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साहित्य कार्यक्रम में आज देश समारोह में लेते हैं जानकारी गुलाबी शहर जयपुर के विषय में। वार्ताकार हैं नरेंद्र कुमार शर्मा।
2: जयपुर जय गुलाबी शहर के नाम ते हुए जानो जावे है। ये राजस्थान की राजधानी है। आमेर के तौर पर ये जयपुर नाम ते प्रसिद्ध प्राचीन रजवाड़े इनकी राजधानी रहो है। यह शहर की स्थापना 1728 में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करी हती। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के ताई प्रसिद्ध है। यह शहर तीन तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यह जगह के महलन गुलाबी धौलपुरी पत्थर दे होवे है, जो यह स्थान के स्थापत्य की खूबी है। 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाए दियो हो, तो तभी तेजा शहर को नाम गुलाबी नगर पड़ो। 2011 में जनगणना के अनुसार जयपुर भारत को 10वां सबसे अधिक जनसंख्या वालों शहर बन गए। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पे ही जा शहर को नाम जयपुर पड़ो। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्कल गोल्डन ट्रायंगल को भी हिस्सा है। जा गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आमे हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति को देखवे पे जे एक त्रिभुज के आकार में दिखाई देवे हैं। यही कारण थे इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहमे हैं। जुलाई 2019 में जयपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी को दर्जा दिया गया है। राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर और जयपुर से आगरा की दूरी 250 किलोमीटर है। जयपुर शहर चारों तरफ से दीवारन और परकुटन से घिरा हुआ है, जहां में प्रवेश के ताई 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और दरवाजो बनो जो न्यू गेट कहलावे है। पूरा शहर करीब 6 भागन में बटो हुआ है और जे 111 फुट यानी 34 मीटर चौड़ी सड़कन में विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रसाद भाग को पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी तरफ से घेरे हुए हैं और छठो भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रसाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं एक छोटी सी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिमी और पहाड़ी पे नाहरगढ़ को दुर्ग शहर के मुकुट के समान प्रतीत होवे है। जाके अलावा यहाँ मध्य भाग में ही सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वैधशाला जंतर मंतर भी है। जयपुर को अत्याधुनिक शहरी योजना के द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरन में गिनो जावे है। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारन में जास शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को नाम सम्मान ते लिए जावे है। ब्रिटिश शासन के दौरान जाए कछवा समुदाय के राजपूत शासकों को शासन हतो। 19वीं सदी में जा शहर को विस्तार शुरू भयो, तब जा शहर की जनसंख्या 180,000 हती। यह स्थान के मुख्य उद्योगन में धातु, संगमरमर, छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण को आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग आदि शामिल हैं। जयपुर को भारत को पेरिस भी कहो जावे है। जा शहर को वास्तु के बारे में कहो जावे है कि शहर को सूत्र नाप लो, नाप तोल में एक बराबर हो, न को फर्क न मिलेगा। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोए भी लगे तो पूरे भारत में अराजकता अपनों से उठाए भी लगी। या ऐसे दौर में राजपूतान की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर

कि महाराजा सवाई जयसिंह को तब मिलन के दायरे में फैली हुई अपनी रियासत को संवारवे और सुचारू राजकाज संचालन के ताई आमेर छूटो लगवे लगो और जा प्रकार ते नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना करी गई। जा शहर की नींव पहले पहल कहाँ रखी गई ताके बारे में मतभेद हैं, किंतु कछु इतिहास कारण के अनुसार तालकटोरा के निकट स्थित शिकार की होदी ते जा शहर

0: सुरक्षित करवे के ताई ही सात मजबूत दरबज्जन के संग किलेबंदी करी हती। जयसिंह ने हालांकि मराठान के हमला की चिंता ते अपनी राजधानी की सुरक्षा के ताई चार दीवारी बनाई हती, लेकिन उन्हें शायद मौजूदा समय की सुरक्षा और समस्याओं को भान हतो। इतिहास की पुस्तकन में जयपुर के इतिहास के अनुसार जे देश को पहलो पूरी योजना ते बनाया हुआ शहर हतो और स्थापना के समय पर राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रख के ही जाको विकास करो हतो। तो नगर के निर्माण को काम 1727 में शुरू भयो और प्रमुख स्थानन के बनबे में करीब चार साल लगे हते। नौ खंडन में विभाजित करो गयो जे शहर जामे दो खंडन में राजकीय इमारत और महलन को बसायो हतो। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर निर्मित जयनगर के वास्तुविद हते एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर चक्रवर्ती, जो आमेर की कचहरी में मुस्तवी और आरंभ में जयसिंह ने लंबे समय तक जयपुर में राज कियो और जहाँ शहर में हस्तकला, गीत संगीत शिक्षा और रोजगार आदि को उनने खूब प्रोत्साहित करो। अलग अलग समय वास्तु के अनुरूप इसरलाट, हवा महल, राम निवास बाग और विभिन्न कलात्मक मंदिर, शिक्षण संस्थान आदि को निर्माण कराया गया। जयपुर पर प्रेमी कहमे हैं कि जयपुर के सौंदर्य को देखने के ताई कछु खास नजर चाहिए। बाजारन से निकटते हुए जयपुर की बनावट की कल्पना को आत्मसात कर या निहारो तो पल भर में जाको सौंदर्य आंखन के सामने प्रगटे भी लगे। लंबी चौड़ी और ऊंची प्राचीर, तीन तरफ फैली हुई पर्वतमाला, सीधे सपाट राजमार्ग, गली चौराहे, चौपड़, भव्य राज मंदिर और हवेली, बाग बगीचा, जलाशय और गुलाबी आभाते सजे हुए जा शहर की इंद्रपुरी को सी आभा देवे लगे हैं। जलाशय तो अब नए रहे, किंतु कल्पना करी जा सके है कि अब ते कछु दशक पहले जयपुर परकोटा में ही सिमटो भय हो तो तब जाको भव्य और कलात्मक रूप हर काऊ को मंत्रमुग्ध कर देतो होगो। अभी आज भी जयपुर या जगह आयबे बारे सैलानी को बरसों बरस सहज के रखवे बारो रोमांचकारी अनुभव देवे है।
1: देश समारोह में अभी श्रोता ले रहे थे जानकारी गुलाबी शहर जयपुर के विषय में। वार्ताकार थे नरेंद्र कुमार शर्मा। साहित्य कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये लोक रचना।

0: पूनम के कई श्लोक रचना के साथ ही आज का वृत्त साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60

0: जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी रामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी रामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
4: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बने।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान, कृषि, विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
5: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को

0: बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
4: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
3: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

से बोल रही है। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित सभी संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं, इसलिए आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

ससुराल, गीत शैलेंद्र का था, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए समस्तीपुर बिहार से, मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से, सोनम सिंह, अनामिका, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित कुमार और पीयूष कुमार, लालपुर मोरा छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निम्मी पम्मी, सिया हर्षिता, निशान ध्रुव, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवान श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक, बीबी आयुषी श्रीवास, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, वाडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह, शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शैना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ, गाड़की नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षंदा और समस्त लोखंडे परिवार, सोंगा मगर लोट छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश चंदन, कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत नायक और इनके साथ ही सुरेश चौरसिया, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और मयंक भाटिया, ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डग्गू, भाविका सिक्का, गांव चौलाता बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया, मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, सागर बालूजा, मधु बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा पाही मलिक, रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमारी, डीकेश साहू, भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़क, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू एकम, दबन और अभिजोत, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेहंदी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, बंदना, प्रियल और दिवांशी विश्वकर्मा, सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा, ग्राम पंचायत बटेना पाठन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजना, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, पमला, पंचोर, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा ने। और अब सुनते हैं खून पसीना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म थी खून पसीना, पसंद हमारे इन श्रोताओं की। ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से, राजू रवानिया खंदौली आगरा, यादराम जूस फार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराया मथुरा, नेत्रपाल सिंह नगला विजयी राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जिला जालौन से, पंचम लाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया छठीकरा मथुरा से और प्रेम सिंह उज्जैन से, गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा नीरज ने के दौरान के मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह अनुराधा रामानुज पीहू कृष्णा राधिका पवन करण नयन और इनके परिवारीजन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर यशोदा सूरज शिवानी, गांव कुमुदवन से रमेश सुरेश सुनील रचना और इनके सभी साथी, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया अजीत शिवांश और इनके मम्मी पापा, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले सुजाता हेवराले प्रतीक हेवराले, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू भीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सभिया नसोर रेहान, पिपिरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया साईराज विशाल सपकाल, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़ेर बसंतरा भोजने पीएस नवानकर, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि श्रीमती शीतल राजेश, नलेश्वर नगर नरफेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्मला नवानकर विशाल नवानकर, मरकापुर से नारायण इंगले सोपान ताइड़े आशीष मोहरकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव अनिता जाधव आरती पूजा प्रसाद जाधव सोनल जाधव बेबी सिया जाधव और समस्त जाधव परिवार, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रत्माला सुरलकर आरती गौरी कुमकुम सुरलकर, गंडोडवारा से आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर लुबना आलिया अंसारी, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमल अनेजा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी सावनकर, 715 पे संदेश डूबर गांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबीय राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजबीय, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल उषा पाटिल निवृत्ति क्षीर सागर संजय चौहान, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं कल शुक्रवार को दिनांक 3 जुलाई को दिन में 12 बजे से लेकर 12:30 तक एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HVP वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे

स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहताश देवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 0562-25-30-135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा कल शुक्रवार 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू की शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म थी दूसरा आदमी। इस गीत को सुना चाहा था साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंदकला रेवाड़, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन, मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदाना खुराना, कोका भिलाई, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, भाभी नीम गांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंथाली, उषा गोंथली, हर्षदा वैष्णवी, पूनम युवराज गोंथली, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे, जमशेदपुर से अर्जेंद्र सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनेजा, पूनम ककनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमित आहूजा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और देशा गोस्वामी, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल रोशनी और बेबी प्रियांशी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी वर्मा, पैटर से चांद, अदनान और नुमान, गुफरान और फुरकान, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, पद्मा टाकीस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन, छत्रपति जी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय सेन, कंवर कॉलोनी बडवा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब, आसमा कुरैशी, यूसुफ आसमा, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीना, कारी पुंजरा, चारती, आकर्षण और जैशी, डुमराव से फातिमा वली, डब्बू वली, आसमा सोनम, मथुरा से सफरुद्दीन और उल्ला कोटरिया, नालासोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा नोमान, सुलेमान शेख मोहम्मद, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अजीत गवानकर, सरिता गवानकर, प्रणीता प्रेम से कांश और छोटा टुक टुक

व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव देवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष, और रामगढ़ कैंट से महेंद्र बोधी और कुलदीप कंवल। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। नमस्कार।

उदित नारायण और साधना सरगम को भी आपने सुना। फिल्म थी अनाड़ी, गीत समीर का था, धुन तैयार की थी आनंद मिलिंद ने।

गुलजार के बोल अभी आपने सुने। गुलजार के बोल अभी आपने सुने आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी इजाजत, धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने। और आइए अब सुनते हैं कुदरत फिल्म का गीत।

हजरत फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति पर रचनाएं।

जी कपिल कुमार की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में, एफ एम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं पद्मावत फिल्म के कुछ गीत।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना, गीत ए हम तो रास का था, संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनते हैं। श्रोताओं, कल शुक्रवार को दिन में 12 बजे से लेकर 12:30 के मध्य एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहताश देवतिया, प्रभारी जिला टीका कार्यक्रम मथुरा। श्रोताओं, हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412-25575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा शुक्रवार 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और साथियों के आवाज़ों में अभी आपने ये गीत सुना। एक ही फिल्म से करके हम इस समय श्रोता सुन रहे हैं पद्मावत फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: शिवम पाठक और शहलहदा साथियों के गए पमत फिर के इस गीत के साथ ही एक एफएम से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया।

0: और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR

0: आर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announced energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round

शकील बदायूनी की शब्द रचना भी आपने सुनी। आशा भोसले की आवाज में फिल्म थी दो बदन, धुन तैयार की थी रवि ने।

अशोक भोसले और डैनी को अभी आपने सुना फिल्म थी काला सोना, गीत मजरू का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर की शब्द रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी सरस्वती चंद। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं स्वानी तरानी का कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

किशोर कुमार को अभी अपने सुना फिल्म थी अगर तुम ना होते। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के कल शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 12:30 तक के मध्य एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रोहताश देवतिया, प्रभारी जिला टीकाकरण कार्यक्रम मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412-25575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीकाकरण एवं HPV वैक्सीनेशन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा शुक्रवार 3 जुलाई 2026 और समय दिन में 12 बजे से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना भी आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म थी भरोसा, संगीत दिया था रफ़ी ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर। बोल अनजान के थे, धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने।

शकील बताई ने कि शब्द रचना भी आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म थी दीदार, संगीत दिया था नौशाद ने।

रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल की शब्द रचना भी आपने सुनी महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म थी निकाह। और इस गीत के साथ ही आज का चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Mathu and party.
0: Shri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam Kerala ki prachin sanskrit rangmanch parampara hai jise UNESCO ne manavata ki maukhik evam amurt सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: फर्स्ट लव इज एन एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इन द हार्ट। इट इज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी, ड्रीम्स, होप्स एंड इनोसेंट इमोशंस। Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बासुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: In the national program of regional folk and light music, you were listening to a presentation of Malayalam light songs by Shri Amal Antony. The songs have been written by Shri Rafiq Ahmed and composed by Shri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Shri Wilson K. X. on keyboard, Shri Babu Varghese on rhythm pad, Shri C. N. K. Murthy on flute, and Shri C. Shri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है

0: When the going gets tough, the tough get going. भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही. इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं.
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है. दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है. भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है. रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए. कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है. फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा. वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा. कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं. फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है. हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है. अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया. जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है.
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action.

0: Through a bazillion replays, they've decided to give it as two runs. So well done, Nadine Clark. You have saved a couple of runs for your team. Anyhow, Wyatt Hodge prepares to face what will be the last ball of the second over. The slip fielder has moved a little bit wider, and once again it's a bottom edge which takes the ball towards backward square leg. The keeper runs towards her left, picks it up and throws it at the striker's end. She doesn't hit the stumps, and that allows the batters to cross over for a single. It was a good length delivery, angled in towards the stumps. Wyatt Hodge was looking to work it towards the offside but got a thick bottom edge which allows a single. 20 for 1 after 2.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो दोनों टीमों की ओर से अपने अपने हिसाब से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि शबनम स्माइल जब आई तो उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत के पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो पिछला ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। तो इस बार स्टेप आउट किया है, हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव है, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में इनफैक्ट फील्डर मौजूद हैं। मैरिजन कैप आई हैं नया ओवर लेकर के। रन रेट, रन बनाने की रफ्तार 9.23 है और पिछला ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित हुआ। डैनी वियाट हॉज, कुछ मिसक्यूड शॉट्स भी थे उनके बल्ले से निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ मायने ये रखता है कि आपके खाते में रन कितने आ रहे हैं और विकेट अगर बचे हुए हैं तो फिर उसे सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद बॉल्ड हो गई है, बेहतरीन कामयाबी, डैनी वियाट हॉज को आउट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। कट करना चाहती थी, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी और देखना पड़ेगा कि क्या गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ था। लगा तो ऐसा कि डायरेक्ट इंपैक्ट था स्टंप्स के ऊपर, लेकिन मैरिजन कैप जो कि एक ब्रेक थ्रू देने के लिए जानी चाहती हैं, उन्होंने डिफेंस को पियर्स कर दिया। गेंद और बल्ले के बीच में काफ़ी, इनफैक्ट बैट और पैड के बीच में अच्छा खासा फासला था और इंग्लैंड को लगता हुआ ये जोर का झटका 2.2 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
0: A good length delivery which after pitching jagged back in sharply, and that inward movement is what caught Danny Wyatt Hodge off guard. She has done very little wrong throughout this tournament. 294 runs in totality in this tournament, which includes a century, includes a couple of half centuries, and even here she had started off in good manner. She had already hit a couple of boundaries in the previous over. However, Marizaan Karp, the heartbeat of this South African team, delivers a telling blow once again. Danny Wyatt Hodge has now been replaced by Alice Capsey in the middle. So Capsey and Natsiva Brunt out there in the middle. And this is where I think we need to have a conversation about Sophia Dunkley. Remember, Sophia Dunkley came in as the injury cover for Natsiva Brunt and scored a 49 not out in the previous game, which was played at this very ground. Before that, she got a 50 as well in one of the group stage matches, but she was dropped from the team today so that they could get Siva Brunt in. Alice Capsey, who hasn't really done anything extraordinary in this World Cup, is now in the middle and has responsibilities on her shoulder. She gets beaten on the first ball by a lovely outswinger delivered on a good length outside the off stump, and tried to poke at it, did Alice Capsey, only to watch the ball whiz away from the outside edge of her bat.
2: बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं मैरिजन कैप, और उन्होंने बहुत ही अहम सफलता दिलाई है दक्षिण अफ्रीका को। इनफैक्ट एलिस कैप्सी को उनकी जो पहली गेंद थी, स्लोअर डिलीवरी थी वो, और उसको खेलने के प्रयास में पूरी तरीके से चूकी थी मैरिजन कैप। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट के पीछे उसे गैदर किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो दो झटके पावर प्ले में, जहां बात होती है कि विस्फोटक बल्लेबाजी होती है, ताबड़तोड़ बैटिंग का नज़ारा हमें देखने को मिलता है आज की तारीख में T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर क्लब क्रिकेट में भी, और बड़े से बड़े स्कोर बनाए जाते हैं 20-20 ओवर के मुकाबलों में। और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने जो टॉस जीता, वो टॉस बहुत ही अच्छा जीता उन्होंने, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। अभी तक तो वो निर्णय सही साबित हुआ है। अगली गेंद इस बार स्टेप आउट करके धीमे से ऑन साइड में नैट्सिवर ब्रंट ने पुश किया था बॉल को, जब तक फील्ड किया जाए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। तो पिछले ओवर में 16 रन खर्चे गए, लेकिन ये ओवर बिल्कुल शांत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ, और डैनी बियाटो जैसे बता रहे थे दर्पण

0: कि 294 रन उन्होंने बनाए हैं और ये अलग बात है कि आउट होकर के आज जल्दी ही पवेलियन लौट गई हैं, लेकिन अपनी टीम की ओर से दो उन्होंने अर्धशतक जमाए थे और एक शतक भी जमाया था इस टूर्नामेंट में आज, लेकिन बल्ले से कोई खास योगदान वो नहीं दे सके। इस बार मिडिल लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, बैकफुट पर जाकर धीमे से पुश किया है, हालांकि फील्डर्स डीप में तैनात थे और शॉट मिडविकेट की दिशा में इनफैक्ट कोई फील्डर था नहीं, तो एक रन लेने में कामयाबी। इसके साथ ही मैरिजन कैप का एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर लूं।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 7 dot balls in the first couple of overs that Marizan Kapp has delivered, and more importantly the big wicket of Danny Wyatt-Hodger. An interesting thing that I noticed, Shivendra, was the fact that a couple of batters stepped out. We'll talk more about it. There's an appeal for LBW, however it has been turned down by umpire Jacqueline Williams, who shows absolutely no interest. It was probably sliding down the leg side. Shabnim Ismail, the bowler who ran in over the wicket, delivered this one on a good length and the ball beat the inside edge of Siva Brunt's bat and hit her pad. Interestingly, Laura Wolfart shows the tee. She decides to use DRS and take this upstairs. Now, the reason why we are surprised is because to the naked eye, it seemed as if the ball would have gone down the leg side. But two things to be kept in mind. First of all, the umpires are obviously much more experienced, and therefore you tend to trust their judgment. More importantly, I think what has pushed Laura Wolfart or persuaded Laura Wolfart to take this review is the fact that the batter in question is Nat Siva Brunt, one of the most consistent performers throughout the world. And therefore, they want to get her out. And therefore, they have decided to take the review. The first replay shows us that there is no involvement of bat. Ultra Edge shows a flat line. And the ball tracker confirms exactly what we suspected. The impact is down the leg stump. It is down the leg side. So it's a horrible review. But Shivendra, I feel the only reason why they went for it is because the batter in question is Siva Brunt.
0: जो भी फैसला था, मुझे तो लगा इट इज़ वेल टेकन दर्पण, बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो खिलाड़ी क्रीज पर थी वो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, और साउथ अफ्रीका वो जो इम्पैक्ट जो उन्होंने क्रिएट किया है अपनी गेंदबाजी से, उसको वो और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और चांस लेने में कोई बुराई थी नहीं। अगर विचार विमर्श के बाद ऐसा लगता है कि हम जा सकते हैं रिव्यू के लिए, और रिव्यू बना ही इसीलिए है, कोई बात नहीं। अगर वो लॉस्ट भी हुआ तो भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत या बहुत खराब डिसीजन था।
4: A leg by was also stolen, by the way. Next delivery from Shabnim Ismail. Another shout for LBW. This time, Jacqueline Williams raises her finger. So does Shivendra in the commentary box of Akashvani. This looks plum. However, Alice Capsi now has the opportunity to use DRS. She walks down 22 yards, has a conversation with her captain at the other end, who shakes her head. That means Alice Capsi will have to turn around and take the long walk back. Shabnim Ismail has picked up another wicket. England have lost 3 in 3.2 overs. They are struggling. They are huffing and puffing. 23 for 3. South Africa in the driver's seat.
0: इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती थी साउथ अफ्रीका के लिए। शबनम इस्माइल, जैसा हमने कहा था कि उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत आज, जब वो रिटायरमेंट से वापस आई हैं इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए, और उनके लिए आज के सेमीफाइनल में डिलीवर करना कितना ज़रूरी था, ये उनसे या उनके टीम प्रबंधन से ज़्यादा बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। और एलिस कैप्सी, जो कि अभी अभी आई थी, 4 गेंदों में 1 रन बना करके पेवेलियन वापस लौट गई हैं, और शबनम इस्माइल, जिन्होंने T20 विश्व कप में अपने 50 विकेट पूरे किए थे, अब वो 51 की शुभ संख्या पर पहुँच गई हैं। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, नज़र डाली जाए, तो 28 मैचों में 23 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं और 4 मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका ने जीते हैं आज। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है टॉस जीते के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए, वो शायद फिलहाल तो इस ओर इशारा कर रहा है कि पलड़ा कागज पर भले ही मैच के शुरू होने के पहले दर्पण इंग्लैंड का भारी था, लेकिन इस

0: 4.3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद शॉर्ट ऑफ टेन गेंद स्टेप आउट किया था। जेवर ब्रेंट ने बड़े ही प्रभावशाली, बड़े एकाधिकार के साथ बल्लेबाजी करती हैं, बड़े कमांडिंग अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं, और इस बार एक लेग बाई का इशारा किया है जैकलिन विलियम्स ने। इस्माइल, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, लगातार 51 विकेट ले चुकी हैं T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में। मेगन शर्ट के नाम पर 48 विकेट हैं। एलिस पैरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, 44 विकेट। आयना शपसोल, जिनके नाम पर 41 विकेट हैं। और मैरिजन कैप 39 विकेट लेकर के पांचवें पायदान पर हैं T20 इंटरनेशनल में। वर्ल्ड कप में जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस बार पैड्स के सहारे खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, आसानी के साथ एक रन मिलेगा। जो दूसरा ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए थे इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि परिस्थितियां यकायक बदल गई। हालांकि तब भी एक विकेट गिर चुका था, एमी जोन्स आउट होकर के पेविलियन वापस लौट चुकी थी। तब रन बनाने की रफ्तार 9.34 के आसपास थी, इस समय रन बनाने की रफ्तार है 6.62 रन प्रति ओवर। ओवर की आखिरी गेंद लेकर के आई थी मैरिजन कैप, ऑन साइड में खेला गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा। जब तक थ्रो आएगा तब तक दोनों बैटर छोर बदल लेंगे। 5 ओवर के बाद स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: लूं। मत जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So the first quarter of the first innings of this semi-final has belonged to South Africa. Marizaan Kaap has completed her spell. She has delivered 3 overs in which she gave away only 9 runs and picked up the all-important wicket of Danny Wyatt-Hodge. 9 out of the 18 deliveries she sent down were dot balls. So once again, 50% dot balls. 33 for 3 England after 5 overs, and looks like Shabnim Ismail is going to be given a third over in the power play as well. Remember, this is exactly what they did against Australia too in the first match and were criticized for it. However, Shabnim Ismail creates another opportunity. There's a big, big appeal for LBW, vehement shout. However, umpire Jacqueline Williams is unmoved. Laura Wolfart walks up to her bowler. Chloe Tryon joins the confab. So does Nadine de Klerk. They are having a discussion, and by the looks of it, I think it was Chloe Tryon who ran in from mid-off, who suggested that the ball was a little too high and therefore we should not take the review. But once again, we saw that Wolfart was entrusted because the batter in question was Nat Sivabrant. She moved back and across to stand on the off stump, and this delivery was on a good length. However, it generated some extra bounce and hit her not on the pad but on the thigh guard. Next delivery, this time alters her length. Does Shabnim Ismail delivers it on a full length in line with the middle stump. The batter presses forward and dinks it back towards the bowler. Ismail quickly moves towards her right to clean it up. And an interesting reading on the speed gun, 118 kilometers per hour, which is pretty quick as far as women's cricket is concerned. The ball tracker replay is on our monitors and it tells us that whatever Chloe Tryon was suggesting was indeed correct. The ball was indeed high and would have missed the stumps. The next delivery, it's a short delivery from Shabnim Ismail. The perfume ball, as they call it, not too far from the off stump. Sivabrant did shape up for a pull shot. However, the ball went whistling past her face and in the end she had to bail out. 3 dot balls to start the final over of the power play. England struggling. Nat Sivabrant not quite able to find her mojo. 33 for 3 is the score after 5.3. 3 balls remaining in the power play.
0: 3 डॉट डिलीवरीज शबनम स्माइल के बारे में उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खेलना चाहती थी ऑफ साइड में। नैट सिवरब्रांड बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा कितनी बार आपने सुना या देखा होगा कि उनके जैसे कैलिबर की बैटर, उनके जैसे कैलिबर की खिलाड़ी, और वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही हों और उनकी टीम के 3 टॉप बैटर्स पावर प्ले में ही पवेलियन में विश्राम कर रहे हों। आज सोफिया डंकली को मैच से बाहर किया गया, टीम से बाहर किया गया, क्योंकि नैट सिवरब्रांड जो कि टीम की कप्तान हैं और वो स्वस्थ होकर के, फिट होकर के मुकाबले में वापस आई हैं। आज उनके कंधों पर दोहरी तिहरी जिम्मेदारी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार ऑन साइड में, इस बार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में थी गेंद, मोड़ा गया है।

0: एक रन से संतुष्ट होंगी। तो चार डॉट डिलीवरीज के बाद एक सिंगल आया है। इस पावर प्ले का अब अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती तो सिर्फ एक गेंद फेंकी जानी शेष है। 5.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों में जो कहानी रही है इंग्लैंड के साथ, खासतौर पर सेमीफाइनल में जब 2014 में 9 विकेट से हारे थे साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको 5 रन से हार झेलनी पड़ी थी 2020 में। इसी बीच अगली गेंद खेला गया उसे बाउंड्री लाइन पर, तब तक 1 रन लेने में कामयाबी। 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स का समय है।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 35 for 3 at the end of the power play. England, after being asked to bat first, are in a spot of bother. Amy Jones, Danny White-Hodge and Ali Skapsey, the 3 batters who have been dismissed. The 2 most experienced batters of this team now, Nat Siverbrunt and Heather Knight, are out in the middle, but both are scoring at a strike rate which is less than 100. Obviously not ideal. However, the situation demands them to be a bit watchful, a little bit circumspect, and it demands them to rebuild the situation. It demands them to steer the ship away from the rocks. Anyhow, Shivendra was telling you about England's record in the T20 World Cup semi-finals, and Jatin Sood has handed me an elongated list which tells me that England made it to the semi-finals in 2009. Of course, that is when they went on to lift the trophy. That's when they defeated their arch rivals Australia by 8 wickets. Then they defeated New Zealand in the 2012 edition. They defeated South Africa in the 2014 edition but lost to Australia in the 2016 edition, won against India in the 2018 edition, and in the 2020 edition the match was abandoned. It was England versus India in the semi-final, and India advanced to the final because they had a better position in the group stage. And then of course the 2023 semi-final where South Africa defeated England. May we add one more entry to that list? I know 2025 was the 50 over World Cup, but it was the more recent one where these two teams met in Guwahati, and once again England suffered a one-sided rubbing. South Africa scored 319 runs batting first. Laura Wolfart scored 169 in that game, and Marizaan Kapp picked up 5 wickets. Here again, what we see is Marizaan Kapp has pretty much wrecked the top order. Marizaan Kapp picked up the wicket of Danny White-Hodge. Shabnam Ismail picked up 2 wickets, and therefore England are struggling at 35 for 3.
0: तो दो जो बैटर इस समय क्रीज पर हैं, दोनों बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, और ख़ासतौर पर अगर नैट सिवरब्रंट का जिक्र किया जाए, नैट सिवरब्रंट इनफैक्ट जापान में उनका जन्म हुआ था, टोक्यो में, और उनकी माता जी वो एक करियर डिप्लोमेट थी और अलग अलग देशों में उनकी तैनाती होती थी। तो बचपन में पोलैंड में रहीं जहाँ पर लीग स्तर पर फुटबॉल खेला, उसके बाद नीदरलैंड में उन्होंने बास्केटबॉल का रुख किया था, लेकिन अंततः उन्होंने क्रिकेट को चुना। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मैरिजन कैप अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और 4th ओवर है ये उनका। 9 रन सिर्फ उन्होंने खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है साउथ अफ्रीका की ओर से, और इससे बढ़िया टॉस तो कोई जीता जा ही नहीं सकता था। अभी तक की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख करके तो ओवल के मैदान पर ऐसा ही लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो फैंस हैं वो झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, धीमे से पुश किया है, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में पहुंची है। 1 रन लिया गया, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया, और नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट दोनों का अब इस समय प्रयास ये है कि संभल करके बल्लेबाजी की जाए और एक के बाद एक जो झटके लगे हैं टीम को उनसे उभरा जाए। और ख़ासतौर पर ये जो मिडल ओवर्स हैं 7वें ओवर से लेकर के 13-14 ओवर तक, वहाँ पर इंग्लैंड को अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा, और बदलाव यही होगा कि विकेट को बचा करके रखा जाए, क्रॉस बैटर स्ट्रोक्स या फ्लैम्बॉयंस ज़्यादा ना दिखाया जाए। इस बार गेंद हवा में उछली थी, लेकिन शॉर्ट पर विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लॉरा वॉल्वर्ट थी संभवतः वहाँ पर गेंद को रोकने में या कैच करने में कामयाब।

0: भी नहीं मिली, हालांकि डीप से बैकअप था, एक रन लेने में दोनों ही बैटर्स को कामयाबी, छोर बदल लिया गया तो धीमे धीमे भाई ही सही। लेकिन इंग्लैंड के खाते में रनों का इजाफा हो रहा है, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विकेट्स को बचा करके रखना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। 9 रन बनाए हैं नैट सेवर ब्रेंट ने, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है और हेडन आइडस समय यॉर्क करने की कोशिश है, कलाइयों का इस्तेमाल करके फाइन लेग की दिशा में मोड़ा गया है। आया उबंगा खाप का जहां पर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तब तक एक रन लेने का मौका दोनों बैटर्स के पास, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर सिंगल्स। लेकिन ये जो इस समय स्थिति परिस्थिति है उसमें जाहिर सी बात है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अगर इंग्लैंड के बैटर्स सिंगल केवर ले रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं उनके लिहाज से एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है, लेकिन अगर केवल सिंगल लेने में कामयाब हो रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से तो ये बेहतर स्थिति है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट की दिशा में, गेंद चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: थोड़े इंतजार के बाद आया लेकिन अच्छा आया चौका, मिडिल लेग स्टंप की लाइन पर थी, एक दम आगे बढ़ाया, हाफ वॉली पर लिया और बड़ा कमांडिंग प्रभावशाली स्ट्रोक खेला, चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, हालांकि मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लेकिन गेंद उनसे दूर काफ़ी तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लेकिन कुल मिलाकर के केवल ये चौथा चौका इस बार लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई मैरिजन कैप, और क्या पैड से टकराई है या बल्ले से लगी है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वाइड उसे करार नहीं दिया गया। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 42, 3 विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर लूं।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 42 for 3 after 7 overs are England, and the big news is that Marizan Karp has bowled out her 4 overs. Laura Wolfart gave her the 4th over on a trot, which is an interesting move. She was going for the kill. She realizes that the wicket of Siva Brunt and Heather Knight is as good as gold for South Africa right now, and therefore she did not hold Karp back. But they won't have her services for the remaining part of the innings now. Ayobanga Kaka has been given the ball in hand. The first change in bowling. They're not going to bowl out Shabnam Ismail just yet. Khaka, who bowls right arm medium, runs in to bowl this one from over the wicket, with the wicketkeeper Sinalo Jafta up to the stumps, delivers this one on a good length outside the off stump, and the batter flays her hands away from the body. The ball hits the bat and then runs towards deep third, where Molaba was stationed before Molaba could pick it up and throw it back to the wicketkeeper. A comfortable single was added to Heather Knight's score. She moves to 7 and England are 43 for 3 after 7.1. Nat Siver Brunt now on strike. Here comes Ayobanga Kaka to deliver what will be the second ball of her first over. Delivers this one on a good length. Once again, there is width on offer, and therefore Siva Brunt is allowed to free her arms. She plays it in a deft manner, and the ball goes meandering towards the deep point region, where Tasmin Brits does the fielding and ensures that the batter cannot get more than a single. 44 for 3 then, the score after 7.2 overs. Ayobanga Kaka usually used to take the new ball, but since Shabnam Ismail has come back, she has switched her role to that of a first change bowler. Next delivery outside the off stump, opens the face of the plate, does Heather Knight. The timing on that is good enough to beat Malaba in the deep. 4 runs.
1: Ye laga Abha ka choka.
6: Delivered on a good length, but once again there was width on offer that allowed Heather Knight to throw her hands at it. She threw an angled face at it, and the timing was good enough to beat Malaba towards her right, running from deep third, and therefore another delectable boundary has been scored. 5 boundaries in the innings so far. Heather Knight moves to 11. The next delivery, and this time she's beaten. Beaten due to extra bit of bounce. Tell you what, this delivery pitched in pretty much the same spot. Heather Knight shaped up for the same shot, because why not? However, this one perhaps because it landed

0: landed on the seam, got up steeply, and therefore went over the bat. Good take from Jafta, but that extra bounce surprised Knight.
1: जी हाँ, बिल्कुल यकायक ऐसा लगा कि बॉल में बाउंस अच्छा खासा आया था, और इस बार हालांकि बढ़िया फील्डिंग है अपने बाईं ओर डाइव लगाते हुए डीप में स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, डेफिनेटली दो रन तो बचाए गए, हालांकि दो रन लेने से नहीं रोक सकी इंग्लैंड के बैटर्स को। तो तीन जो गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका की, मैरिजन कैप, शबनम स्माइल और आयाबोंगा खाका, उन्होंने इस विश्व कप में 25 विकेट हासिल किए थे इस मुकाबले से पहले, और जतिन सूद बता रहे हैं कि बेस्ट इकोनॉमी इस विश्व कप में रहा है वो जॉर्जिया वेयरहैम का रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन मैरिजन कैप भी उनसे बहुत पीछे नहीं है। 6 मैचेस में 23 ओवर फेंकते हुए उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 5 का है, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम का इकोनॉमी रेट है 4.5 का। तो साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीता, दोनों टीमों में एक एक बदलाव, सुनील लुस का आगमन साउथ अफ्रीका की टीम में हुआ है, जबकि इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह पर नेट सिबर ब्रंट आई हैं, जो कि इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ख़राब रही, डैनी वियर्ट हॉग, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी तीन बैटर हैं जो कि पवेलियन में विश्राम कर रही हैं, और 50 रन भी नहीं बने। इनफैक्ट पावर प्ले में 6 ओवर में 35 रन बनाए गए 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की बैटर्स के द्वारा। तो इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर था जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, आज वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, और यही कारण है कि मिडल ऑर्डर में नेट सिबर ब्रंट और हैदर नाइक, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, 50 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, मलाबा एक पहले स्पिन गेंदबाजी आक्रमण के तौर पर आई हैं, पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का उपक्रम किया था नेट सिबर ब्रंट ने, और एक रिव्यू वैसे बेकार हो चुका है, क्या पैड से टकराई है गेंद, और जी हाँ लॉरा वुलवर्ट ने रिव्यू के लिए इशारा कर दिया है, और एम्पायर के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो तीसरे एम्पायर के पास जाएं, क्लियर पोलोसाक के पास, एलॉयस शेरिडन ने इशारा किया है थर्ड एम्पायर के लिए, और मलाबा अपना स्पेल की ही शुरुआत कर रही थी, हालांकि ऐसा लगा दर्पण की खुद गेंदबाज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी।
0: टेल यू व्हाट, दे आर डेस्परेट टू सी द बैक ऑफ नैट सिवर ब्रंट, वंस अगेन द बैटर इन क्वेश्चन इज नैट सिवर ब्रंट, एंड दैट्स व्हाई लॉरा वुल्फार्ट वाज सो ईगर टू शो द टी, बिकॉज फ्रॉम वेयर वी सॉ इट, इट अपीयर्ड एज इफ देयर वाज बैट इन्वॉल्वड। लॉरा बेग योर पार्डन, मलाबा द लेफ्ट आर्म स्पिनर डिलीवर्ड दिस वन फ्रॉम अराउंड द विकेट, द बॉल ड्रिफ्टेड इन टुवर्ड्स द मिडिल पोल एंड इट पिच्ड ऑन अ गुड लेंथ। सिवर ब्रंट लव्स टू प्ले बिहाइंड स्क्वायर, she is known for those lapse shots, those scoop shots, the nutmeg where she threads the ball from between her legs is a very famous shot of hers, she thrives on playing those kind of shots, so her playing the reverse sweep on the first ball doesn't come across as a surprise, but the ball did hit her pad in front of the middle stump, however we all felt that there was an inside edge before the ball went on to hit the pad, and that is exactly what Ultra Edge has also confirmed, and yes, South Africa have burnt another review, they are now out of reviews, they have used up both their reviews, this will be an interesting ploy going forward.
1: मलाबा ओवर के अगली गेंद बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी डीप में लॉन्ग ऑन में तैनात हैं, तब तक एक रन मिलेगा, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, रन बनाने की रफ्तार 6.1 दो रन प्रति ओवर पर पहुंचती हुई 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो 50 रन भी बमुश्किल तमाम आए हैं, और नेट सिवर ब्रंट हालांकि मलाबा को देखने से तो ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी नहीं, लेकिन जैसा दर्पण बार बार इशारा कर रहे थे कि एक जो टेंडेंसी है खासतौर पर लॉरा वुलवर्ट की, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश हैदर नाइट की, और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थी, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, फील्डिंग आउटफील्ड में बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रही है दक्षिण अफ्रीका की अभी तक का जो मुकाबला खेला गया है, और उसमें कहीं पर कोई ब्लेमिश नज़र आया नहीं है, और ये दोनों ही जो बैटर हैं नेट सिवर ब्रंट या फिर हैदर नाइट, वो हेजिटेट नहीं करती अनकन्वेंशनल गैर परंपरागत स्ट्रोक्स खेलने में, जो जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। इस बार स्क्वायर लेग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला गया था, डीप में प्रोटेक्शन था, एक रन लिया गया दोनों बैटर्स के द्वारा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर पहली गेंद वो थी जहां पर रिव्यू लिया गया था साउथ अफ्रीका की ओर से, और वो रिव्यू बेकार गया, यानी उनके दोनों ही रिव्यू बेकार हो चुके हैं, और मलाबा की अगली तीन गेंदों पर एक एक रन लेने में कामयाबी मिली है। तो

0: मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 2026 का T20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है और टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा करके फाइनल में जगह बना ली है और आज दूसरा सेमीफाइनल ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड मेजबान टीम है और मैच के शुरू होने के पहले कहा जा रहा था कि उनका कागज पर पलड़ा भारी है। इसी बीच गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है, क्लिव ट्रायन का आगमन हो रहा है, जिन्होंने की अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम की ओर से की है। एक ऑलराउंडर की भूमिका में आती हैं, बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी का दायित्व संभालती हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत, आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता लॉरा वॉलवर्ड ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों में एक एक बदलाव था। सुनील लूज साउथ अफ्रीका की टीम में आई, नैट सिवरब्रांट इंग्लैंड की टीम में आई। इस बार खराब डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी थी, स्टेप आउट किया ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है नैट सिवरब्रांट ने गेंद को 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: यकायक परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और जैसा दर्पण इशारा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बैटर्स की आंखें जम चुकी हैं और एक जो गेंदबाजी अटैक था उसमें पूरी गेंदबाजी में जो धार होनी चाहिए, अगली गेंद एक बार फिर से उसे फाइन लेग बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं इसका नमूना पेश करते हुए नैट सिवरब्रांट और हेदर नाइट, पर्टिकुलरली नैट सिवरब्रांट लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट डिलीवरी, लगातार दो गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज, पिछले ओवर में 10 रन बनाए गए और पलक झपकते ही इन दोनों बैटर्स ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है ड्राइव करने के अंदाज में, हालांकि वहां पर शबनम स्माइल मौजूद थी। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, एक रन का इजाफा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 45 गेंदों में 54 रन इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा जोड़े गए हैं, जिनमें नैट सिवरब्रांट का योगदान 31 रन का और हेदर नाइट का योगदान है 21 रनों का। 77 3 विकेट के नुकसान पर इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, धीमे से पुश किया और स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़ी थी नैट सिवरब्रांट। और हैदर नाइट और नैट सिवरब्रांट के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, एक जो साझेदारी जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रही है, वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है। मिडिल और लेग स्टंप पर ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप में बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात है, बड़ी आसानी के साथ रन मिलेगा। 11 ओवर के बाद 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
5: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: Last two overs have produced 21 runs. Heather Knight and Nat Sivabrant have shifted gears. South Africa need to be careful or this game will slip out of their hands. Ayobonga Khaka comes back into the attack, delivers this one on a good length. However, it goes down the leg side and Nat Sivabrant has helped it along to the fine leg boundary for 4.
2: Ye laga Abha ka choka.
7: Yes, a poor ball, but Nat Sivabrant, after the ball had left the bowler's hand, she squared up in her stance and then played the scoop shot or the lap shot, as they call it these days. And the ball went to the right of the short fine leg fielder. Excellent placement. That is why she's so highly rated. Next delivery, what is Kaka's response going to be? She shortens her length, delivers it in line with the stumps. And there comes out the short arm pull from Nat Sivabrant. And before the ball is fielded in the deep mid-wicket region, once again, the batters hustle quickly between the wickets to take 2 runs. Once again, good hustle, good running between the wickets. This is what they are known for. Remember, folks, Sivabrant was out with a calf injury. Yet, she's running as if her life is on stake. This is what good athletes do when the stakes are high, when it is the semi-final, when it is the big stage. Slower delivery this time around from Kaka. Outside the

0: system on a foolish length. However, Sivar Brunt was able to press towards it and then use her wrists to whip it towards Longhorn and pick up a comfortable single. And just like that, Sivar Brunt has moved to 41 in just 31 balls. That strike rate now, Shivendra, is giving a handsome reading.
1: 2023 के बाद से नैट सिवर ब्रंट ने एक आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर आया था जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा था. इसी बीच बैकफुट पर जाकर कट कर दिया. थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है गेंद. चार रनों के लिए हैदर नाइट के बल्ले से निकला है बेहतरीन चौका.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद. और जतिन सूद बता रहे हैं कि नैट सिवर ब्रंट और हैदर नाइट के बीच आयरलैंड के खिलाफ 64 रनों की साझेदारी हुई थी इसी विश्व कप में, जबकि आयरलैंड के खिलाफ टीम खेल रही थी. और आज तो खैर ऐसी साझेदारी की बहुत ज़्यादा शिद्दत से तलाश थी. 41 रन 31 गेंदों में नैट सिवर ब्रंट, 22 गेंदों में 26 रन हैदर नाइट. 11 चौके पारी में लगाए जा चुके हैं. पहली गेंद पर चौका, उसके बाद कपल एक सिंगल और उसके बाद फिर से चौका. परिवर्तन के तौर पर आया भोंगा खाका की ये गेंद डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई. बाउंड उसको फॉलो थ्रू में ही फील्ड किया गया था उनके द्वारा. रन बनने की कोई संभावना नहीं थी. तो ये दोनों खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रण कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि आज हम इंग्लैंड के नैया को पार लगाएंगे.
0: एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट द टीम नीड्स, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ इंग्लिश क्रिकेट फैन बेस is expecting from them. This delivery on a full length on the pads has been flicked away towards deep square leg for a comfortable single. That single takes Heather Knight to 27. We come to the end of the 12th over. 91 for 3 is what the score is. And this over was once again an expensive one from South Africa's perspective. It produced 4 plus 2 plus 1, if my math is right, about 12 runs out of it. So 33 runs in the last 3 overs. The momentum has shifted. South Africa desperately need a wicket or else they will see England running away with this match. Let us tell you folks that the average first inning score in the 6 women's T20Is played at the Oval is 152. However, in the England-New Zealand match that was played here last week, we saw New Zealand score 164 and England chased it down with 16 balls to spare. So it's a good track for batting. Malaba delivers this one on the pads. It has been flicked away towards the square leg. And before the fielders in the deep can converge and throw the ball back, once again, the two batters have haired back and forth and converted this into a couple once again. Fabulous, enthralling running between the wickets. Watch out for it. Malaba gets ready to deliver what will be the second ball of the 13th over. Delivers this one on the shorter side of good length, outside the off stump. Has been chopped towards extra cover where Laura Wolfart does the fielding. No runs to be had of that ball. However, what South Africa need is a wicket.
1: 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर. मलाबा की गेंद स्टेप आउट किया, हाफ वाले बल्ले कर इनसाइड आउट के अंदाज में खेला है. हालांकि फील्डर डीप में तैनात थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: हैदर नाइट एंड नैट सिवर ब्रंट, दे आर ऑन फायर. उन्होंने प्रण कर रखा है कि आज कुछ खास करके दिखाना है. और साथ ही एक और ख़ास बात देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है उसका आज नमूना पेश किया जा रहा है मिडल ऑर्डर में इन दोनों बैटर्स के द्वारा.
0: द लास्ट बाउंड्री दैट वॉज हिट बाय हैदर नाइट बिफोर द बॉल हिट द बाउंड्री कुशंस और सो वी फेल्ट, नदीन डी क्लर्क रन अक्रॉस फ्रॉम लॉन्ग ऑफ, पुट इन अ बिग डाइव टुवर्ड्स हर राइट एंड ट्राइड टू फ्लिक इट अवे फ्रॉम द बाउंड्री कुशंस. वी फेल्ट दैट द बॉल हैड ऑलरेडी हिट द बाउंड्री कुशंस एंड नाउ कम्स द कन्फर्मेशन फ्रॉम अंपायर एलोइस शेरिडन, ऑलबियट इट कम्स आफ्टर अ डिले बिकॉज अ बाउंड्री चेक वॉज हैपनिंग. इट हैज बीन सिग्नल्ड फॉर 97 फॉर 3 आफ्टर 12.3 ओवर्स. नेक्स्ट डिलीवरी मलाबा, दिस टाइम डिलीवर्स इट विद अ स्लाइटली फ्लैटर ट्रैजेक्टरी so that the batter cannot step out on a good length around the off stump. And once again, brilliant use of wrist from Heather Knight, who tucks it away into the gap between long on and deep mid wicket. And once again, these two running like two cheetahs between the wicket convert it into a couple. 99 for 3 after 12.4 overs. The running between the wickets has been exhilarating.
1: 28 गेंदों में 35 रन पर पहुंच गई है हैदर नाइट. और बड़ा संयोग वाली बात यह है कि काफी देर से नैट सिवर ब्रंट को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है.

0: उन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 41 रन पर पहुंची हैं और 29 गेंदों में 35 पर पहुंच गई हैं एडन नाइट, और चौथे विकेट के लिए 58 गेंदों में 76 रन इन दोनों बैटर्स द्वारा जोड़े जा चुके हैं। क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है, 99 रन इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टेप आउट किया, ऑन साइड में खेला और मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन इसके साथ ही 13 ओवर के बाद 100 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के 13 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ले। मत जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Last four overs have produced 42 runs. South Africa need a breakthrough. They go to Nadine D. Clerk, who is obviously an experienced campaigner. Hasn't done a lot of things with the ball in this tournament. However, here she induces an LBW appeal. However, the impact to my untrained eye seemed to be outside the off stump. It was Heather Knight, the batter in question, and the umpire has turned Nadine D. Clerk's appeal down. She ran in from over the wicket, delivered this one on a full length. The replay on my monitor suggests that she released it with a cross seam grip, and Heather Knight had planted her foot outside the off stump before trying the cross batted swish. She missed the ball hit her pad, and the umpire showed no interest. Let us remind you, South Africa ran out of reviews very early because they burnt two reviews wastefully. Anyhow, the next delivery outside the off stump on a full length has been driven towards deep cover for a comfortable single, which takes Heather Knight to 37 and brings Natsiva Brunt back on strike. This losing of reviews, we told you that it is going to be an interesting subplot in this story. Next delivery, a low full toss, flicked away for four.
6: ये लगा आभा का चौका.
5: De Klerk was probably searching for a yorker, ended up drifting on the pads, failed to land this one, and Natsiva Brunt, who is now watching the ball like a football, was quickly onto it and flicked it away towards the deep backward square leg boundary to pick up four. Next delivery, again a very full length delivery. This time Nadine De Klerk pretty much lands it where she wanted it to, outside the off stump, and Natsiva Brunt squeezes it towards the backward point fielder. Anari Dirk will ensure that the ball doesn't pass her. A dot ball for our scorer Sunil Dighe to mark.
0: Production ने इस गेंद को रोका जरूर, लेकिन ऐसा लगा कि हाथ झटकती हुई नजर आई, शायद इस बार स्कूप करने की कोशिश, और कोशिश कामयाब होती हुई विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
0: Natsiva Brunt की जितनी तारीफ की जाए कम है, बड़े संकट की घड़ी में वो आई थी जब इंग्लैंड की हालत ख़राब थी और 3 विकेट गिर चुके थे। इनफैक्ट 6 ओवर के बाद 35 रन बने थे 3 विकेट के नुकसान पर। अब पिछली 3 गेंदों में उन्होंने 2 चौके लगा दिए हैं और 49 पर पहुंच गई हैं, और इसके साथ ही अगली गेंद को इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है, 2 फील्डर्स को बायसेक्ट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: Natsiva Brunt with that boundary has completed a half century, 53 in 35 balls, out of which 9 came, 9 boundaries were scored, all in enthralling fashion, all in riveting fashion. It's been a captain's knock, as Shivendra was just talking. She came out to bat when England were in a deep, deep spot of bother. However, she exhibited maturity, responsibility at the start, provided sturdiness to the innings, but once she got her eye in, she started exhibiting what she's known for, those innovative shots behind the square, that quick, lightning quick running between the wickets, and it has been a joy to watch and call this

0: innings live. England 113 for 3 at the end of the 14th over. Drinks are currently on the field, and I believe, Shivendra, South Africa will be scratching their heads because they need to find a way to get this partnership broken.
1: ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है पूरी तरीके से डेरेल हो चुकी है, और अगर थोड़ा सा अगर वैगन व्हील हमारे पास सामने आएगा तो उससे लगता है, ऐसा दर्पण पता चलेगा कि मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदों को, गेंदबाजी को केंद्रित किया गया है, और नैट सिवर ब्रंट ने खासतौर पर उसका बेहतरीन भरपूर मजा लिया है। उन्होंने स्कूप शॉट्स खेले हैं, उन्होंने मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक्स खेले हैं, जब जब शॉट डिलीवरीज आई हैं तब उन्होंने पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक्स खेले हैं। 19वां अर्धशतक है T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करती हैं। 4था अर्धशतक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप में उनका 8वां अर्धशतक है। ये आंकड़े जतिन सूद ने हम तक पहुंचाए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नैट सिवर ब्रंट, आज सोफिया डंकली की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया था। हालांकि सोफिया डंकली का जो प्रदर्शन था पिछले मुकाबले में वो कहीं से भी ख़राब नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब टीम में वापसी हुई है नैट सिवर ब्रंट की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उनको लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है, और उन्होंने बड़ी सेवा की है। उनके साथ साथ हैदर नाइट जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं, 4थे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अविस्मरणीय साझेदारी निभाई है, और साउथ अफ्रीका का जो गेंदबाजी आक्रमण जिसमें मैरिजन कैप आई, शबनम स्माइल आई, इनफैक्ट अयाबोंगा खाका भी उस तिकड़ी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, मलाबा इसी बीच नया ओवर लेकर के आई हैं, और लगातार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदबाजी की जा रही है। ये अलग बात है कि इस बार स्ट्रोक अच्छे से खेल नहीं पाई हैदर नाइट, लेकिन 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है, 15वां ओवर प्रगति पर है।
0: दैट डिलीवरी stayed low from where I saw it, Shivendra. It was drifting on the pads and Heather Knight went for a cross-batted swipe, but it stayed low and struck her pad. Next delivery, this one generates a bit of extra bounce. This time Heather Knight was looking to go for the reverse swish or the reverse sweep, but the ball passed over the bat. The previous one went under the bat, this one goes over the bat, hits her body. There's an appeal for LBW, but shakes her head, does umpire Alois Sheridan. Next delivery, steps out Heather Knight, takes this one, converts this one into a full ball, and then whips it towards long on to pick up a comfortable single. So that tells me, Shivendra, that there is some uneven bounce on this wicket.
1: है ज़रूर, लेकिन जिस तरीके से उस बाउंस को या गेंदबाजी की विविधता आक्रमण को नेगोशिएट किया है नैट सिवर ब्रंट और हैदर नाइट ने, वो सराहना के काबिल है। अगली गेंद पर एक और सिंगल ले लिया गया, चूँकि खिलाड़ी द्वीप में तैनात हैं और क्लोजिंग फील्डिंग का लगभग कोई ज़्यादा खिलाड़ी देखने को मिल नहीं रहे। गेंदबाजी आक्रमण भी छितरता बिखरता सा नजर आ रहा है। मलाबा गेंदबाजी कर रही हैं, एक बार फिर से लेग स्टंप की दिशा में, हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में खेला गया है। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन का और इजाफा, पहली दो गेंदें डॉट डिलीवरी और उसके बाद 3 गेंदों पर सिंगल। पारी का 15वां ओवर, 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर में 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद के ओवर्स में 78 रन बिना किसी नुकसान के बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। ओवर की समाप्ति 116 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: The last over produced only 3 runs. Shivendra was accurate in his assessment of the lines that Malaba was bowling onto the body at the pads. Her idea perhaps is to not give the batters the room to free their arms, and it somewhat worked. It's a defensive tactic, but it worked in South Africa's favor. In the previous over, they gave away only 3, and an over like that is like gold for South Africa at this point in time. Shabnam Ismail has been brought back because, as we told you, South Africa desperately need a wicket. England are eyeing a big finish in the remaining 5 overs. They are 116 for 3 in 15 overs. The platform has been laid. The launch pad has been set. Can they go for a big finish? Ismail runs in to deliver this one. And Heather Knight now tries to emulate Nat Sivabrant. She shuffles across to stand out.

0: It was there for Heather Knight to throw her bat at it. However, the slowness of the ball is what flummoxed her. Even before the ball had arrived, she was through with the shot. The ball went straight over the top of the umpire's head and landed between the converging long on and long off fielders. A single which has taken England's score to 117. Next delivery, full in length, angling towards the leg stump. Nat Siver Brunt almost was expecting it and hence was standing outside the line of the stumps, and she was able to flick it towards deep mid-wicket and pick up a comfortable single, which means that the first three balls of this over have produced two runs. The last nine balls have produced five runs. This is not what England want. They need a boundary. Anyhow, Nat Siver Brunt has moved to 55 and she has equaled the third highest score by a captain in the history of the Women's T20 World Cup. She joins Meg Lanning, who also scored 55. Oh, that's a brilliant shot from Heather Knight. Picks up a boundary. Ye laga, abha ka choka. Ismail went full and fast. However, she ended up giving just a glimmer of width. This was outside the off stump, and that allowed Heather Knight to open her shoulders and fetch it from there. She did not hit this one. She bludgeoned it. The ball went past the umpire like a rocket and to the straight boundary to give her four runs. Next delivery, it's a slower one. However, Knight has picked it up. There's a fielder in the deep who dives forward but isn't able to catch it. It is Nadine De Klerk who has made a valiant effort but dropped the catch and buries her face into her palm, the Shabnam Ismail. This was a good length delivery, but once again an off-base ball in line with the stumps went towards her left, did Heather Knight, to allow the bat to come through, then swung her bat hard, and the replay on my monitor tells me that I jumped the gun. Nadine De Klerk did dive forward, but she ended up collecting the ball on a half volley. She did not exactly reach the ball, so it's a valiant effort and not a drop catch. Anyhow, the last ball of the over, Nat Siver Brunt now on strike. Good length delivery, angling in towards the off stump. Siver Brunt backs away and chops it towards cover. End of the 16th, 123 for 3.
1: 23 रन पर तीन इंग्लैंड का स्कोर था और अब 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है नैट सेवर ब्रंट और उनके साथी हैदर नाइट के बीच में. और जतिन सूद बता रहे हैं कि चौथे विकेट के लिए इस विश्व कप में ये सबसे बड़ी साझेदारी है. 101 रन न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड के बीच में 101 रन बनाए गए थे इनफैक्ट शार्प और हैलिडे के बीच में, और अभी फिलहाल 100 रन बने हैं. तो जाहिर सी बात है जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ये जो आंकड़ा है ये भी पीछे छूटने वाला है. 16 ओवर के बाद 123 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर 7.69 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं. मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में एक बार फिर से आया बोंगा काका आई हैं. नए ओवर की उन्होंने शुरुआत की है. लगभग 89-90 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करती हैं और कोई मुश्किल नहीं इसे नेगोशिएट करने में. ऑन साइड में खेला, हालांकि गेंद बाउंस करती हुई हवा में थी लेकिन फील्डर के पास नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई. बड़ी आसानी के साथ रन दिए गए और नैट सिवर ब्रंट ने जिस अंदाज में चौके लगाए हैं, खासतौर पर उन्होंने ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप पर जब उनको गेंद फेंकी गई है, पुल शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलती है, लेकिन इस बार डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग. दो रन तो खैर मिल ही जाएंगे और जहां सिंगल आ रहे थे एक रन को दो रन में बदला है, दो को तीन में बदला है, खराब गेंदों को चौकों में बदला है. और इंटरेस्टिंग बात एक और है, दर्पण की पूरी पारी में एक भी ओवर बाउंड्री या एक भी छक्का नहीं आया है. ये भी जाहिर करता है कि बल्ले को बड़ी सावधानी से गेंद के साथ कनेक्ट किया गया है. और ओवर बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिसक्यूट शॉट की बदौलत भी आ जाती हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर. ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है महिला T20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. आया बोंगा खाका की गेंद लो फुल टॉस पर, और ऐसा लगता है कि हैदर नाइट ने हमारी बात सुन ली थी. लो फुल टॉस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है. 6 रनों के लिए पहला छक्का. ये लगा आभा का छक्का. जी हां, पारी में लगने वाला पहला छक्का. 42 गेंदों में 52 रन पर पहुंच गई है हैदर नाइट. 123 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट.

0: A 10th T20I 50. She also has 100 to her name and the first against South Africa in this long, illustrious career of hers. And now unfurls a delectable inside-out drive, which fetches her another 4. Ye laga, Abha ka choka. This was a slower delivery, perhaps the attempted leg cutter from Ayobonga Khaka outside the off stump, however, on a drivable length. Nat and Heather Knight pressed backwards so that she could get underneath the ball, and then, whilst flaunting that high elbow of hers, unfurled that delectable inside out drive towards the extra cover region. She moves to 56, England 137 for 3, looking at a score perhaps in the excess of 175 from here on in. Another slower delivery, this time it has been driven along the carpet in the same direction, in the deep extra cover region. It will be fielded by Nadine de Klerk, who runs towards her left to cut it off. 138 for 3 at the end of 17.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। सेमीफाइनल में 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जो शुरुआती 3 बैटर्स थी, डैनी वियर्ड फॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी, आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी। लेकिन उसके बाद नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट का आगमन हुआ क्रीज पर। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है। एडीन डी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई हैं, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और नदीन डी क्लार्क अपना तीसरा ओवर लेकर के आई हैं। तो शबनम स्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है। आयोबोंगा खाका, दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज आयोबोंगा खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिवर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
4: ये लगा आभा का चौका।
5: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर। खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है। ओवर पिच डिलीवरी, एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए। 143 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
4: ये लगा आभा का छक्का।
5: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं। नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट, तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
0: दैट सिक्स वाज ह्यूज, 85 मीटर्स far the ball went. Oh, Nat Siver Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Nat Siver Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches, featured in the first couple of games they played in this tournament. However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently

0: It's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls, they want to limit the damage as much as possible.
1: पिछले पांच ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा. रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर. नदीन डिक्लार्क की गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे और गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के, तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है. डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था. इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी नदीन डिक्लार्क की. लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, एक रन मिलेगा 154 तीन विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का और 2 कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा. रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रिसाइज. 17.5 ओवर के बाद 154 तीन विकेट के नुकसान पर नैट सेवर ब्रंट 45 गेंदों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं. हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं. 46 गेंदों में 58 रन उनके नाम पर. 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 154 तीन विकेट के नुकसान पर.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: 12 balls to go, 156 for 3 England, beg your pardon, 154 for 3. How many more can they get? This partnership, which is now worth 131 runs, is the highest ever in a knockout fixture in the T20 World Cup, as far as the women's are concerned. The next delivery, it's going to be bowled by Malaba, the left-arm spinner, who will be bowling her final over of the evening. Delivers this one on the shorter side of good length, angles it towards the body. Natsiva Brunts hangs back and then lofts it, chips it towards deep backward square leg to pick up a couple of runs. Next delivery, she goes for the big slog sweep, hasn't quite got it in the middle of the bat, and it will be caught at deep mid wicket. Finally, this partnership has come to an end. Natsiva Brunt is out for 75, which happens to be the second highest score by a captain in the history of the ICC Women's T20 World Cup. Only person ahead of her is Amy Watkins of New Zealand, who scored 89 not out. Natsiva Brunt is out for a score of 75, and she will get a standing ovation, not just from the England dugout, but also from all the spectators that are present at the Oval. 75 of 47, which included 11 attractive fours and one huge 85-meter 6. England are 156 for 4.
1: नैट सेवर ब्रंट ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने इंग्लैंड को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वो इस मुकाबले में जीत की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है. हालांकि क्रिकेट गौरवमयी अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी कहना इस समय जल्दबाजी होगी. प्रिया कैम का आगमन हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में चली गई थी. हालांकि विकेटकीपर भी उसको रोक नहीं पाई, गैदर नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी बात है कि बैकअप था. शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन का इजाफा.
0: Yes, that has been signalled as byes by the on-field umpire. That takes England's score to 157. Heather Knight once again back on strike. Malaba at the top of her mark, running into bowl what will be the 4th ball of the over. Steps out, does Heather Knight, and completely miscues it. An easy catch for Laura Wolfart at extra cover. And both set batters have now been dismissed. This was a clever piece of bowling from Malaba. Just 70.4 kilometers per hour is the reading on the speed gun, which tells us that she slowed it up, hung it up, allowed the batter to come forward, but eventually Heather Knight got deceived in the flight. She was probably looking to hit it more towards long off, but ended up slicing it, and an easy catch for the South African skipper. Yes, Heather Knight has done her job with this excellent, responsible, mature 58 of 47.

0: However, the fact that England have lost both the set batters with still about 8 deliveries to go means it could be a difference of nearly 10 runs, if not more, in their final score. And that sometimes can be the difference in the end. Danny Gibson is the new batter.
1: ये जो दो बैटर अब दर्पण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दो बेहतरीन बैटर्स के पवेलियन लौटने के बाद, फ्रेया कैंप ऑलराउंडर हैं, 173 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और डैनी गिब्सन 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये दोनों बहुत ही सक्षम क्रिकेटर हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहाँ शायद सिर्फ सिंगल होना चाहिए था उसे कपल में कन्वर्ट किया दोनों बैटर्स ने, फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन। तो ये भी एक संयोग है, क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है कि जब दो बैटर्स बड़ी साझेदारी होती है उसके बाद जैसे गेंदबाजी एक पेयर में की जाती है, कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाजों का आगमन क्रीज की ओर होता है या पवेलियन की ओर होता है वो भी एक साथ होता है। 19 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं, 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड।
0: मलाबा फिनिशेस ऑफ विद 2 for 25 इन हर 4 ओवर्स, excellent bowling figures courtesy that brilliant final over. Before that, her penultimate over also yielded 3, so it was an expensive start from her. But again, it is not about how you start, it is about how you end. South Africa did not start this tournament on the right note. They started off with a drubbing against Australia, but can they finish on the right note? That is the question. England did not start this innings on the right note, but can they finish on the right note? A slow over penalty has been applied. South Africa have not bowled their overs in time, which means now they will have to have an extra fielder inside the 25-yard circle, which means they can only have 3 boundary riders, deep backward square leg, deep mid-wicket, and long on are currently those 3 fielders. Ayobonga Kaka, who has been expensive today, 35 runs off her 3 overs, is going to be bowling the final over. The keeper is up to the stumps. Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike. Delivers this one on a very full length, does Ayobonga Bongo Kaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid wicket, where Nadine de Klerk does the fielding and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
1: आयाबोंगा खाका अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के आई हैं, 36 रन उन्होंने खर्चे हैं, पहली सफलता की तलाश है। मलाबा का पिछला ओवर साउथ अफ्रीका के लिहाज से बड़ा सुनहरा ओवर कहा जा सकता है, जहां उन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे। फिलहाल फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन क्रीज पर हैं, कैंप ने अभी सिर्फ 1 गेंद खेली है, रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है। और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल 3 खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्कल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं, अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप 4 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर तैनात कर सकते थे। 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर, रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर, अच्छी वापसी करते हुए आयाबोंगा खाका ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है, हल्का सा मूवमेंट भी स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है आयाबोंगा खाका के द्वारा 161 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। कैंप इस समय शून्य पर क्रीज पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, सामने हैं गिब्सन, 3 गेंदों में 4 रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आयाबोंगा खाका की ये गेंद उसे वाइड करार दिया गया है। और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, इस बार उससे भी ज़्यादा बाहर, एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई। तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10, इंग्लैंड 162 5 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है, 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स। साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है।
0: You can see what she is trying to do. Khaka is trying to take the ball away from Freya Kemp's arc. Freya Kemp is known for that bat swing of hers. She's known to unfurl those golf swings. She might not appear as the most powerful person, but this youngster can strike the ball big due

0: किया उन्होंने। आई डोंट नो कैसे क्या स्ट्रेटजी उनकी रही आपस में उन लोगों के, कैप्टन की क्या सोच थी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर रन जो बनाए हैं दोनों जो बैटर हैं उन दोनों ने जो ज़्यादातर रन बनाए हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के एरिया में और स्वीप करके इसी लेग साइड में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सोच होनी चाहिए थी कि या तो ये है कि 3 विकेट उन्होंने ले लिए थे पावर प्ले में, तो उस वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उन्हें या उस तरह की कोई चीज़ हुई जहाँ वो मेंटल लैक किया उन्होंने वहाँ पे अपने उन चीज़ों को स्ट्रैटेजी में। उनको वो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए था कि चाहे दोनों बैटर जो थे उनके जो बैट आ रहे थे, अगर आप वॉच करेंगे उनकी बैटिंग को तो जो भी बैट उनके आ रहे थे वो मिड विकेट के एरिया की तरफ ज़्यादा उनकी कोशिश थी मारने की। और उनका जो बिल्ट है दोनों का ही, एक लंबी है, उनका जो रेंज उनको मिल रहे थे वो भी बहुत आराम से उनको मिल जा रहे थे रेंज, तो वो हमेशा कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ मार के रन बनाने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं समझा बैटर को, जब तो बाय द टाइम वो समझते समझते उन्होंने या तो इनको ये करना चाहिए था कि बीच में ही स्पिनर को कोशिश करनी चाहिए थी एक बार और एक ओवर और डाल करके, एक ओवर और उनको रोकना चाहिए था, दो ओवर कराना चाहिए था, दो ओवर बीच बीच में ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड टीम को 140-150 के आसपास रोक सकते थे जहाँ तक बॉलिंग साइड की बात है। लेकिन जहाँ तक बैटिंग साइड की बात है, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन दोनों ने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका को उन्होंने उनकी जो बॉलिंग अटैक था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने। अब यहाँ पर यह था कि एक कोई बैटर को रहना चाहिए था, देखा था जब उन्होंने कि वो आउट हो गए हैं तो दूसरे एक को रहने की कोशिश करनी चाहिए थी आखिरी बॉल तक, अगर वो रहते तो हो सकता है कि वो जो 10-15 रन का जो लैक किया है वो भी आता और 180 और 185 के आसपास स्कोर होने चाहिए थे, जो कमी है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट है, अगेंस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका ने 170 प्लस कुछ रन किए थे, इंडिया को रोका था उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको एक जो माइंड सेट है साउथ अफ्रीका बैटर्स का कि 170-180 रन बनाने का जो उनका अपना है, वो अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो एक मैच बहुत अच्छा बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा आखिर तक मेरे ख्याल से।
1: Now, in fact, extending Zeeshan's point, overwhelming number of runs were scored on the leg side, all variants of sweeps and then flicks being used, Raja.
2: I think they played some creative shots. You can't, I will not blame the captain too much because they were moving outside the off stump and playing the sweep or playing the reverse sweep. And you can't be setting fields for unorthodox shots, so it's tough. And I think what England did was played very smart. After they lost the 3 wickets, they stayed at the wicket and they played out the one big bowler that South Africa had. In fact, two of them. They played them out very carefully and went after the others. And I think South Africa bowlers did not have a plan, or maybe they had a plan and they were not able to execute it. The other bowlers, the new ball bowlers did a fantastic job for South Africa, but they needed somebody to back that up. And England was just biding its time and knew that it can go after the other bowlers, and they did a fabulous job of that.
3: जी, और ख्याति अगर बात करें इंग्लैंड की इस पारी की, कप्तान नैट सीवर ब्रंट की वापसी, जिस तरह से वो पिछले कुछ मैचों से बाहर थी, और उसके बाद ये पारी, क्या आपको लगता है कि मैच का सबसे निर्णायक पहलू साबित हो सकता है?
4: डेफिनेटली, काफ इंजरी के बाद वो वापस आई हैं और उन्होंने जिस तरीके की ये पारी खेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीग स्टेज में भी खेलना इस टाइप की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉकआउट्स में जहाँ हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, अगर वहाँ पर अगर आप अपनी नर्व्स का कंट्रोल करके अपनी जो भी इंजरी है पास्ट की उसको भूल के इस तरीके से अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें, और जहाँ पर आपके जो टॉप 3 बैटर्स लीग स्टेज में अच्छी प्रदर्शन देते हुए और यहाँ आके अगर जब वो फेल हो जाएं, और आपकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज दिख गया।
1: The duo exhibiting what value experience holds in such games where nerves are involved at a very high intensity. Now turning our attention to the second innings, and we've talked about experience. Zeeshan Wolfart बहुत टाइम से रन्स नहीं आए उनके बल्ले से, कंस्ट्रिंग की विश्व कप से पहले कितने शानदार धुआंधार फॉर्म में थी।
0: बिल्कुल, देखिए क्रिकेट है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैच है आज के दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस रन बनाने का उनका आज का दिन हो सकता है कि आज

0: का दिन उनका हो जाए। बहुत बार ये ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक बैट्समैन या एक कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक सर्टेन जगह पे जहाँ पे ज़रूरत टीम को होती है वहाँ पे वो परफॉर्म करके अपनी टीम को निकाल के लिए। तो आज उनका हो सकता है कि वो आज दिन वापस आए और साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका को लेकर के जाएं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि टीम उनकी अच्छी है, बैटर्स उनके पास भी अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के पास में। और जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इंडियन बॉलर्स भी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उसके बावजूद उनके जो बैटर्स थे उन्होंने 170 प्लस रन किए थे इंडिया के अगेंस्ट में। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें दिक्कत होगी करीब तक जाने में इस मैच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये एक मैच ज़रूर से एक बेहतरीन मोड़ की तरफ। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआत के जो 6 ओवर हैं वो बहुत डिपेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के जीत और हार के ऊपर में।
1: राजा, 170 रन का लक्ष्य, पिच में आपको ऐसा कुछ अभी दिखा है जिससे परेशानी हो सकती है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को?
2: बाउंस कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है कि फिरकी गेंदबाज उसका पूरा फायदा उठाएंगे। देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, हमारे कमेंटेटर्स हमें सुनाएंगे कि पिच में जो बाउंस, एक आध बॉल जो बाउंस हुआ था उसमें विकेट ज़रूर मिला था दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन यू विल सी दैट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर।
3: खास करके एक्लिप्सन हमने देखा है कि विश्व कप में अपना ए गेम लेकर आती हैं, शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में भी अब तक उनका रहा है।
4: जी बिल्कुल, ये अब कॉन्टेस्ट अब सेकेंड इनिंग में इट विल बी बिटवीन द बैटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्पिनर्स ऑफ इंग्लिश टीम। डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट एंड लॉरा वुलवर्ट एंड ब्रिट्स एंड मैरिजन काप और एलिस कैप्सी, एक्लिस्टन और सारा ग्लेन के बीच में कॉन्टेस्ट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतता है।
1: तो जीशान, क्या रहेगा पहला लक्ष्य इस समय साउथ अफ्रीकन टीम की जब बल्लेबाजी आएगी, वो क्या चाहेंगे? पार प्ले में कम विकेट गंवाएं, कम रन भले बने, कोई बात नहीं।
0: देखें, आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये है ज़रूर कि वो कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में 6 ओवर में हम 50-55 रन बना लें और कुछ विकेट भी ना गिरे, वो कोशिश रहती है उन लोगों की, स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये विकेट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, इस विकेट में स्लो विकेट है। इस स्लो विकेट के हिसाब से अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, अगर रन दौड़ के बनाने की वो जो कोशिश होती है एक सिंगल और डबल और उस, तो वो अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, तो मुझे लगता है कि वो इस जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए वो काबिल होंगे। लेकिन अगर वो जाएंगे बिग हिट करने के लिए, तो आपने फर्स्ट इनिंग में भी देखा है कि जो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप की, जिन्होंने 100 भी किया है, उन्होंने रन नहीं कर पाए हैं वो। तो बेहतर होगा हमारे ख्याल से कि जो शुरू का 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि शुरू का 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में खासकर। जैसे जैसे ये मैच एंड की तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो विकेट कम गिराएं, आखिर तक जाने की कोशिश करें। अगर आखिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा।
3: साउथ अफ्रीका चेज डाउन 158 अगेंस्ट इंडिया एंड कलेक्टेड 2 क्रूशियल पॉइंट्स इन द ग्रुप स्टेज। नाउ डेटसन, वी हैव सीन हर बैट एट नंबर 3 इन दिस वर्ल्ड कप, बैरिंग दैट गेम अगेंस्ट इंडिया वेयर शी कुडंट ओपन हर अकाउंट, शी इज बीन चिपिंग इन विद इंपॉर्टेंट रन्स।
2: दिस इज अ गेम वेयर एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट, इज नॉट अ स्मॉल स्कोर, चेजिंग 170 टू विन, everyone has to contribute, and if the top orders, the top three can get those runs, well and good for South Africa. It's going to be a challenge, Megha. I think no matter what your form is, the pressure of the scoreboard, that is going to be weighing very heavily on the batters' minds. Normally you would want to get about 45 runs in the first 6 overs without losing wickets, but South Africa will push for to make the best use of the new ball and to make the best use of power play and to try and get a good score, try and get 50-55 runs on board, and in the process they will lose wickets, and that's the nature of the beast of T20, and I think we will get to see a very fascinating contest. with England being smart, England playing the strategic game better than South Africa at this point of time.
1: Khyati, England ki kaptan ne to apna kaam kar diya hai. Ab bari hai South Africa ki kaptan ki. Unki achhi bariyan abhi tak aayi nahi hai. कितना अहम रोल होगा इस बड़े रन चेज में?
4: डेफिनेटली उनको थोड़ा सा पिच इन करना होगा आज के मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ही उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अच्छा स्कोर है, अच्छा टोटल है. अब देखिए वो किस तरीके से इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती हैं.
3: And Raja, we've seen Lauren Bell, barring one game in the group stage, give South Africa, rather England, early wickets.
2: This is a big game, semi-final. They will have to play at their best and think of contributing to the team. If you can pick up a few early wickets, nothing like that for England. But they've got a good score to defend.
3: Absolutely. 170 is what South Africa would be out in the pursuit of. Thanks a lot to each one of you for your analysis. As we turn our attention to the second innings, now South Africa are eyeing third successive finals. England looking to win the World Cup at home.
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
6: ओवल का मैदान जहां पर फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद T20 महिला विश्व कप के मुकाबले में, जिसका आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है. लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान, और उनके साथ हैं तैजमिन ब्रिट्स दूसरे छोर पर. और इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड ने इनफैक्ट 169 रन बनाए, तो साउथ अफ्रीका के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया है इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए. ओवर की दूसरी गेंद लिंसे स्मिथ आई हैं गेंदबाजी करने के लिए, और उनकी गेंद को पंच किया गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में. एक रन के लिए छोर बदला है. लॉरा वॉलवर्ट ने स्कोरिंग की शुरुआत की है. तैजमिन ब्रिट्स अब स्ट्राइक पर होंगी. तैजमिन ब्रिट्स एक बहुत ही करिश्माई क्रिकेटर हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही करिश्माई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. उनके बारे में ज़रूर हम जिक्र करेंगे. अच्छी गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप की लाइन में अंदर की ओर आती हुई, दाहिने हाथ के बैटर के लिए लो रहती हुई, और बल्ला अंतिम क्षणों में अड़ाया था तैजमिन ब्रिट्स ने. हालांकि गेंद पहले ही टिप्पा खा चुकी थी, लेकिन एक तरीके से सवाल तो बहुत गंभीर पूछा गया था लिंसे स्मिथ के द्वारा तैजमिन ब्रिट से. एक रन बिना किसी नुकसान के 170 रन का लक्ष्य इस सेमीफाइनल में, जिसका विवरण आज तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के माध्यम से. कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं शिवेंद्र, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, हमारे स्कोरर सुनील दीघे और स्टैटिस्टिशियन जतिन सूद. और हम ये जो दक्षिण अफ्रीका की पारी है, इसका संपूर्ण विवरण आप तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से पारी आगे बढ़ती है. साउथ अफ्रीका इनफैक्ट आज टॉस जीते थे ओवल के मैदान पर, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया था. शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर के पुल करने के अंदाज में खेला है तैजमिन ब्रिट्स ने. एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा उनको. एक ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की धीमी शुरुआत, दो रन बिना किसी नुकसान के.
7: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
8: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
7: तुम हो ही भुलक्कड़.
8: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
9: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
10: आभा
9: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं, और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
11: Probing over from Lindsay Smith. As such, he's a left-arm spinner who should usually be spinning the ball away from the right-hander. But what she did in the previous over, she bowled those in-swingers. Can't even call them arm balls, because she literally gets the ball to swing along with the seam. She delivers them like in-swingers and got them to dart in towards the stumps. Now, an actual swing bowler into the attack. Lauren Bell from the other end delivers this one on the shorter side of good length, angling towards the body of the batter. Brits goes for a cross-batted swish, misses the ball altogether, and ends up getting pinged in the abdomen region. She's down on her haunches and in pain. The ball has hit her and caused pain. There was an appeal for LBW from Lauren Bell, but obviously the ball would have gone on to miss the stumps on height. So Brits takes a takes her time. She takes a few heavy breaths, and that allows Lauren Bell a couple of moments to settle her

0: out saying, doesn't it? Fourth over's last ball, Lauren Bell runs in over the wicket and Laura Wolfart steps out, and after seeing her step out, Bell adjusts into a short ball, delivers this one outside the off stump. However, Wolfart was also able to adjust to the steeply rising delivery. She ends up cutting it towards deep backward point and picks up a comfortable single to mark the end of the fourth over, 28 without loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष, उन्होंने बनाए हैं 28 रन 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 7 रन प्रति ओवर। और टॉरा वुडवर्ट और टेस्मिन ब्रिट्स बेहतरीन बल्लेबाजी के नमूना पेश करते हुए, चार्ली डीन का आगमन हुआ है, आते ही उनका स्वागत किया गया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, 4 रनों के लिए लॉरा वुडवर्ट के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
6: ये लगा आभा का चौका,
5: शानदार अंदाज में बल्लेबाजी इन दोनों बैटर्स पर, कितना दारोमदार है। अभी दर्पण ये डेटा आपके साथ साझा कर रहे थे, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ड्राइव किया गया स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर, 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए लॉरा वुडवर्ट बेहतरीन फॉर्म में दिख रही हैं। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनके बल्ले ने वो आग नहीं उगली है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि वो डिलीवर करेंगी। मिड विकेट की दिशा में अगली गेंद को खेला गया है, दोनों बैटर छोर बदलेंगे, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पर सिंगल। और टैस्मिन ब्रिट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने कि पूर्व जैवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2007 में 16 वर्ष की आयु में विश्व युवा एथलेटिक्स में जैवलिन का गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए। पूरा परिवार खेलों को समर्पित है। अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी थी, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में। लेकिन न केवल बैटर बल्कि विकेटकीपर एमी जोन्स भी पूरी तरीके से बीट हुई इस पर, और बाई करार दिया गया, यानी गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन बड़ा नज़दीकी मामला था और गैदर भी नहीं कर पाई थी एमी जोन्स विकेट के पीछे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका को क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की जो टेंडेंसी है वो फटाफट क्रिकेट का संस्करण है उसमें आमतौर पर देखने को मिलती है, कई मरतबा उसे लाजमी भी समझा जाता है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से रन्स बनाने हैं, जो स्कूप शॉट है या पैडल स्वीप है उस अंदाज में, ख़ासतौर पर कुछ खिलाड़ी तो जाने ही जाते हैं, जैसे नरसिवर ब्रंट की बल्लेबाजी में हमने देखा आज। चार्ली डीन के ओवर की अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी बैक टू द बॉलर ड्राइव फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। 5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 36 रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Charlie Dean's last over produced 6 runs and now looks like Lindsay Smith is going to be bowling the final over of the power play, which is interesting because her previous over was a little bit expensive. However, Natsiva Brunt has trusted her, starts off with that arm ball which pitches outside the off stump and then angles in towards the stumps. However, Tasmin Brits brings out her own version of the reverse sweep. It's not quite a conventional reverse sweep, if there is anything conventional about the reverse sweep. It's her own version where she doesn't really crouch, doesn't really touch her knee on the floor, but in a half crouch position swishes it away towards deep third and picks up a couple. That takes her beyond 20. Next delivery angled in towards the stump of a good length, and this time Brits stays beside the line of the ball and elevates it towards mid wicket where Danny Gibson is stationed at the boundary. She runs across towards her left in order to mop it up, and a couple beg your pardon, only a single has been taken, which means that this is some good work from the fielder. She was able to save what should have been two runs. Next delivery, Laura Wolfart steps out, puts her dancing shoes on and lofts it over long on. One bounce and over the ropes for four.
6: Ye laga, Abha ka choka.
0: Has Lindsay Smith become just a little bit predictable with her length? On a good length, not too far from the off pole, Wolfart jumped out of her crease and lofted it over mid-on. Currently, long off and deep mid-wicket are the two fielders outside the 25-yard circle. Once again, steps out, and this time she won't be able to clear the mid-on fielder. Sophie Eccleston has leaped towards her right and caught this. Laura Wolfart's innings has been cut short. South Africa lose their first wicket.
5: जोर का झटका लगता हुआ दक्षिण अफ्रीका को. कप्तान लॉरा वुल्फर्ट आउट होकर के पेविलियन का रुख करेंगी. पिछली गेंद पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था. सिंगल बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी. इस बार भी उन्होंने सर्किल को क्लियर करने की कोशिश की. मिडॉन की दिशा में सोफी एक्लिस्टन तैनात थी. गेंद हालांकि हवा में थी, अच्छी खासी हाइट थी, लेकिन अपने स्थान पर उछलते हुए छलांग लगाते हुए एक्लिस्टन ने ये बहुत ही दर्शनीय कैच लिया. 15 गेंदों में 17 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से वो रन बनाए थे लॉरा वुल्फर्ट ने, और वो उन्होंने पवेलियन का रुख किया है. और एक बहुत बड़ा विकेट है ये साउथ अफ्रीका को, बहुत जोर का झटका. इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी सफलता. और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये विकेट मिला है, तो 6 ओवर के बाद 35 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने. और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय एक प्राइज्ड विकेट गंवा चुकी है.
0: दे आर 43 फॉर 1 विद द टू डिलीवरी स्टिल रिमेनिंग इन द पावर प्ले. ड्रिंक्स हैव बीन कॉल्ड ऑन द फील्ड एंड जतिन सूद टेल्स मी दैट द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप फॉर साउथ अफ्रीका इन दिस वर्ल्ड कप हैज नॉट एग्जैक्टली बीन वेरी प्रोडक्टिव. दे स्कोर 2 रन्स फॉर द फर्स्ट विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द ओपनिंग गेम, 11 अगेंस्ट पाकिस्तान, 25 अगेंस्ट इंडिया, 121 against Netherlands, but after that 0 against Bangladesh, and here again 43 runs, which is a decent return but not exactly an overwhelming return. It's a decent platform that has been set. Anari Dirksen has walked out to bat at number 3, but here the bottom line is that Nat Siverbrant's move to give Lindsay Smith that extra over in the power play has brought fruits. Remember, her second over was slightly expensive. She had delivered a probing first over where she had given away only 2 runs, but in her second over she was hit for 2 boundaries and ended up giving away 10 runs in totality. Despite that, Siverbrant stuck to Smith and it yielded rewards. South Africa currently need 127 more of the remaining 86 balls.
5: तो परिस्थितियां बहुत आसान नहीं, लेकिन साथ ही कुछ भी असंभव नहीं क्रिकेट के मैदान पर, न जीत न हार. और जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करने होंगे दक्षिण अफ्रीका को. जिस तरीके से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, बेहद ख़राब शुरुआत हुई, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इनफैक्ट 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे. और उसके बाद क्या साझेदारी हुई नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट के बीच में, और इन दोनों ही बैटर्स ने उसी क्रम में अपने अर्धशतक पूरे किए. इंग्लैंड की टीम को 169 के स्कोर पर पहुंचाया. हालांकि दोनों खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक आउट हुई, और अपनी टीम की ओर से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा. नैट सिवरब्रंट ने 75 रन बनाए 46 गेंदों में, और हैदर नाइट ने 58 रन बनाए 47 गेंदों में. एनी डक्सन का आगमन हुआ है, 6 पारियां खेली हैं इस विश्व कप में. और जैसा हम इशारा कर रहे थे कि दर्पण ने भी इस ओर इशारा किया कि जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उतनी ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई नहीं साउथ अफ्रीका की ओर से जितनी उम्मीद की जा सकती है. नई बल्लेबाज डक्सन हाफ वॉले पर लेकर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. नैट सिवरब्रंट के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, और रन बनने की तो कोई संभावना है नहीं. एक अजीबोगरीब शॉट खेला गया था. हालांकि बात वही है, अगर सर्किल क्लियर हो जाता तो शायद परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती थी. सिमिलर डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रन के लिए नहीं. 6 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान पर.
4: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: 43 for 1 at the end of the power play, which means South Africa have had a better return than what England had of their first six overs. As Shivendra was telling you, they scored 35 for the loss of three wickets in their batting innings. However,

0: Eccleston, the left-arm spinner, begins her spell, delivers the first one on a drivable length in line with the stumps that allows Tasmin Brits to press forward and push the ball towards long on and pick up a comfortable single. So a single to start off what is the seventh over, 44 for one, are South Africa in pursuit of 170. Anari Dirksen now on strike. The next delivery is slightly flighted and the catch has been dropped. Looks like it's Charlotte Dean who has put this one down. Yes, indeed, it is the England vice captain. Flighted delivery from Eccleston, inviting the big shot from Anari Dirksen. Dirksen went for the lofted drive over mid-off and stationed at the edge of the circle. Charlotte Dean backpedaled a couple of steps before leaping up in the air. She got one hand on the ball, but the ball did not stick. So an opportunity goes down and a single has been added. Next delivery on a good length from Eccleston has been drilled down to long off for a single, which takes Brits to 24 in South Africa. 46 for one after 6.5 overs. A big opportunity has just been squandered.
1: इस तरीके के जो मौके आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, catches win matches, तो अगर इस तरीके के अवसर गंवाए जाते हैं तो कई मरतबा आपको पछताना भी पड़ सकता है। इस बार मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ टेन डिलीवरी, बैकफुट पर जा करके पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। तो लॉरा वॉलबर्ट का विकेट छठे ओवर में लिया गया, लिंडसे स्मिथ की गेंद पर वो आउट हुई। सोफिया एक्लिस्टन का आगमन हुआ है, एक बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद है, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी है और उसे मिडविकेट की दिशा में खेलना चाहती थी। टैडमिन ब्रिट्स भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, कोई मिसक्यूट शॉट नहीं गया। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 22 गेंदों में 24 रन बनाकर के खेल रही हैं। डॉट डिलीवरी एक, चार सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में, पारी का सातवां ओवर है। इस बार बैकफुट पर जाकर के कट किया, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। सात ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 47 रन एक विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ले। मत जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: South Africa need another 123 runs to win in 78 balls. Big news, Anari Dirksen was dropped, was given a lifeline when she was on zero. She has moved to two now. At the other end is Tasmin Brits batting on 24 of 23. And looks like Freya Kemp has been given the ball in hand. Freya Kemp, left-arm seamer. So provides a bit of variety in this particular attack. She starts off over the wicket with the keeper up to the stumps, delivers this one on the middle stump on a good length, and Dirksen was looking to flick it away towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. The leading edge takes the ball into the cover region and allows a comfortable single. However, Dirksen will not be happy with the way things have started for her. That was not a convincing shot. Now remember, Sune Luus is a part of this playing 11 today, who used to open for South Africa. She hasn't come out to bat thus far. South Africa have a deep batting lineup, and hence nobody is saying that they are out of the game just yet. But England are squeezing a few tidy overs over here. Good length delivery in line with the body has been nudged towards the square leg region for yet another comfortable single. So two singles of the first two balls to get the eighth over started. South Africa are 49 for one. The previous over fetched four runs, which included one drop catch. Before that, the successful over which produced Wolfart's wicket fetched only 7 runs. So a quiet face for England this, and there comes another miscued shot from Dirksen. This time the catch will be taken. It is the experienced palms of Heather Knight which complete the catch in the backward point region. A length delivery which was angled away towards outside of, slanting away from the right-hander. Anari Dirksen pressed forward and swung her bat with ambition, only to connect with the outer half of it, and the ball went flying towards backward point, where Heather Knight had ample time to settle herself underneath

0: connected and eventually complete the catch. She's as safe as a bank, and that scratchy knock from Anadi Ruxin comes to an end 49 for 2 after 7.3.
1: निश्चित तौर पर एक खराब स्ट्रोक खेला गया एनी डक्सन के द्वारा, और ऐसे समय जब इतने हाई स्टेक्स हों, देखने में ये आ रहा था कि पिछली दो तीन गेंदों पर भी उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले थे वो उतने कन्विंसिंग नज़र नहीं आए थे, और तारीफ करनी पड़ेगी कैम्प की कि उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई है, और बहुत ही शानदार अंदाज में शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका की ओर से, जबकि एक तरफ खेल रही थी टैस्मिन ब्रिट्स और दूसरी ओर थी कप्तान लॉरा वुलवर्ट। उसके बाद लॉरा वुलवर्ट के आउट होने के बाद अभी अभी कुछ देर पहले एक दूसरा विकेट गिरा, और अब मैरिजन कैप का आगमन हुआ है। मैरिजन कैप 5 पारियों में 119 रन बनाने में कामयाब हुई हैं इस विश्व कप में, और चूंकि पार्ले समाप्त हो चुके हैं तो 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात किए जा सकते हैं, सर्किल के बाहर इनफैक्ट तैनात किए जा सकते हैं। कैम्प को अपनी तीसरी गेंद पर विकेट मिला है मिडल और लेग स्टंप की दिशा में, शॉर्ट ऑफ लेंथ कलाइयों का इस्तेमाल करके मोड़ा उसे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात थी, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें एमी जोन्स के पास, तब तक एक रन लेने का मौका। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, और ख़राब स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद टकराई थी, लेकिन अच्छा कैच लिया गया और कैंप को मिलती हुई ये पहली सफलता, इंग्लैंड को मिलती हुई दूसरी सफलता। टैस्मिन ब्रिट्स 24 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रही हैं। स्लोअर डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास था, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था। 88-89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कैंप के द्वारा, बाएँ हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। जेंटल मीडियम पेस है, लेकिन यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई। 25 गेंदों में 25 रन, साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट डिलीवरी थी, फाइन लेग की दिशा में खेला है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो आ रहा था बॉलर सेंड पर, कैंप हालांकि थोड़ा एडवांस कर गई थी, लॉरेन बेल ने बड़ी तेज रफ्तार में थ्रो किया था, एक रन लेने में कामयाबी। 8 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 51 2 विकेट के नुकसान पर।
0: राइट, 119 more needed of the remaining 72 balls. However, in the last 3 or 4 overs, you can't help but feel that England have tightened their grip on this particular context, on this particular contest. The last boundary came in the 6th over, which means we have had 15 deliveries without any boundary now, and the momentum seems to be shifting towards the home team. Remember, England have won every World Cup that they have ever hosted. It goes back to 1973, the first World Cup in the sport of cricket that was ever organized was a Women's World Cup. They won it. They won it in 1993. They won it in 2017. These are obviously the 50-over World Cups. And they won the inaugural T20 World Cup in 2009 too. Good length delivery from Sophie Eccleston, who begins her 2nd over in line with the off stump. The batter advances and drills it down towards long off to pick up a comfortable single. That single takes Brits to 27 and brings Marizan Karp back on strike. Marizan Karp prepares to face what will be the 2nd ball of the 9th over. Fuller delivery from Eccleston in line with the middle pole has been warded off to mid on. So a single and a dot ball to start the proceedings. Next delivery, slightly shorter, outside the off stump, opens the face of the blade, does Marizan Karp. She was looking to thread it through the gap between short third and backward point. However, the fielder at point moved swiftly to her left in order to cut it off. Looks like it was Danny Wyatt Hodge who did the fielding, and that keeps the batters down to 1. Next delivery, backs away to the leg side. The Tasmin Brits picks it off the stumps, drives it towards the deep point boundary. Lindsay Smith, who was stationed at cover, runs towards the fence and then puts in a dive. And whilst she goes over the ropes, she ensures that on her way, she is able to flick the ball away from the boundary cushion. Brilliant piece of fielding this. This is the modern way of fielding. You do not go around the ball and slide it, thereby saving yourself a fraction of a second. Some people like to call it the Brendan McCullum way, but this has become very, very common. She saved a run for her team. Only 3 is what South Africa got of that delivery. Well done, Lindsay Smith. Next delivery, slightly fuller than the previous one.

0: from the pads, and this has been tucked away, clipped away neatly towards deep backward square leg. Another single to be added. So this over has thus far produced 6 runs, one ball remaining in it. But the most important thing, South Africa have still not found the boundary. Next delivery, it has been drilled down to long on. In fact, jackhammered down to long on, should I say. That's how hard the batter hit it on that occasion. In fact, the non-striker was lucky to get out of the way. It was Tasmin Brits who fetches a single to herself with that. And that marks the end of the 9th over, 58 for 2.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर लूं।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य है 170 रन बना करके इस मैच को जीतने का, सेमीफाइनल जीतने का, फाइनल में प्रवेश करने का। और इंग्लैंड की ओर से कैंप आई है नया ओवर लेकर के। हालांकि उनकी पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर है, पैड से टकराई है। सामने है टैस्मिन ब्रिट्स, विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए जाएगी, क्योंकि कैंप जिन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल किया था और जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, काफ़ी सवाल पूछते हुए मैदान पर उत्सव सा माहौल है। और ख़ास तौर पर इंग्लिश खेमे में इस समय काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। कैंप की ये गेंद, इस बार शॉर्ट डिलीवरी, ऑन साइड में पुल करने के अंदाज में खेला, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। ब्रिट्स के स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छिटक करके रह गई, एक रन लेने का अवसर दोनों बैटर्स के पास। तो जो गेंद की रफ्तार है उसमें कैंप बहुत ही चतुराईपूर्ण परिवर्तन करती हुई नज़र आती हैं, और इसी का परिणाम है कि उनकी गेंदों पर आज़ादी के साथ दोनों बैटर्स, चाहे मैरिजन कैंप हो जो अभी अभी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और टैस्मिन ब्रिट्स जो कि सलामी बैटर के तौर पर आई थी, दोनों ही खुलकर खेल नहीं पा रही हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है। बाउंड्री लाइन पर लिंसे स्मिथ मौजूद थी, अंदर की ओर दौड़ी और एक रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगी दोनों बैटर्स को। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है 7वें ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच का, जहां पर इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था। और इस समय जब दो विकेट दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की ओर से, मैरिजन कैप बहुत ही अनुभवी और उनके साथ टैस्मिन ब्रिट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो पारी को सजाएं सवारे। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। 61 रन स्कोर हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 170 रन का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में न तो आसान कहा जा सकता है ना ही कठिन कहा जा सकता है। इवन स्टीवंस मामला लग रहा है, अगर हम स्कोर के लिहाज से कंपैरिजन देखें तो भी लगता है कि दोनों टीमें लगभग बराबरी की स्थिति में हैं। इस बार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, ऑफ साइड में धीमे से पुश भर किया गया था गेंद। हालांकि स्ट्रोक ज़रूर खेलना चाह रही थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मैरिजन कैप, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, एक रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। तो स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, 108 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 61 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं, भले ही कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो। टैस्मिन ब्रिट्स 32 गेंदों में 33 रन बना करके सामने हैं। इस बार बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पढ़ लिया था, शॉर्ट डिलीवरी थी। हालांकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था, यानी जो बाउंड्री तलाश रही थी ब्रिट्स, वो तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड के सामने जब 169 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर के समाप्त होने के बाद 2 विकेट गंवा चुकी है टीम साउथ अफ्रीका की, थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। और इन दोनों बल्लेबाजों पर, इन दोनों बैटर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 100 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाना बाकी है। 8 विकेट ऑफकोर्स सुरक्षित हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। 6.3 रन प्रति ओवर के औसत से टीम रन बना रही है।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: No boundaries for 27.

0: after 11.2 overs, exactly 100 more needed of the remaining 52 balls. This match at the Oval is being attended by 21,128 spectators in the stand, which is a very, very good turnout. Next delivery, Brits walks out of a crease and Gibson shortens her length in response, angles this one in towards the body. Brits was looking to flick it away but wasn't able to lay bat on ball. She cops up another blow on the body but almost immediately rubs it off and gets prepared to face the next ball. She's a tough nut to crack, we already told you. However, she needs to up the ante in a manner where she doesn't take too many risks either, because South Africa are in that kind of a position. And she listens to us. She ends up bringing out the pull shot, which fetches her a boundary. Ye laga abha ka choka. Short ball from Gibson, way outside off. This time Brits was stationed deep in her crease and that allowed her to bring out what was a pretty agricultural pull shot. However, an effective one. The ball went towards the left of deep mid-wicket to fetch her a boundary. Next delivery on a fuller side, this time around from Gibson, outside the off stump. Doesn't move her feet at all, does Brits. However, she throws her hands at it to send the ball trickling away towards deep cover and picks up a single. 6 runs of this over from Danny Gibson. One ball still remaining. Will Sunelus look to be aggressive and try and find a boundary of this particular ball? 6 runs of the over, a boundary will mean they will have a double digit yield of it, and looks like she's going to get that boundary indeed, albeit in the form of buys. Ye laga abha ka choka. This is almost identical to what happened on the last ball of England's innings. Sunelus went into a horse riding straddling stance and then shuffled towards the offside. She was basically shaping up for the scoop shot and Gibson went wider in response. The ball finished near the tram line but the batter failed to lay bat on ball. The keeper failed to gather it and the ball trickled away into the ropes behind the wicketkeeper. So by a signal, 12 overs done, 79 for 3 South Africa, still needing 91 more to win.
1: तो जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी दर्पण, तब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने टॉस जीता था और उन्होंने ये कहा था कि एकमात्र परिवर्तन टीम में है और वो है सुनेलूस का आगमन, जो कि एक टैक्टिकल चेंज है। और सुनेलूस ऐसे मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंची हैं जब शायद उस टैक्टिकल चेंज की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है गेंदबाजी के लिए। इंग्लैंड की ओर से इस विश्व कप में सबसे सफल गेंदबाज हैं। 8 विकेट उन्होंने आज के मैच से पहले हासिल किए थे 5 मैचेस में। इकोनॉमी रेट 5.90 का रहा था और एक छोर पर बैटर लगातार नियमित अंतराल पर कहा जाए पवेलियन का रुख करते रहे हैं और 3 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। दूसरी ओर तैजमिन ब्रिट्स 40 गेंदों में 45 रन बना करके नाबाद हैं। इस बार स्वीप शॉट खेला गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इनफैक्ट फील्डर तैनात हैं और बड़ी आसानी के साथ उसे फील्ड किया गया। कैंप थी वहां पर, रन बनने की संभावना थी, उसका पूरा फायदा उठाया। सिंगल से दोनों बैटर्स ने छोर बदला। तो क्रिकेट में परिस्थितियां किस तरीके से करवट लेती हैं ये इस बात की इशारा करता है। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की पारी का कुछ विवेचन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उससे पता चलेगा कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में। साउथ अफ्रीका ने बनाए 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। इंग्लैंड ने बनाए 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर और दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस पर लिया तैजमिन ब्रिट्स ने। एक्लेस्टन की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, चार्ली डीन वहां पर मौजूद हैं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर्स को। साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 88 रन चाहिए, 43 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। इंग्लैंड का पलड़ा फिलहाल तो भारी लग रहा है, इस बार स्वीप करने के अंदाज में खेला है। कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर पहुंची थी, तैजमिन ब्रिट्स के बल्ले से निकला है 1 रन। 13 ओवर के समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका 83 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी

कहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में ही फैसला हुआ है, और यहाँ पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार वापसी की है। पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छी वापसी की हैदर नाइट और नैट सेवर ब्रंट की बदौलत। नैट सेवर ब्रंट ने 75 रन बनाए, हैदर नाइट ने 58 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया। नैट सेवर ब्रंट ने हैदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए और शतकीय साझेदारी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हुई, जिसके बदौलत इंग्लैंड पहुंचे 169 रन पर। 170 रन के लक्ष्य की तलाश में जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट आउट हुई, टैजमिन ब्रिट्स एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को, लेकिन अभी सोनेलूस कुछ देर पहले आउट होकर के पवेलियन वापस लौटी हैं, और चौथा विकेट तो 6 ओवर के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 7 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 48 रन बनाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और इसी परिस्थिति में यानी 7 से 14 ओवर के बीच में इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन और उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, और ये वो मौका था, ये वो कंसोलिडेशन स्टेज थी जहां पर

0: 43 गेंदों में 47 रन बनाकर के खेल रही है। बैकफुट पर जाकर के पंच किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इसके साथ ही तैजमिन ब्रिट्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 44 गेंदों में 51 रन बनाकर के वो क्रीज पर हैं। 115 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है, तो क्या अकेला चना कुछ कर सकता है? तैजमिन ब्रिट्स इसका जवाब देने के लिए फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक और मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में उछली है, मिड ऑफ की दिशा में कैच लिया गया है। वहां पर कप्तान नेट सिवरब्रंट मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को लगता हुआ ये पांचवां झटका। 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर चार्ली डीन को एक और सफलता। तैजमिन ब्रिट्स की पारी का भी अंत हो चुका है।
2: द होप्स आर ड्विंडलिंग, द टारगेट ऑफ 170 लुक्स फर्दर एंड फर्दर अवे, लुक्स लाइक साउथ अफ्रीकाज वेट for that elusive ICC trophy in women's cricket will continue if they continue to bat like this. Tasmin Brits, who scored her 16th 50 in T20Is and is the second leading run scorer, consumed 45 deliveries, and just when the required rate was getting to intolerable levels, she tried to go big, stepped out, tried to go for a ambitious swing of the bat, completely miscued it, and an easy catch for Nat Sivabrant. South Africa are 95 for 5. Two batters who are yet to face a ball are out in the middle, albeit two very credible batters, two very credible lower order hitters, Chloe Tryon and Nadine de Klerk. Chloe Tryon is currently on strike, and we have seen both these batters pull South Africa out of dire situations before, and they need it more than ever today. Charlotte Dean continues, delivers this one on a good length, the ball spinning in towards the middle end leg. The batter Chloe Tryon presses forward and then uses her wrists to turn it towards mid-wicket and picks up a comfortable single. We saw the wicket of Sunil Loose in the previous over, where a shot ball from Lauren Bell got too big on Sunil Loose, and Loose went for that pull shot which she wasn't able to control. A good catch was taken by Sophie Eccleston at short fine leg. After that, in this over, we saw the wicket of Tasmin Brits, who had scored a half century. Flatter trajectory this time around from Charlotte Dean, delivers this one on a good length in line with the off and the middle stump. Nadine de Klerk gets a stubborn full face behind the ball and blocks it. Of course, she will need a couple of balls to get her eye in, to gauge what the surface is doing. You can't expect her to explode from ball one. Next delivery onto the pads, it has been nudged in a deft manner, bunted away almost towards the front of square leg. There is no fielder there, and hence Charlie Dean runs across to field the ball herself and ensures that the batters do not get more than a single. So it has turned out to be a good over for England once again. The required rate going over 14 and over. South Africa need boundaries and need plenty of them. Good length delivery on the middle stump, which Chloe Tryon gets forward to and bunts it towards long on. Picks up a single, end of the 15th, 98 for 5.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 15 ओवर के बाद 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 170 रन का, यानी अभी भी 72 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना है, और 30 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है। 15 ओवर के बाद 98 रन 170 रन का लक्ष्य पहाड़ सा दिख रहा है, और नैडिन डी क्लर्क और क्लोए ट्रायन इस समय मैदान पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही बैटर्स ने 2 और 3 गेंदें खेली हैं, यानी दोनों ही नए बैटर्स हैं इस समय क्रीज पर, और दक्षिण अफ्रीका पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब होते हुई इंग्लिश टीम। नैट सिवरब्रंट ने न केवल आज बल्लेबाजी बेहतरीन की है, बल्कि उन्होंने गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया है, जिसका सुपरिणाम उनको मिला है, और 2 कैच भी उन्होंने लिए हैं। मेडल लो नेक्स्ट टाइम की दिशा में गेंद।

0: लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जैकलिन विलियम्स की ओर निगाहें जा रही थी कि क्या वो वाइड करार देंगी इस बॉल को, और काफ़ी विस्मृत से दिख रही हैं, अचंभित से दिख रही हैं क्लोट्रॉन, क्योंकि उन्होंने एम्पायर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन एम्पायर का फैसला कि संभवतः पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करार नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टकराने पर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, एक रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। चार्ली डीन आज जो विकेट ले चुकी हैं उसको मिला करके लीडिंग बॉलर्स की कैटेगरी में वो पाँचवें पायदान पर आ गई हैं, उन्होंने 9 विकेट अब तक हासिल किए हैं इस T20 विश्व कप में, 3 गेंदें उन्होंने इस ओवर की डाली हैं और काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है। 71 रन अभी भी चाहिए, 27 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं, 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ से जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची थी, नैडिन डी क्लार्क के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक, लेकिन रन के लिए नहीं। कैंप इस समय गेंदबाजी कर रही हैं जिनका हमने जिक्र किया था कि जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी गेंदबाजी में नहीं है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लगभग 7-8 कदम का उनका रन अप यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस पर उसे पिक किया गया है नैडिन डी क्लार्क के द्वारा, एक रन मिलना चाहिए। पारी का ये 16वां ओवर है और 100 रन पूरे हो गए हैं, हालांकि तालियों से उसका अभिनंदन किया जा रहा है ओवल के मैदान पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, साउथ अफ्रीका के डगआउट में भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय परिस्थितियां बहुत ही ख़राब और गंभीर कही जा सकती हैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज कैंप के, और इस बार फिर से वो लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई गेंद पैड से टकराई है, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 16 ओवर्स के समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 69 रन चाहिए, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। कैंप ने एक बहुत ही प्रभावशाली ओवर समाप्त किया, 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, सिर्फ 11 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मुकाबले अब तक होते रहे हैं, कुछ अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें नॉकआउट मुकाबलों के बारे में, तो 2017 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को हरा करके इंग्लैंड ने मुकाबला जीता था, आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था। तब से जो कंप्लीट मैचेस हुए हैं, 6 कंप्लीट होने वाले नॉकआउट मैचेस में इंग्लैंड ने 4 हारे थे और 2 जीते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो उस आंकड़े को बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं, और देखना होगा कि बाकी बचे हुए 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की पारी कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल 69 रन चाहिए 24 गेंदों में।
1: चार्ली डीन टू बोल हर फाइनल ओवर, इट्स नाउ और नेवर फॉर साउथ अफ्रीका। फर्स्ट डिलीवरी फ्रॉम ओवर द विकेट ऑन अ गुड लेंथ, ड्रिफ्टिंग इन टुवर्ड्स द मिडिल पोल, क्लोई ट्रायन स्टेप्स आउट ऑफ अ क्रीज एंड देन ड्राइव्स इट अलोंग द कार्पेट टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑन फील्डर, पिक्स अप ओनली अ सिंगल, बट आई at the risk of sounding like a broken record will reiterate that ones and twos are not going to hurt England. Next delivery, slightly flatter trajectory on a length at the stumps. De Klerk backs away to the leg side and then flays her hands away from the body to push it towards the cover region and picks up a couple before Natsiva Brunt chases it down. Interestingly, Natsiva Brunt has been running around like a free spirit right throughout this match, even when she was batting, even when she's fielding. The reason why I point that out is because, remember, she is recovering from a calf injury and we were assuming that she might not be 100% fit, but she has laid all those demons to the bed. Around the wicket, this time around from Charlotte Dean, delivers this one in line with the body of Nadine de Klerk, who had backed away to the leg side. In the end, de Klerk was only able to adjust into a dink towards mid-wicket, picks up a single. Next delivery back over the wicket and Chloe Tryon unfurls a big shot and gets a boundary.
2: Ye laga abha ka choka.
1: A quicker delivery from Charlie Dean She fired this one in at the stumps on a foolish length. However, the batter, almost as if she was anticipating it, shuffled to the onside in order to give herself the room to swing her arms, went inside out over extra cover on the ball.

0: bounced only once in the outfield before crossing the ropes. Changes her angle once again as Charlie Dean will be looking to bowl in line with the body, exactly what she does, and there's a misfield which produces another boundary for South Africa.
1: Ye laga abha ka choka.
0: As soon as the bowler changed her angle, Tryon was expecting it to be delivered in line with her body. She shuffled half a step towards the onside only after the ball had left the bowler's hand, and thereby there was no opportunity for Dean to adjust. She drilled it towards long off where it should have been an easy stop for Lindsay Smith. However, she fumbled and allowed a boundary. Next delivery in line with the body. Tryon crouches and swishes across, ends up finding Lauren Bell at short fine leg. No runs to be had. 17 done. South Africa still needing 57 more to win.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
6: 17 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस बार हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट थ्रो खेला. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में जा रही है गेंद. डीकला के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका.
1: ये लगा आभा का चौका.
6: 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत चौके से की है. स्टेप आउट किया था, 2-3 कदम हाफ वॉली पर पिक किया था बॉल को, सर्किल को क्लियर किया था. तीन खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में सर्किल के अंदर तैनात हैं. 4 रनों का इजाफा डीकला के स्कोर में. लो फुल टॉस पर ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग सर्किल के मुहाने पर. अच्छा बैकअप भी आता हुआ. कैंप बहुत ही सक्षम क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो थोड़ी कोशिश हो रही है फ्लरिश की, कुछ रनों की रफ्तार बढ़ाने की. लेकिन परिस्थितियाँ बड़ी डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि आधी टीम पेवेलियन में है. हालांकि इस समय दोनों जो बैटर क्रीज पर मौजूद हैं वो काफ़ी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं. इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला गया है और जब बॉलर देख रही हैं कि बैटर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो शफल करें, लेग स्टंप के बाहर निकल जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, स्टेप आउट करें, कुछ रिदम जो है उसको तोड़ने की कोशिश करें गेंदबाज का, तब उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश भी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा. क्लोए ट्रायन 10 गेंदों में 12 रन बनाकर के क्रीज पर हैं. बोल्ड हो गई हैं. क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्ट्रेटिश डिलीवरी. तारीफ करनी पड़ेगी सोफी एक्लिस्टन की, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि सफलतम गेंदबाज है इंग्लैंड की ओर से. पहली गेंद पर चौका लगा जरूर था लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी की है. स्ट्रेटिश डिलीवरी बाएं हाथ से, राउंड द विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ट्राई किया गेंद की लाइन में आए बगैर और बोल्ड हो गई हैं. तो ट्रायन, उनकी पारी का अंत हो चुका है. 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद ट्रायन ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उनकी पारी में शामिल, और अब साउथ अफ्रीका के डगआउट में सिर्फ और सिर्फ निराशा पढ़ी जा सकती है. और इसके लिए ज़रूर निश्चित तौर पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट तारीफ करनी पड़ेगी नैट सिवर ब्रंट के करिश्माई प्रदर्शन की, जिन्होंने आज, जिनका आगमन हुआ इंग्लैंड की टीम में, उन्हें शामिल किया गया. काफ इंजरी से जूझ रही थी, पिछले 3 मुकाबले खेली नहीं थी, उसके पहले दोनों मैचेस खेली थी, लेकिन आज आते ही उन्होंने चमत्कार किया. जब इंग्लैंड पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर था. 4th विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई हैदर नाइट के साथ. अब जैफ्टा का आगमन हुआ है जो कि मूल रूप से एक विकेटकीपर हैं लेकिन विकेटकीपर बैटर के तौर पर उनको जाना जाता है. एक्लेस्टन की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर तेजी से रन चुराने का प्रयास था, कामयाब होती हुई जैफ्टा. उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है. 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक हताशा में खेला गया स्ट्रोक कहा जा सकता है, जहाँ पर आपकी कोशिश होती है कि आड़ा तिरछा कोई भी स्ट्रोक खेल करके रन बनाने की कोशिश की जाए. हालांकि क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है. थ्रो आता हुआ विकेटकीपर के पास 18 ओवर के बाद 119 रन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर.
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ

0: की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: It's nearly 9:30 p.m. in London. The sun went down 10 minutes ago and looks like at the same time the sun went down for South Africa too. 12 balls remaining. They need an improbable 51 runs to win. England have plenty of options. They go to Lauren Bell for the penultimate over. It's Sinalo Jafta on strike. 119 for 6 South Africa. And the over starts with a comical incident. Slower delivery from Lauren Bell, but almost as if Jafta was expecting a pace on delivery. She swished into a horse straddling stance, stood outside the off stump waiting for the ball to arrive and play the lap shot, but the ball never arrived. It was a slower ball. She kept on waiting, and then eventually when she played her shot, she was still early into it. So a dot ball to begin the penultimate over. Next delivery, another slower one, possibly the leg cutter from Lauren Bell. It finishes outside the off stump. Jafta was looking to drive it on the up, possibly through the cover region, but wasn't able to lay bat on ball. Two dot balls means 51 runs now needed off 10 balls. If my math serves me right, that's 5.1 per ball. It is getting out of South Africa's reach. Next delivery, another slower ball. By now, Jafta should be anticipating it. Oh, she's got run out. She pushed it towards Danny Wyatt-Hodge at backward point and set off for the run. Wyatt-Hodge took her time, aimed for the bullseye at the striker's end and then scored a direct hit. She punches the air in delight. She wasn't able to contribute with the bat in her hand in the manner she has been doing in the group stages, but she has contributed in the field. Danny Wyatt-Hodge effects that run out. Sinalo Jafta, after an innings which lasted 4 balls, she scored 1 run and now she's walking back to the dugout. South Africa in dire straits. 119 for 7. It won't be wrong to say that they are on the brink of elimination.
2: जी हाँ, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका के फैंस जो हैं उन्होंने ओवल मैदान से अब प्रस्थान करना भी शुरू कर दिया है और इबारत ऐसा लग रहा है कि लिखी जा चुकी है। दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर और इंग्लैंड जीत की दहलीज पर ओवल के मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अयाबोंगा खाका का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक गेंदबाज हैं। बल्ले से क्या कुछ खास योगदान रहा है, उनका स्ट्राइक रेट है 61 का और सर्वोच्च स्कोर है 12 नाबाद रन जो उन्होंने बनाए थे। दूसरे छोर पर नैडिन डी क्लार्क हैं, 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं। लॉरेन बेल ओवर की अगली गेंद लेकर, 2 डॉट डिलीवरीज हैं। पिछली गेंद पर एक रन आउट आया था, बहुत ही बढ़िया स्लोअर डिलीवरीज का कितना बेहतरीन इस ओवर में उन्होंने इस्तेमाल किया है। और डैनी वियाट-हॉज, जैसा कि दर्पण बता रहे थे कि भले ही बल्ले से योगदान नहीं कर पाई हो, लेकिन जो एक कंप्लीट टीम बनती है, क्रिकेट कहते हैं कि टीम गेम है, फ्लैशेज और ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन जब कंप्लीट टीम, हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में अपने अपनी तरफ से योगदान देता है, तब वो सूरत हाल निभर कर सामने आती है जो इस समय इंग्लैंड के इस मुकाबले में उनकी ओर से उभर करके सामने आ रही है। पटकी हुई गेंद थी, आंख मूंद करके खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं था अयाबोंगा खाका को, पटकी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक आई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का उपक्रम किया था। हालांकि गेंद की लाइन से हट गई थी, अपना चेहरा भी उन्होंने दूसरी ओर घुमा लिया था। और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर नैडिन डी क्लार्क जो खड़ी हुई हैं, उनका भी बल्ला गिर गया। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। नैडिन डी क्लार्क, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में कहीं बहुत दर्द होगा कि आज भी टीम उनकी कामयाब नहीं हो पाई है। यॉर्क करने की कोशिश थी, परफेक्ट यॉर्कर लॉरेन बेल ने बोल्ड कर दिया है अयाबोंगा खाका को और 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर अब पहुंच चुका है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर, यानी सिर्फ दो खिलाड़ी आने बाकी। लॉरेन बिल की कितनी तारीफ की जाए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी

0: पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने की है। बैक ऑफ द हैंड से फेंकी गई उनकी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, एक माइटी हीव का प्रयास मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अयाबोंगा खाका की इस पारी का अंत हुआ जहां पर एक मिस्क्यूड चौका उनके बल्ले से निकला था। 3 गेंदों में 4 रन बना करके वो पवेलियन वापस जा चुकी हैं और अब कह सकते हैं, वैसे क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जीत दर्पण सिर्फ एक औपचारिकता इंग्लैंड की टीम के लिए।
1: Of course, 47 needed of the final over. Let's do the math. It's not possible, you know it. 123 for 8 South Africa, and possibly for the last time in international cricket, Shabnim Ismail makes her way to the 22-yard playing strip, albeit as a batter. She's not in the side for her batting. She announced her retirement in 2023, came back specifically for this tournament, but it looks like South Africa will not be able to go all the way. Semi-final coming to fruition, last 6 deliveries remaining. South Africa need an improbable 47 to win, and Nadine de Klerk is on strike. Lindsay Smith to bowl the final over. Starts off with an arm ball slanted in towards the leg stump off a good length. The batter backs away and then works it through the gap between backward point and cover. And Freya Kemp, who was stationed at cover, runs across to the boundary and then puts in a slide to pick up the ball and keep the batters down to 2. 125 for 8, 5 deliveries remaining, and South Africa need a bazillion runs to win. Only going through the motions here. 5 balls before the match comes to an end. There comes a slog sweep from Nadine de Klerk. The ball's in the air and it will land safely. Danny Gibson ran in from the mid-wicket boundary and could not get to the ball. A comfortable single taken. However, it's not going to haunt England. 126 for 8 after 19.2.
0: 19.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इंग्लैंड की ओर से, यानी आखिरी 4 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और जैसा हमने पिछले ओवर के आखिर में कहा कि जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही है इंग्लैंड के पक्ष में, और वो T20 विश्व कप जो कि उनकी ही मेज़बानी में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, फाइनल में पहुँचने की दहलीज पर हैं। अगली गेंद जिस पर शबनम इस्माइल ने ऑन साइड में धीमे से खेला है, गेंद को 1 रन के लिए दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है। और इस मुकाबले में मैरिजन कैप ने सबसे ज़्यादा डॉट डिलीवरीज डाली थी, लेकिन लॉरेल बेल ने उनको मैच कर लिया है। 12-12 डॉट डिलीवरीज डाली गई हैं दोनों गेंदबाजों के द्वारा। लिंसे स्मिथ आई हैं इस पारी का आखिरी ओवर लेकर, फ्लैटिश डिलीवरी है, अंदरूनी किनारा लिया है, लॉरेल बेल के पास पहुंची है, शॉर्ट फाइनल की दिशा में। रन बनने की कोई संभावना नहीं, 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 4 रन बने ज़रूर हैं, लेकिन मुकाबला लगभग समाप्त। और मैच के समाप्त होने के बाद आप सुनेंगे स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम हीरो 2020।
1: Next delivery outside the off stump on a good length, goes for a lofted shot. Does Nadine de Klerk finds absolutely nowhere near the desired timing. The ball lands well short of the long off fielder, and before the fielder can pick it up, throw it back to the 22-yard playing strip, a comfortable single has been taken. That takes the score to 128, and that brings Shabnim Ismail on strike. Final ball of the second semi-final. The result is a foregone conclusion, but possibly for the last time in international cricket, we will see Shabnim Ismail in action. Here comes the arm ball, which pitches outside the leg stump and then moves towards the stump. Ismail tucks it towards backward square leg, picks up a single, and just as the ball becomes dead, the celebrations begin in the England dugout. 129 for 8 is what South Africa have managed. There's a sonic explosion in the stands at the Oval as the home crowd celebrates the victory of their women's team. England's men's team's former World Cup winning skipper Owen Morgan, who's in attendance, gives the women's team a standing ovation. They won this match by 40 runs and moved one step closer to achieving that dream which they have waited for a while now. It was in 2017 last time England's women's team achieved an ICC trophy. Will they be able to do it in 2026? The last time they won a T20 World Cup was back in 2009 under the captaincy of Charlotte Edwards, who's currently on the park

0: hugging and delivering handshakes, congratulating the English players. She's the head coach of the team currently. And with these joyous scenes, it is time for us to say goodbye here from the Akashvani commentary box. You were listening to Darpantikya in English, Shivendra Chaturvedi in Hindi. We had the company of scorer Sunil Dighe and statistician Jatin Sood, who provided you intriguing facts from around the game. The final would be played on 5th of July between arch rivals England and Australia at the Lords. With that, we leave you. However, don't go too far, because our special program Hero 20 is coming up next.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Player of the match.
6: England continue with their ruthless run to hand South Africa a 40-run loss in the second semi-final, which now means that two unbeaten teams would be facing off in the summit clash, Australia and England. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha, and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
7: And Megha, our mehman, Khyati Gulani, former cricketer, Jishan Ul Yaqeen, former cricketer, and G. Rajaraman, varishth khel patrikar. Raja, शुरुआत फिर से आप ही से करते हैं। कंडीशन का बेहतर फायदा उठाया इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले, क्योंकि गेंदबाजी भी देखें बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार हुई, जो फील्ड थी उसके अनुसार गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कप्तान ने धीमी गति के गेंदबाजों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में रहा।
8: बहुत चालाक अप्रोच था, बहुत ही चतुर अप्रोच था, आई थिंक सेंसिबल और स्मार्ट है कि गेम जीतना है आपको और उसके लिए जो करना है इंग्लैंड ने वो सारी चीज़ें की है सिवाय टॉस जीतने वाली बात। देखिए टॉस में भी इंग्लैंड की कप्तान बोल रही थी कि वो भी गेंदबाजी करना चाह रही थी पहले, लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता गया पिच और धीमी होती गई एंड बॉल वॉज कीपिंग लो, तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। 40 रन बहुत ज़्यादा होते हैं सेमीफाइनल में, 180 और 140 की बात हम कर रहे थे, लेकिन 40 रन से काफ़ी आसानी से जीता है। वन साइडेड मैच रहा, फैंस निराश रहेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा निराश तो साउथ अफ्रीका होगी कि दो बार लगातार फाइनल खेलते हुए

0: They have participated really well in their batters as well. And if we talk about fielding also, I mean, they are far, ahead from the other team. And the bowlers like, Lauren Bell, she brings little flavor in that. Eccleston, she's known for her, breaking the partnerships. I think it was a very good performance by the bowlers.
1: और जिशान, अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजी की, जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी रही, ख़ास तौर पर कप्तान वुल्फार्ट अच्छे टच में आज दिखाई दे रही थी, पावर प्ले के जो ओवर्स चल रहे थे उसमें ठीक ठाक रन भी आ रहे थे, आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त उनको और बिताना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ उस समय तक उनके हक में जा रहा था?
2: बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास यही दो बैट्समैन थे जो कि परफॉर्म करते आ रहे थे शुरू से, और साउथ अफ्रीका के जीत में सबसे बड़ा अहम किरदार जो था इन्हीं दोनों का था खासकर, तो मेरे ख्याल से इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज लेनी चाहिए थी, इसलिए कि ये एक बड़ा मैच था सेमी फाइनल। एक किसी भी बैट्समैन को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो आखिर तक ले करके मैच को जाना चाहिए था, बाकी बैट्समैन जो भी बैटर्स थे उन बैटर्स को उनको चाहिए था कि उनको वो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूटिलाइज करके उनसे रन निकाल करके मैच को जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग्स जो उनकी थी या जो कुछ भी था, या ये आप कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा ज़रूर प्रेशर इनके ऊपर डेवलप करता चला गया, जैसे बातें हो रही थी हम लोगों की पीछे भी कि जैसे जैसे ओवर गुजरता जाएगा और रन का जो एवरेज है वो अगर इनके ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो वो मुश्किल होएगी इनको रन बनाने में, और वो ही डेवलप होता चला गया। ख़ासकर जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, जो उन्होंने बैटिंग की है, शुरुआत एक अच्छी की थी, आखिर का जो ओवर था हमारे ख्याल से वो छठा ओवर था उसका पावर प्ले का, उसमें वो सेकंड एक दो बॉल बचे हुए थे उनको, और उसके पहले एक चार भी उन्होंने लगाए थे, उसके बाद वो आउट होकर के अगर चले जाते उस तरह से, ठीक है एक अच्छा कैच पकड़ा जो फील्डर थी उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको वो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि अगर 5-6 रन आ गए थे तो वो वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक किया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका टीम जो है वो पीछे की तरफ जाती चली गई और ये कंडीशन हुआ कि 40 रन से हार देखना पड़ा है।
3: Raj, you had been talking about the conditions and how they got progressively slower for batting. We saw in the first innings, there were two half centurions, not much contributions from the others. In the second innings as well, Brits got a half century. Probably as a set batter, would have wanted to shoulder more responsibility. In the meanwhile, we have the player of the match ready, and it's none other than the captain of the English team, and that's Nat Sivabrant.
4: 75 from 47, 11 fours and 1-6, striking at nearly 160. Firstly, welcome back. What were your feelings coming into this match, knowing what a crucial match it was to return?
5: Yeah, I guess I'm obviously nervous. Probably the occasion gets quite big as well, so that increased the nerves as well, and I missed a few games as well. So yeah, I guess there was a lot of emotion pre-game, but yeah, I suppose as soon as the warm-up started, I managed to switch back onto game time, and yeah, just enjoyed myself out there.
4: And the way you managed to switch back on, 23 for 3, you got together with Heather Knight. You needed just one partnership, you got that, but how did you go about rebuilding that in England innings?
5: Yeah, I guess Shabnam and Marizan are obviously world-class opening bowlers that we knew could do the damage. So I suppose Heather and I wanted to nullify the threat and make sure that we were then in and able to capitalise on the other bowlers. And yeah, I suppose with our experience, we put our heads together and yeah, got the job done.
4: It's usually a good surface here, but it was the third game played on this wicket. How did you find the conditions and how did you manage your game out there?
5: Yeah, a little bit of variable bounce. So I guess we had to be really strong on the stumps and I guess be very clear on where you wanted to score. And yeah, I suppose when you're in for a period of time, it does get a little bit easier. And yeah, I guess it was difficult for new batters coming in. So yeah, the partnership was obviously crucial.
4: Well, congratulations tonight. Our player of the match, Nat Sivabrant.
3: Talking about Brits, but turning our attention once again to Nat Sivabrant, Raj, captain stepping up on the big stage in this clutch game.
6: I think it was important for her.

0: her to score those runs. England was down, 3 wickets had been lost, and if they didn't get that partnership, England might have lost the game completely. But this is what leadership is about, to play smart, sensible cricket. The kind of shots that she played, she found the gaps so easily. I think credit to her, because she was also creative, which you, that kind of creativity you didn't see in the South African innings, and people were just playing those traditional, conventional strokes and getting out to conventional strokes as well. When they tried to innovate a little bit, they were getting out. But I think England managed their batting really well, and that the result of this game hinged entirely on how England came back from losing those 3 wickets and had that amazing 4th wicket partnership.
1: तो क्या थी, इंग्लैंड की टीम ने अपनी बैटिंग को मैनेज किया और वही मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका की टीम से नहीं हो पाई, क्योंकि कप्तान जब आउट हुई तो उसके बाद लगा कि पूरी टीम बिखर गई है। हाफ सेंचुरी ज़रूर ब्रिट्स की तरफ से आई, लेकिन कोई उसमें बल्लेबाजी में लय नहीं दिख रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रही है, लगातार विकेट गिर रहे थे, लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा था।
2: डेफिनेटली आई मीन बेटर प्लान के साथ आना चाहिए था, आई एम श्योर दैट मैनेजमेंट से बात हुई होगी ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम एज वेल, ऐसे कोई सजेशंस आई एम श्योर दिए होंगे, प्लान ए होगा, प्लान बी होना चाहिए, बट हाँ द अप्रोच वॉज नॉट आई मीन अप्रोप्रिएट फॉर दिस बिग गेम। इससे बेटर अप्रोच की उम्मीद थी। आई थिंक इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ पे ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आए थे और दे न्यू द कंडीशंस एज वेल, उनको पता कि कौन सा किस तरीके से आपको कौन से स्ट्रोक्स यहाँ पे आपके ऑन रहेंगे, कौन से स्ट्रोक्स आपको रोकने हैं, और बॉलर्स भी बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे, अपने फील्ड सेटिंग बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट द वे द फील्डर्स वर फील्डिंग वॉज ऑल्सो कमेंडेबल।
3: ज़ीशान अपेरेंटली प्लान ए बी सी साइमल्टेनियसली लेकर चल रही थी साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि एक सवाल जो लगातार उठ रहे थे, क्योंकि फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई तो शायद फिर वो सवाल कम हो गए थे, वो ये था रोल क्लैरिटी का, क्योंकि खिलाड़ियों को एक सेट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, एक सेट रोल वहाँ पर नहीं दिया जा रहा था।
4: बिल्कुल, देखें मैं क्रिकेट का एक बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और मुझे नहीं मालूम कि उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं या जो कोई भी उनको समझाते होंगे कि कैसे खेलना है क्या है, वहाँ मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई उनको कोई गाइडेंस मिल रहा था, इसलिए कि जो भी बैटर आ रहे थे वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, मुझे नहीं लगा कि कोई कहीं से गाइड करने की उनको कोई दी जा रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्लान ए ख़राब होता है कि कैप्टन अगर उनकी शुरू में आउट हो जाती हैं और एक बैटर अगर खेल रही है, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ज़्यादा ये होना चाहिए था, मैंने पहले भी कहा कि अगर इस मैच को जीतना है तो इनको रोटेट करना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ के रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये कोशिश करेंगे ये कि हम 4 से और 6 से कोशिश करके और निकालेंगे मैच को, तो वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इनके जो बाकी जो बैटर रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में है बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। यही 2 जो ओपनर्स थे इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं और बैटिंग करके अपनी टीम को जिताने की कोशिश की है। जब इन्होंने देखा कि इनके कैप्टन आउट हो गए हैं, तो इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो एक तरफ अगर वो खेल रही थी तो उनको ये कोशिश करना चाहिए थी कि वो हिट करती, दूसरा जो बैटर आता उससे ये बात करना चाहिए था कि इनको रोटेट करो रोटेट करो, ये प्लान बी होने चाहिए थे, जो कि नज़र नहीं आए मुझे यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी। वो एक बिखरी सी टीम नज़र आ रही थी, वो बिखरी सी टीम अगर सेमीफाइनल जैसे स्टेज पे आने के बाद से ऐसे बिखर जाना थोड़ा सा मुझे अफसोसनाक ये रहा है इस मैच को देखने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इंग्लैंड के जो की जो कैप्टनशिप ही रही है इसमें, उनकी फ्लीट प्लेसमेंट, उनकी फील्डिंग्स, उनकी बॉलिंग का वो तरीका जहाँ बॉल डालना चाहिए था स्पेशली, मुझे खासकर रमन सर अगर आप याद होगा कि हम लोग भी बात कर रहे थे पीछे भी इस सिलसिले में कि कैसे क्या होगा आगे की वो चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैक किया है।
3: बिल्कुल, और इस पे कैसे देखते हैं 2 कप्तान, इसे कैसे इसका आकलन करते हैं, आइए सुनते हैं पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान लॉरा वॉल्फॉट और उसके बाद इंग्लिश कप्तान को।
5: Today by a really good England side, and yeah, I think they played really well.
6: You've been in situations like this before and you've been able to get over the line, so what was different this evening?
5: Not too sure. I think the main difference between our innings and theirs is just they had so many more partnerships. Obviously we started really well with the ball and then they had that really big partnership, and I think we just didn't have any partnerships to sort of speak of, and didn't really have any batters that really got going. So frustrating.

0: good throughout this tournament. I managed to take it in a little bit, walking out to bat and walking off and a few of the wickets as well. Yeah, it's just infectious playing with this team, and in front of the home crowd has been so special. So yeah, I cannot wait to do it again at Lord's.
1: How's the calf?
0: Calf's good.
1: The old enemy at Lord's. How big of an occasion is that going to be?
0: Massive. Yeah, what an occasion it'll be. I guess, you know, finding out there's a home World Cup, it was a dream to be in that final, and what an opposition to be facing. So obviously a really, really talented side that have had a huge success. But yeah, we'll see what happens down at Lord's.
1: Is it coming home?
0: Hopefully.
1: Okay, we'll leave it at that. Well done this evening. Nat, congratulations on your own performance, to Heather as well, and for the overall team performance. All the best on Sunday.
0: Thank you.
2: तो साउथ अफ्रीका पर 40 रन की जीत के साथ इंग्लैंड की टीम चौथी बार, बल्कि पांचवीं बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है, और चौथा ऐसा मौका होगा जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से उसका सामना होगा। 2012, 2014 और 2018 में भी इन दोनों टीमों के बीच फाइनल हुआ था। परिणाम राजा बिल्कुल उसी अनुरूप है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा था इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले, कि फेवरेट टीमों में ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी।
3: ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही होती है। आई थिंक ऐसा कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो नहीं सकता जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का महिला टीम आप उनको फेवरेट ना माने। साउथ अफ्रीका का चैलेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड घर पे खेल रहा है और वो दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, तो इंग्लैंड वाज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट टू मेक इट टू द फाइनल। और यही देखने मिला है कि दो अच्छे टीम होंगे फाइनल में, और उम्मीद यही कर सकते हैं फैन बन के कि फाइनल अच्छा मुकाबला हो। क्रिकेट डिजर्व्स गुड कॉन्टेस्ट, नॉट वन साइडेड मैचेस, खास करके टी20 में जब आप 40 रन से जीत रहे हो और दोनों सेमीफाइनल वो काफ़ी वन साइडेड रहे हैं, तो होपफुली फैंस विल गेट अ गुड फाइनल।
2: और श्रोताओं, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ, सवाल कोई करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय है आपकी, तो हमें कॉल कर सकते हैं 0112342 1048 और 0112342 1085 पर। और हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका।
4: हेलो
2: जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
4: सर, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ, राजस्थान के झुंझुनू जिले से।
2: जी अरविंद जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं?
4: सर, सवालों से पहले मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ।
2: जी
4: सर, ये जो ICC टूर्नामेंट के अलावा जो अन्य मैच है वो उनकी कमेंट्री क्यों नहीं आकाशवाणी पर आती?
2: जी, और सवाल कोई आपका?
4: सर, सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका बड़े मैचों में क्यों घबरा जाती है?
2: जी, ये बहुत अहम सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बड़े मौकों पर अक्सर जो है फिसल जाती है। हालांकि पिछले दो मौके ऐसे जरूर रहे ख्याति जब इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी थी, लेकिन ये एक बार फिर ऐसा मौका आया जहां साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ाई और फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
5: जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड की जो टीम है वो पूरे प्रॉपर प्लान के साथ आई थी, हर चीज़ का उनका एक प्लान रेडी था, बॉलर्स के लिए प्लान ए प्लान बी था, सेम वे उनका बैटर्स के लिए भी प्लान ए प्लान बी था, तो वो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी चूक हुई है साउथ अफ्रीकन टीम से, जो होती रही है। थोड़े बेटर होमवर्क के साथ वो आ सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में पहुँचते हैं तो आपको किस टाइप का गियर लगाना है और आपके कौन से प्लेयर्स आपको एज अ बॉलर्स यूज़ करने हैं अगर कोई अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। इतने अच्छे 3 विकेट स्टार्टिंग में लेने के बाद जो पेसर्स ने काफ़ी अच्छा आई थिंक प्रदर्शन दिया, उसके बाद जो उनके स्पिनर्स उतना पिचिंग नहीं कर पाए।
6: 2011 के विश्व कप से पहले पुरुषों के विश्व कप में किसी भी मेजबान टीम ने जीत नहीं हासिल की थी। उसके बाद एक सिलसिला सा शुरू हो गया जहां पे कई बार मेजबान टीम ने खिताब जीता। महिलाओं के विश्व कप में हालांकि 2009 में जब पहली बार टी20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड ने खिताब जीता, 2017 में ODI विश्व कप अपने नाम किया घर पे, अभी वापस घर पे खेल रही है इंग्लैंड की टीम, तो काफी सारे बॉक्सेस इस नैरेटिव में टिक हो रहे हैं। जीशान,
7: कह सकते हैं इस चीज़ों को। खैर, ये तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा
6: कोइंसिडेंस
7: माने इसको, या आप

0: ये कहें, लेकिन सच ये है कि होम सीरीज़ कोई भी अगर होती है या होम कोई टूर्नामेंट बड़ा होता है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर से वहाँ की होम टीम को होती है। उसकी वजह है कि बहुत सारे, ख़ासकर जो वुमेंस की टीम का ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो कहीं अगर कमेंट्री भी कर रहे हैं और अपनी कमेंट्री में भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ को आइडिया लगता है और उसके ऊपर में भी अमल करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझें कि वहाँ पे इनको बहुत सारे सपोर्ट्स हैं इंग्लैंड को आज के दिन में अगर होम सीरीज़ होती है तो। हमारे यहाँ भी होता है, अगर हमारे हिंदुस्तान में भी अगर इस तरह का कोई होम सीरीज़ होता है तो वहाँ हमारे यहाँ भी जो बड़े लीजेंड जो कमेंट्री में बैठे होते हैं वो कुछ कुछ अपने हिंट इससे देते हैं जिससे कि उससे फ़ायदा होता है। तो मैं ये ज़रूर से कहूँगा कि ऑब्वियस है, 2009 के बाद से 2026 का जो ये टूर्नामेंट है कहीं ना कहीं वो रिपीट होने की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
1: और मेघा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका, नाम बताइए।
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार
2: और ये मैम को भी नमस्कार और सभी एक्सपर्ट्स को भी नमस्कार। मैं
0: नमस्कार।
2: संजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर,
1: बताइए सवाल
2: मेरे कुछ सवाल है और कुछ सुझाव भी है।
1: जी।
2: तो सबसे पहले तो मेरा सुझाव है कि जो आप विमेन्स क्रिकेट या फिर विमेन्स जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, सभी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो अवार्ड्स अवार्ड्स मिलते हैं, मैं प्लेयर ऑफ द मैच या टूर्नामेंट जो भी होते हैं, इसमें चयन मेरा मानना सिर्फ महिलाओं को करना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए चयन समिति में। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि एक जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला था स्मृति मंधाना को शायद नीदरलैंड के मैच में, मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगा था। शेफाली वर्मा का पूरी तरह से बन रहा था, 3 विकेट और 50 रन भी थे। और तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये, मेरा सवाल ये है, जो अंपायरिंग होती है, ठीक है, चाहे मेंस क्रिकेट हो, मेंस स्पोर्ट्स हो या फीमेल कोई भी स्पोर्ट्स हो, इसमें अब क्यों नहीं हम सैटेलाइट वगैरह का या ऐसे चीजों का निर्णय वो करते हैं? क्योंकि जो है इसमें होता ये है कि अब या करोड़ों लोगों की भावनाएं हाथ होती है एक छोटे से फैसले से, तो इसमें क्यों नहीं ऐसे AI वगैरह या सैटेलाइट वगैरह का मदद हम लेते हैं? क्योंकि ये कि आप न्यूजीलैंड का फाइनल देख सकते हैं 2019, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का जो 1 रन से ड्रामा हुआ था और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीता जीता हार गया। तो मेरा मानना ये सैटेलाइट वगैरह ऐसे चीजों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि 1-1 रन बहुत भारी पड़ते हैं ऐसे चीजों में। तो ये न्यायिक प्रणाली में ये मशीनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जो क्लियर।
3: So Sanjay ji advocating for further innovation. Now the two things that he touched upon involve a lot of subjectivity, because wherever humans are involved in decision making, obviously there'd be that subjective perspective. I think this was better. You think that was better, Raj?
4: So we'll never be satisfied. Any amount of technology. Let's take LBW. पहले तो technology आया, उसमें भी हमको we are finding gaps there. The DRS is supposed to have improved the decision making, lekin I think we are still only 95%. We can never be 100%. Aur cricket ek aisa khel hai mega jahan pe humans khelte hain, to human ka judging element zaruri hai. I am of the firm opinion that we should leave everything to the umpires. Technology bahut zyada use karne se dikkatein aane lagi. I think we are relying too much on data and very little on emotion. I think sport is about emotion, and if we can go back to keeping it an emotional thing, it will be good. Lekin there is also some kind of validity in asking for data and for data to be used in decision making processes. But I think ये बहुत सिंपल गेम है, हम इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बाय गेटिंग इन टू मच टेक्नोलॉजी।
1: और ख्याति अगर आज के मैच पर लौटें, बहुत ज़बरदस्त जीत रही है इंग्लैंड की और कंडीशन की बात हो रही थी और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब फाइनल मुकाबला होना है, ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप की टॉपर, सेमीफाइनल में आसान जीत, और इधर इंग्लैंड के साथ भी बिल्कुल वही हाल, अब फाइनल कैसा होने वाला है?
5: देखिए, अगर आप देखेंगे उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करें ऑस्ट्रेलियन टीम का, वहीं पे इंग्लैंड टीम को आई थिंक अपने जो टॉप 3 बैटर्स हैं उनको थोड़ा और बेटर प्लान के साथ आना होगा कि इस टीम के साथ आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आपके पहले 3 बैटर्स जल्दी आउट हों, क्योंकि उनके पास वैसा बॉलिंग लाइनअप भी है जो वो कम बैक कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपके पास आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिलता है विद योर

0: ओपनिंग बैटर्स डेफिनेटली देन आप उस कॉन्टेस्ट में होंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया.
1: जीशान, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जो विविधता है, उनके पास लेफ्ट आर्म एंगल है लूसी हैमिल्टन का पेस में, और स्पिन में भी दे हैव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड.
2: देखें प्लेयर्स जो भी हैं उनके पास में, आप जिनके भी नाम ले रहे हैं सारे हैं, और भी सारे उनके अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास में ऑस्ट्रेलिया के पास. जो सबसे बड़ी जो खासियत है उनमें कि उनके पीछे में 6 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप का एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट करने की उनके पास में एक चीज़ है जो कि इंग्लैंड के पास में नहीं है. तो ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ में ज़रूर से है ऑस्ट्रेलिया के साथ में. लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और अगर इंग्लैंड की टीम, दोनों टीमों को हम देखेंगे अभी के वक्त में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम जो देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे धीरे धीरे इंग्लैंड टीम जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है. जिस हिसाब से उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो फाइनल मैच है वो बहुत बेहतरीन मैच होगा. और कहीं ना कहीं मुझे अब एहसास ये हो रहा है या इंट्यूशन से हो रहा है मुझे कि कहीं वो 2009 वापस जो कह रही थी कि क्या घर वापसी होएगी क्या, तो मुझे लगता है कि वो घर वापसी होने का वक्त आ गया है 5 तारीख को.
1: Well, those chances are emerging from the US as well, where yesterday night England handed DR Congo a defeat in the dying minutes, but today England completing a comprehensive victory over South Africa to romp into the finale. Thanks a lot to each one of our analysts.
2: Thank you very much.
1: Thank you, Dharmendra.
3: Shukriya.
1: And now we'd be back with that final clash where on one hand, Australia having been knocked out in the semi-finals of the 50 overs and 20 overs World Cup would be extremely hungry. So would be England, who got knocked out in 2024 in the league stage itself despite being very well prepared. So two extremely hungry teams, two teams unbeaten, facing off on the 5th of July. You'd get all the action, the commentary, the analysis right here from Akashvani. And there's a team that works from behind the scenes, the technical team, Sachin, Manoj, Prasoon, Sanjay, Bhojraj, Meena. Production team, Amisha Patel, Swati Kapoor, Tanmay Pant. Producer, Shahnawaz Khan, who worked tirelessly to bring the show and the commentary to you. We'd be back again on the 5th of July with the Summit Clash.
4: Player of the match.
5: अभी अब आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
6: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द सेकेंड सेमीफाइनल T20 cricket match played between England and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
7: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है. अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है. अपनी प्रातःकालीन सभा में प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. जय हिंद.